धन्यवाद। अब मोहे राम परोसो पाए, जो जो शरण पर्यो करुणानिध, ते पाए तराए रहाओ। सुख सोयो अर सहज समायो, सहसा गुरहें गवाए। जो चाहत सोई हर कियो, मन बाँचत फल पाए। हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो, श्रवणी कथा सुनाए।

अवर सब फूले प्रमत न जानिया, एक सुदाखर जा कै हृदय वस्या, किन बेदें तत पछानिया रहाओ। परविरत मार्ग जेता किस होइए, जेता लोग पचारा।

जगदीश है। खोजत खोजत ए बिचारियो सर्व सुखा हर नामा, कहो नानक किस पयो प्राप्त जा कै लेख मथामा। सारंग महला पंजवा, अंदिन राम के गुण कहिए सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध, मन बांचत फल लइए रहाओ। आवो संत प्राण सुख दाते सिमरन प्रभ अविनाशी, अनाथे नाथ दीन दुख पंजन पूर रहो कटवासी। गावत सुनत सुनावत सरदा हर रस पी वड पागे, कल कलेश मिटे सब तंते राम नाम लिव जागे।

गुर प्रसाद नानक संतोखे, नाम प्रभु जप जप उदरन, सारंग महला पंजवा, गायो री मैं गुण निध मंगल गायो, पले संजोग पले दिन अवसर।

कैसे कहूँ मोहे जी वेदनाई, दर्शन प्यास प्रिय प्रीत मनोहर, मन ना रहे बहुविद उमकाई रहाओ। चितवन चितवो प्रिय प्रीत बैराग।

गाई रहाओ। अनित जन्म प्रम तो ही आयो, मानस जन्म गुलवाई। गर्भ जोन छोड़ जो निक्सो, तौ लागो अनठाही। करें बुराई ठगाई दिन रहन, नेफल कर्म कमाही। कान नाही तो गाहन लागे, ताए ताए दुख पाही।

सो मिलिया जो प्रभु मिलाया, जिस मस्तक लेख लिखाई, कहो नानक किन जन बलिहारी, जो अल्प रहे मन माही, सारंग महला पंजवा, क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिछड़त होत मृतका, गृह में रहन न पाई, रहाओ जी ही प्राण को दाता, जाके संग सुहाई, करो कृपा।

जाति रविदास ठाकुर बन आई, जियो पिंड तन तन साधन का, त्यों मन संत रे नाई, संत प्रताप परम सब नाते, नानक मिले गुसाई, सारंग महला पंजवा।

मन कहां लुभाइए आन कहो, ईत ऊत प्रभु सदा सहाय, जी संग तेरे काम को रहाओ, अमृत नाम प्रे प्रीत मनोहर, यह अगावन पान को अकाल मूर्त है।

आए मात पिता पाई नानक को सुखदाता हर प्राण साए। सारंग महला पंजवा हर जन सगल उधारे संके पहे पुनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुख हरे। रहाओ मार्ग चले तिनी सुख पाया जिनसो गोष्ठ से तरे बूढ़त कोर अंधकूप में ते साधु संग पार परे। जिनके पाग बड़े हैं पाई तिन साधु संग मुख जुरे तिनकी तूर बांचे नित नानक प्रभ मेरा कृपा करे। सारंग महला पंजवा हर जन राम राम राम से आए एक पलक सुख साथ समागम कोट बैकुंठ है।

मोहन का आवो करो जो दरिया, मान करो अभिमान बोलो फूल चूक तेरी प्रचरिया रहाओ, निकट सुनो अर देखो नाही परम परम दुख परिया, हुए कृपाल गुर लाहे पार दो मिलो लाल मन हरिया, एक निमक जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिन सलख बनिया, साध संगत की पीर जो पाई कौ नानक हर संग मिरिया, सारंग महला पन्नवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सा सोई कर रहया, देह नाव बलिहार।

प्रमतो हार जो पड़े हो तो गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया हे सुख बिहानी राते सारंग महला पंजवा अब मोहे लभ दियो है हर टेका गुरु दयाल पए सुखदाई अंधुले मानक देखा।

जो अल कमला लो भांगे, गुण निधान मनमोहन लाल ने सुखदाई सर्वांगे, गुरु नानक प्रभ पाए पठायो मिलो सखा गल लागे। सार महला पंजवा, अब मोरो ठाकुर सो मन माना, साध कृपाल दे।

मेरे मन शीत आये त्रय रंगा, बिसरो तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा। रहाओ हर सेवो हर हृदय बसावो, हर पाया सत्संगा। ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम, सुख पाए मुख मंगा। प्रयो अपना गुर बसर दीना, कोगो पोग निसंगा। निरपो पै नानक पौ मिटिया, हर पायो पाठंगा। सारंग महला पंजवा, हर जियो के दर्शन को कुर्बानी। बचन नाद मेरे श्रवनो पूरे, देहा प्रय अंक समानी। रहाओ सूटर ते गुर की सुहागन, हर पायो सुगुर सुजन।

गोविंद भजन के निरपैवा पारी, हर रास नानक राम नामा, सार महला पंजवा, मेरे मन मिष्ट लगे प्रह बोला, गुरबां पकड़ प्रभ सेवा लाए, सद दयाल हर टोला रहाओ।

जन नानक के प्रपुरख विदाते मेरे ठाकुर अगै अतोला सारंग महला पंजवा रसना राम कहत गुण सोहन एक निमख उपा

गुरमिल ऐसे प्रभु के आया, कयो कृपाल दयाल दुख पंजन, लगे न ताकी बाया रहाओ, जेते सास सास हम लेते, जेते ही गुण गाया, निमख न बिछरे करी न बिछरे, सद संगे जत जाया, हों बल बल बल बल चरण कमल को, बल बल गुर दर्शाया, कहो नानक काहू परवाह, जो सुख सागर में पाया, सारंग महला पंजवा, मेरे मन शब्द लगो गुर मीठा, खुलियो कर्म पयो।

आखे निमक बचन प्रभ ही रह बसियो सगल कूफ मेरी लाखे रहाओ कृपा निदान गुण नायक ठाकुर सुख समूह सब नाथे एक आस मोय तेरी स्वामी और द्वितीया आस बिराथे नैन तृप्ता से देख दर्शावा गुर कर तारे मेरे माथे कहो नानक मैं अतुल सुख पाया जन्म मरण पहला थे सारंग महला पन्नवा रे मूड़े आन काहे कत जाए संग मनोहर अमृत है रे फूल फूल बिखाई रहा।

न्यायी जैसे मात पिताई तिस बिन निमक नहीं रह सकी है बिसरना कब हूँ जाई। कहो नानक मिल संत संगत ते मगन पए लिवलाई सारंग मैला पंजवा अपना मीत स्वामी गाये आसना अवर काहू की कीजे सुखदाता प्रभ ध्याये रहाओ सुख मंगल कल्याण जिसे घर तिस ही शरणी पाये तिसे त्याग मानुष जे सेवो तो लाज लोन हो जाये। एक ओट पकरी ठाकुर की गुरमिल मत बुद पाये।

तब अरोग जब तुम संग बसतो छुटकत होए रवारे कमन बसेरो दास दासन को थाप्यो थापन हारे नाम न विसरे तब जीवन पाये बिनती नानक हे सारे सारंग मेला पंजवा मन ते पै पौ दूर पर आयो लाल दयाल गुलाल लाडले सहज सहज गुन गायो रहाओ गुर बचनात समात कृपा से बहुर न कथु धायो रहत उपाद समाद सुख आसन भगत वचल गृह पायो नाद विनोद कोड आनंदा सहजे सहज समायो करना आप करावन आपे

कहो नानक सास विचारो सारंग महला पंजवा बिन प्रभ रह न जाए करी सर्व सुख ताहू कै पूरन जा कै सुख है हरी राव मंगल रूप प्राण जीवन तन सिमरत अनद घना वट समरथ सदा सद संगे गुण रसना कवन भना थान पवित्रा मान पवित्रा पवित्र सुनन कहन हारे कहू नानक तिल पवन।

अपने पै मान अपने पैताना अपने ही पै अर्था किन्ही राज जोबन तन मिलखा किन्ही बाप महतारी सर्व थोक नानक गुर पाए।

अपनी इतनी कछु न सारी, अनेक काज अनेक तावरता, पुरजियो आन जंजारी रहाओ, दियोस चार के दिशे संगी, पूहा नाही जह भारी, तिनस्यों राच मात हित लाए।

आज काल खुले तेरी गांठली सारंग महला पंजवा गुरजियो संग तुहारे जानियो कोट जोद ओआ की बात न पुछिए ता दरगे भी मान्यो रहाओ कवन मूल प्राणी का कहिए कवन रूप दृष्टानियो

जन का संग पाई वडभागी, नानक संतन कह कुर्बान। सारंग महला पंजवा, करो गत दयाल संतो मोरी, तुम समरथ का

संताप मित्र सत्र पेख समत विचार्यो सगल संबाखन जाप तपत बुझी शीतल आघाने सुन अनहद विषम पै विषमाद अनद भया नानक मन साचा पूरन पूरे नाद सारंग महला पंजवा मेरे गुर मोरो सहसा उतारिया तिस गुर कह जाइए बलिहारी सदा सदा हो वारिया रहाओ गुर का नाम जपियो दिन राती गुर के चरण मन धारिया।

रहाओ। हर हर हर हर मन आराधे, रसना हर जस गावे, तज अभिमान काम क्रोध निंदा वासुदेव रंग लावे। दामोदर दयाल आराधो गोविंद।

बाशत फल पाओ सहु नानक लाभ लहा ले चालो सुख से ती कर जाओ सारंग महला पंजवा ठाकुर तुम शरण आई आया।

अनद अनद गुण गाया, बाँ पकड़ कदली ने अपने ग्रह अंधकूप ते माया। कहो नानक गुर बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया। सारंग महला पंजवा, हर के नाम की गत ठांडी, वेद पुराण सिमरत साधु जन, खोजत खोजत काढ़ी, रहाओ शिव ग्रंथ अर इंद्र।

एक सस्यो लिवलाओ कहो नानक ताकी सरनाई देश सगल अपियाओ सारंग महला पंजवा होती नहीं कवन कछ करनी यह ओट पाई मिल संते गोपाल एक की सरणी रहाओ पंच दोष छिदर या तन में दिखे ब्याद की करनी।

पै हरणी मन बांछत चितवत नानक दास तेख जीवा प्रभ चरणी सारंग महला पंजवा सीते हर के नाम बिन साध अमृत रस कीर्तन हर गाय।

सच तन वन जो सच तन संचो कबू न आवो हारे खास खर्चत किछ निखुटत नाही अगनत परे पंडारे कहो नानक शोभा संग जावो पार ब्रह्म कै द्वारे सारंग महला पंजवा प्रभ जी मोहे कवन अनाथ बिचारा कमन मूल ते मानुष करया।

आवे राम शरण वड पागी, एक बिन किछ होर न जाने, और उपाव त्यागी रहाओ। मन बच कर्म अरादे हर हर, साध संग सुख पाया, अनद विनोद अकथ कथा रस, साचे सहज समाया। कर कृपा जो अपना कीनो, ताकि उत्तम बाणी, साध संग नानक निस्तरिये, जोरा ते प्रभ।

जियो प्राण आधार तेरा, तूने थावे थाओ सास सास संभाल हर हर, नानक सद बल जाओ सारंग महला पंजवा, बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ, मुक्त पदार्थ साधु संगत अमृत हर का नाओ रहाओ, उत्तम कथा सुनी जय श्रवणी, मया करो भगवान आवत जात दो पख पूरन, पाये सुख विश्राम सोदत सोदत सत विचार्यो, भगत श्रेष्ठ पूरी कहो नानक इक राम नाम बिन, अवर सगल विद उरी सारंग महला पंजवा, साचे सतगुरु दा तारा दर्शन देख सगल दुख नाते, चरण कमल बलिहारा।

आओ। अगम अगोचर मित नहीं पाये, सगल कथा आधार, नानक वाहो वाहो कहो ताको, जाका अंत न पार। सारंग महला पंजवा, गुर के चरण बसे मन मेरे, पूर रहो ठाकुर सब थाई, निकट बसे सब ने रह रहाओ। बंधन तोर राम लिवलाई, संत संग बन आई, जन्म पदार्थ तयो पुनीता, इच्छा सगल पुजाई। जाको कृपा करो प्रभ मेरे, सोहर का जस गावे, आठ पहर गोविंद गुण गावे, जन नानक सद बल जावे। सारंग महला पंजवा, जीवन सौ गनिये हर पेखा, करो कृपा प्रीतम मनमोहन, और परम की रेखा रहाओ। कहत सुनत किछ शांत ना उपजत, बिन विश्वास क्या देखा, प्रभु त्याग आन जो चाहत, ताके मुख लागे का लेखा। जाके रास सर्व सुख स्वामी, आन न मानत देखा, नानक दर्श मगन मन मोहयो, पूरन अर्थ विशेखा। सारंग महला पंजवा, सिमरन राम को।

जन्म मरण संकट ते छूटे, जगदीश भजन सुख ध्यान, तेरी शरण पूरन सुख सागर, कर कृपा देवो दान। सिमर सिमर नानक प्रभु जीवे, दिल जाए अभिमान। सारंग महला पंजवा, तूरत सोई जे तुर को लागे, सोई तुरंतर सोई बसंदर, हर एक

भगत गुण गावत गीजे होहत नै संसार रहाओ। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी एहो साधको आचार। चरण कमल अस्थित हृदय अंतर पूजा प्राण को आधार। प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती कृपा अपनी धार। नाम निधान उचरो नित रसना नानक सद बलिहार। सारंग महला पंजवा हर के नाम हीन मत थोरी। सिमरत नाहीं श्री कर ठाकुर मिलत अंध दुख कोरी।

पूरन परमानंद मन मीठो तिस बिन दूसर नाहे। जप तप संजम कर्म सुख साधन तुलना कछु लाहे। चरण कमल नानक मन भेद्यो चरण संग समाए। सारंग महला पंजवा मेरा प्रभ संगे अंतर जामी। आगे कुशल पाछे खेम सूखा।

दान दे नानक अपने को चरण जीवा संत तोए। सारंग महला पंजवा जीवत राम के गुण गाए करो कृपा गोपाल बीठले।

आप भुलाया बिखै ठगौरी पियो रहाओ। कोट जन्म प्रमतो बहु भांति थित नहीं कठु पाई, पूरा सतगुरु सहज

पीवत अम्यो मनोहर हर रस जप नानक हर बिस्माद। सारंग महला पंजवा कीने पाप के बहु कोट दिन सरैनी।

पूरन होत न कथो बातें अंत प्रतिहार रहाओ। सांस सुख ना सहज उपजे यह इस व्यवहार, आप पर का कछ न जाने काम करो दे जार। संसार सागर दुख व्यापियो दास ले वो तार। चरण कमल

नानक जोन प्रवीण गोविंद बिसरे कवन दुख गनिया सुख नानक हर पद चीन सारंग महला पंजवा मायरी चरने ओट गही दर्शन पेख मेरा मन मोहयो।

अपना प्रभु त्याए रतन जन्म अपार जीतियो बौड़ जोन ना पाए पय कृपाल दयाल गोविंद पया साधु संग हर चरण रा

मानो द्वितीया पाओ सब लुहराओ त्याग गोपाल और जो करना ते बिखिया के खूह दर्श प्यास मेरा मन मोयो काडी नरक ते तू संत प्रसाद मिलियो सुखदाता बिनसी हो मैं हूँ राम रंग राते दास नानक मौलियो मन तन जूह सारंग महला पंजवा।

हर पज आन कर्म विकार, मान मोह ना बुझत तृष्णा, काल ग्रस संसार रहाओ। खात पीवत हस्त सोवत, औद बिति असार, नरक उदर परमंत जलतो।

गोविंद गुप्त होए रहो न्यारो, मत अंग मत अहंकार, कर कृपा प्रभ संत राखे, चरण कमल आधार, कर जोर नानक।

सेवक पै दूर करन कलमल दोख जाले, कहत मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते। राम राम सार भूत नानक तत बिचारे, सारंग महला पंजवा नाम भगत मांग संत त्याग सगल।

रहो रहाओ दृष्टो कछ संग ना जाए मान त्याग मोहा एक हर प्रीत लाए मिल साध संग सोहा पायो है गुण निधान सगल आस पूरी नानक मन आनंद भये गुर बिखम गार तोरी सारंग महला पंजवा।

कटे न कीमत पाई, बिन नावे सब कोई निर्धन, सतगुरु बूझ बुझाई, प्रीतम प्राण पै सुन सजनी, दूत मोए बिख खाई, जब की उपजी तब की तैसी, रंगुल भई मन भाई, सहज समाध सदा लिव हर्ष्यों, जीवा हर गुण गाई, गुर के शब्द रता बैरागी, निज कर ताड़ी लाई, सुद रस नाम

कोट कल्प के दुख विनाशन साथ दृढ़ाए निवेरा रहाओ। क्रोध निवार जले हो ममता प्रेम सदा नौ रंगी, अनपो विसर गए प्रभ जाच्या हर निर्माइल संगी। चंचल मत त्याग पौ पंजन पाया एक शब्द लिव लागी, हर रस चाख त्रिखा निवारी हर मेल ले बढ़ पागी। अमृत सिंच भय सुबर सर गुरमत साच निहाला, मन रत नाम रते नहीं केवल आज जुगा दयाला। मोहन मोह लिया मन मोरा बड़े पाग लिव लागी, साच विचार किल विख दुख काटे मन निर्मल अनरागी।

हर रसरते अधिकाई, एक तस्बिन में अवर न जाना, सतगुरु बूझ बुझाई, अगम अगोचर अनाथ अजोनी, गुरमत एको जानिया, सुबर भरे नाही चित डोले।

हर नदर करे सोई जन पाए, गुरमुख विर ले जानी रहाओ। हर गहर गंभीर गुणी गहीर, गुर कह शब्द पछानिया। बहुविध कर्म करें पाए दूजे, बिन शब्द बहुरानिया। हर नाम नाम है सोई जन निर्मल, फिर मैला मूल ना होई। नाम बिना सब

सच संजम करनी किरत कमावे आवन जान रहाई से दर साचे साच कमावे जिन गुरमुख साच अधारा।

मुक्त पए साध संगत कर, तिनके अवगन सब पर हरिया, तिनको देख पए कृपाला, तिन पव सागर तरिया, हम नानी ने

अगम अगाध सुनो जन कथा, पार ब्रह्म की अचरज सभा रहाओ। सदा सदा सतगुरु नमस्कार, गुर कृपा ते गुण गाए अपार। मन पीतर होवे प्रगास, ज्ञान अंजन अज्ञान बिना।

का दाता, कट कट पूरन है अलपाता, कट कट पूरन कर विस्थीरन, जल तरंग ज्यों रचन किया, हब रस माने भोग।

कौन उपमा दियो कवन बढ़ाई, पूरन पूर रहो सर्व ठाई, पूरन मनमोहन कट कट सोहन। जब खिंचे तब छाई, क्यों ना अरादो मिलकर साधो, करी मोहतक बेला आई, अर्थ दर्ब सब जो किच दीस है, संग ना कछु जाई, कहो नानक हर हर आरादो, कवन उपमा दियो कवन बढ़ाई।

परवेशा अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई थान थान अंतर देशा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह न सको हर जैसा देख चरित नानक मन मोयो।

कर कर करता करे करे मनमुख मरिए गुरमुख तरिए नानक नदरी नदर करे पौड़ी मनमुख दूजा परम है दूजे लोभाया कूड़ कपट कमाम दे कूड़ो अलाया पुत्र कलत्र मोहित है सब दुख समाया जम दर बद्दे मारिए परमे परमाया मनमुख जन्म गवा।

जिनको दितिया तिना मिले पंडार। जय पंडारी हूँ गुण हितले तेकी है परवान, नदर तिना को नानका ना।

आख ना जापे आख पौड़ी ना ही सुनिए मन रहसिए नामी शांति आई ना ही सुनिए मन तृप्तिए सब दुख गवाई ना ही सुनिए नाम उपजे नामे वड्याई नामे ही सब जात पत नामे गत पाई गुरुमुख नाम ती आई है नानक लिव लाई। श्लोक महला पहला झूठ न रागी झूठ न वेदी झूठ न चंद सूरज की पेदी झूठ न अन्नी झूठ न नाई झूठ न मिहो वरे सब थाई झूठ न तरती झूठ न पानी झूठ न पौने माई समानी नानक निगुरिया गुण।

ता नानक कहिए मूरत पौड़ी। सतगुर अमृत बिरख है अमृत रस लिया, जिस प्राप्त सोल है गुर सब दीन लिया। सतगुर के पाणे जो चले हर से पीर लिया, जम काल जो न सकई कर चानन बलिया। नानक बख्श मिलायन फिर गर्व न गलिया। श्लोक महला पहला सच वर्त संतोष।

इकना नाद ना वेद ना गी रस रस तस ना जानंत इकना शुद्ध ना बुद्ध ना अकल सर अखर का प्यो ना लहंत नानक से नर अस

वस्त पराए आप गर्व करे, मूर्ख आन गनाए, नानक बिन बूझे किन्ह न पायो। फिर आवे जाए महला तीजा, मन आनंद भया मिलिया हर प्रीतम। सरसे सज्जन संत प्यारे, जो तुर मिले ना विछड़े कबहू, जे आप मेले करतारे। अंतर शब्द रविया गुर पाया, सगले दुख निवारे, हर सुख दाता सदा।

जित खावे सब फुक जाए। कृष्णा मूल न हो गई नाम वसे मन आए। बिन नामे जे होर खाना चित रोग लगे तन खाए। नानक रस सब सलाहना आपके ले मिलाए महला तीजा। जिया अंदर जियो सब।

शिमा हर गुरमुख नाम दे आए दुख पुख काना सब चुकाए सी मियों उठा छे बरलाए सब तरत पाई हरियावली अनजमिया बोहल लाए हर अचिंत बुलावे कृपा कर हर आपे पावे थाए हर तिसे त्यावो संत जनों जो अंते ले चलाए हर कीर्त पगत आनंद है सदा सुख वसे मन आए जिना गुरमुख नाम आराध्या तिना दुख दुख ले जाए जन नानक तृप्ते गाए गुण हर दर्शन देहो सुभाए पौड़ी गुर पूरे की दात नित देवे चढ़े सवाइया तुस देवे आप दया।

आप छोड़ सरनाए पवे मन ले रजाए। गुरुमुख जम डंड ना लगे हों मैं विचों जाए, नानक सेवक सोई आखिए जे सच रहे लिवलाए महला तीजा। दात जोत सा

हर के संत सदा सिर पूजो, जो हर नाम जपात, जिनको कृपा करत है गोविंद, के सत्संग मिलात, मात पिता बनता सुख संपत, अंत न चल संगात, कहत कबीर राम पद।

जिस गुरु वचनी मन मानिया हर वर नार तई सोहागण मन तन प्रेम सुखानिया अवगन त्याग तई बैरागण अस्थिर वर सोहागरी सोग विजोग तिस कदे ना व्यापे हर प्रभ अपनी कृपा करी आवन जान ही मन में चले पूरे गुर की ओट गही नानक राम नाम जप गुरमुख तन सुहागन सच सही मलार महला पहला साची सुरत नाम नहीं तृप्ते हों मैं तृप्त गवाया।

हर का नाम नभाया, रतन पदार्थ पर हर क्या गया, जग को तप ही आया, जिसका कीत पे उत ही ते, उत ही मन समाया, अधिक स्वाद रोग अधिकाई।

जिन तन तिर का साब न जानिया साबिल को बदन कुमलानी कई निराशी कर्म की फांसी बिन गुर कर्म तुलानी बरस कना मेरा सुर कर आया बल जावा गुर अपने प्रीतम जिन हर प्रभ आन मिलाया रहा नौतन प्रीत सदा ठाकुर स्यो हम जिन पगत सुहावी मुक्त पय गुर बरस दिखाया जुग जुग पगत सुभावी हम थारे त्रिभुवन जग तुमरा तू मेरा हो तेरा सतगुर मिले निरंजन पाया।

गुरमत नाम आधारो मुक्त पाई बंधन गुर खोले सरद सुरत पट पाई नानक राम नाम रुद अंतर गुरमुख मेल मिलाई महला पहला मलार पर दारा पर तन पर लोबा होमे बिछे बिकार दुष्ट पाओ तज निंद पर आई काम क्रोध चंडार महल में बैठे अगम अपार पीकर अमृत सोई जन पावे जिस गुरु का शब्द रतन आचार रहाओ दुख सुख दो शंकर।

प्राप्त गुरदाता दे मनहार गुरमुख सुख सोई जन पाए जिसनो नगर करे करतार काया महल मंदिर कर हरता तिसने राखी जोत अपार नानक गुरमुख महल बुलाई है।

कुछ कह न जाए, क्या कर आंख रखानी है माए रहाओ, ऊपर बर समान प्याल क्यों कर कहीं है दो विचार, बिन जेवा जो जपह आए कोई जाने कैसा ना हो, कथनी बदनी रह निवरात, सो बूझे हो जिस बात, अहम से अंतर रह निवरात।

पहरा सोए मल्हार महला पहला दुख विछोड़ा एक दुख भूख एक दुख सकतवार जमदूत एक दुख रोग लगे तन काए वेदना पोले।

मानसता तल तब मैं सासे सास दे पाया तल पाए ताके पाछे कोई न खाए कंचन काया निर्मल हंस जिसमें नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूटे से साचे नाए मलार महला पहला दुख महुरा मारन हर नाए।

जिस ते होआ तिसे समाना, चूक गया पासारा मलार महला तीजा। जिन्नी हुकम पछाणिया से मेले हो मैं शब्द जलाए, सच्ची भगत करे दिन राती सच रहे लिवलाए। सदा सच हर वेख रे गुर कै शब्द सुभाए, मन रे हुकम मन सुख होए प्रभ पाना अपना भावदा। जिस बख्शे तिस बिघन ना कोए रहाओ, त्रै गुण सबा तात है ना हर भगत ना भाए। गत मुक्त कदे ना हो वही हो मैं कर्म कमाए, साहिब पावे सोथी है पये किरत फिराए। सतगुरु तोते मन मर रहे हर नाम वसे मने।

मेरा हर पद अगम अगोचर है, कीमत कह न जाए, गुरु प्रसादी बुझिए, सब देकार कमाए, नानक नाम चलाए तू, हर हर दर शोभा पाए, मलार मैला पीजा, गुरमुख कोई गिरना बूझे,

आले गुरमत सत्संगत ना बिछड़े आंदन नाम समाले सबना करता एक तू नित कर देखे विचार एक गुरमुख आप मिलाया बख्शे पगत पंडार तू आपे सब किस जानदा किस आगे करी पुकार हर हर नाम अमृत है नगरी पाया जाए आंदे हर हर उचरे गुर के सहज सुवाए नानक नाम निधान है नामे ही चुपलाए मलार महला की जाए गुर सावाही सदा सुख दाता।

एक तो एक बसे मन स्वामी, दूजा और न कोई, एक को नाम अमृत है मीठा, जग निर्मल सब सोई, नानक नाम प्रभु ते पाया, जिनको तुर लिखिया होई, मलार महला तीजा, गण गंधर्व नामी सब उदरे, गुर का शब्द विचार, हूँ मैं मार सब मन वसाया, हर राख्या उधार, जिसे बुझाए सोई बुझे।

मुझ सुख अंतर सदा निभय तेरे आल राव। मन मुखता खंड कदे न चूके दूजे पाए दुख पाए नाम विसार दिखिया मन राते बिरथा जन्म गवाए ए वेला सुर हथ नावे अंदिन सदा पछताए मर मर जन्मे कदे न बूझे विस्ता मैं समाए गुरमुख नाम रते सेव दुरे गुर का शब्द विचार जीवन मुक्त हर नाम त्याए।

हे कशबिन मैं और ना जाना सतगुरु दिया बुझाई मन मेरे नाम रहो लिवलाई अदिष्ट अगोचर अपरंपर करता गुर कै शब्द।

इहो हुकम कर श्रेष्ठ उपाय। गुर प्रसादी बूझो भाई, सदा रहो हर की शरणाई। सो पंडित जो तिहा गुणा की पंड उतारे, अन दिन एको नाम बखाने।

तिन जम के सब लागो पाए। हौ जीवा सदा हर के गुण गाई, गुर का शब्द महारस मीठा, हर के नाम मुक्त गत पाई रहाओ। माया मोह अज्ञान दुवार, मनमुख मोहे मुक्त गवार, हम दिन तंबा करत निहाए, मरमर जम में मिले सजाए। गुरमुख राम नाम ले लाई, पूरे लालच ना लपताई, जो कुछ हो वह सह सुवाए, हर रस पीवे रसन रसाए, कोट मदे किसे बुझाए।

रसना नाम सब कोई कहे, सतगुरु सेवे का नाम लहे, बंधन तोड़े मुक्त कर वह, गुर शब्दी अस्थिर कर गह, मेरे मन काहे रोष करी जाए, लाहा कल गुराम नाम है, गुरमत अंदन हृदय रवी जाए, रहाओ बाबी हा खिन खिन दिल लाए, बिन तुर देखे नींद ना पाए, यो विछोड़ा सहा ना जाए, सतगुरु मिले का मिले सुमाए, नाम ही दिन से दुख पाए, तृष्णा जलिया पूख

सब आशा मनसा बंधन टूटे, हर हर प्रभ कृपा धारी, नैनी हर हर लागी तारी, सतगुरु देख मेरा मन बिगस्यो। जन हर पेट्यो बनवारी रहाओ, जिन ऐसा नाम विसारिया मेरा हर हर, तिस्ते कुल लागी गारी, हर तिस्ते कुल प्रसूत ना करियो, तिस विधवा कर मैं तारी, हर हर आन मिलावो गुर साधु, जिस एनस हर

मिले बनवारी मल्हार महला चौथा गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते करें उद्दम तूर साधु की ताई किलविक मैल परे परे हमरे विच हमरी मैल साधु की तूर गवाई तीरथ असठ मज्जन नाई सत्संगत की तूर परी उड़ नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ जाहर नवी तपे पागी रथयानी केदार थाप्यो महसाई काशी कृष्ण चरावत गाऊ मिल हर जन शोभा पाई जितने तीरथ देवी थापे सब जितने लोचे तूर साधु की ताई हर का संत मिले गुरु।

साधु तूर दे हर पार लंगाई मल्हार महला चौथा किस जन को हर मीठ लगाना जिस हर हर कृपा करे उसकी पूख दुख सब उतरे जो हर गुण हर उचरे जप मन हर हर हर निस्तरे गुर के बचन करण सुन ध्यावे अब सागर पार करे रहाओ किस जन के हम हाथ बिहाजे जिस हर हर कृपा करे हर जन को मिलिया सुख पाए सब दुर्मत मेल हरे हर जन को हर पूख लगानी जन तृप्त जा हर गुण बिचरे हर का जन हर जलता मीना हर विसरत फूट मरे जिन ए प्रीत लाई सो जाने तो जाने जिस मन धरे जन नानक हर देख सुख पावे सब तन की पूख करे।

उतरी जो गुरमत राम रस्थांत रहाओ हर के दास साध सखा जन जिन मिलिया लह जाए प्रांत जो जल दूध पिन पिन का दे चुन हम सुना त्यों देही ते चुन का दे साधु हो मैं तात जिनके प्रीत नाही हर हृदय ते कपटी नर नित कपट तमात तिनको क्या कोई देख वाले वो आप बीज आते ही खाते हर का चिन्ह सोई हर जन का हर आते जन में आप रखाते तन तन गुरु नानक समदर्शी जिन निंदा उस्तत परित्रांत मलार महला चौथा अगम अगोचर नाम हर उत्तम हर कृपा ते जप लया सत संगत साध पाई वड पागी संग साधु पार पया मेरे मन अंदिन अंध भया।

0: तिन संगत हर मेलो करमया, तिनका दर्श देख सुख पाया, दुखों में रोग गया, जो अनदिन हृदय नाम ध्यावे, सब जन तिना का सफल भया, वो आप करे सृष्ट सरकारी, सब कुल भी पार पया, तुद आपे आप उपाया सब जग, तुद आपे वश कर लया, जन नानक तो प्रभु कृपा धारी, दिख दुबदा काब लया।
1: मल्हार महला चौथा। गुर प्रसादी अमृत नहीं पिया, कृष्णा भूख न जाई, मन मुख मूड जलत अहंकारी, हों मैं विच दुख पाई, आवत जात बिरथा जन्म गवाया, दुख लागे पछताई, जिसते उपजे तिसे न चेते, त्रिग जीवन त्रिग खाई, प्राणी गुरमुख नाम दे आई, हर हर कृपा करे गुर मेले, हर हर नाम समाई रहा, मन मुख जन्म भया है बिरखा, आवत जात ल जाई, काम क्रोध डूबे अभिमानी, हो मैं विच जल जाई, तिन सिद्ध न बुद्ध भई मत मदन, लोभ लह दुख पाई, गुर बिहून महा दुख पाया, जम तकरे दिल लाई, हर का नाम अगोचर पाया, गुरमुख सह सुभाई, नाम निधान वस्या घट अंतर।

ए मंदर कर अपनाए। जो ग्रह लाल रंगी ओ आया तो मैं सब सुख पाए। संत सभा ओट गुर पूरे तुर मस्तक लेख लिखाए। जन नानक संत रंगीला पाया फिर दुख न लागे आए। मल्हार महला पंजवा खीर आधार बारक जब होता बिन खीर रह न जाई। सार संभाल माता मुख नीर तब हो तृप्त अघाई। हम बारक पिता प्रभु दाता फूले बारक अनक लख दरिया अनठौर नाही जय जाता रहाओ। चंचल मत बारक बपरे की सर्फ अगन कर मेले। माता पिता कंठ लाए राखे अनद सहज तब खेले। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी इस बारक भूख कैसी। नव निध नाम निधान गृह तेरे मन बाँचे सो लैसी। पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारक मुख मांगे सो देना। नानक बारक दर्श प्रभ चाहे मोहि हृदय बसे नित चरना। मल्हार महला पंजवा सगल विधि जुर आहर करया। सजियो सगल अंदेशा कार्य सगल अरंभियो करका। ठाकुर का भरोसा सुनिए बाजे बाज सुहावी। और पया मैं प्रेम मुख देखे गृह मंगल सुहलावी रहाओ। मनुआ लाए सवारे थाना पूछो संता जाए। खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो पगत करो निर पाए। जब प्रे आए बसे गृह आसन तब हम मंगल गाया। मीत साजन मेरे पहे सुहेले प्रभु पूरा गुरु मिलाया। सखी सहेली पहे अनंदा गुर कार्य हमरे पूरे। कहो नानक वर मिलिया सुख दाता छोड़ न जाई दूरे। मल्हार महला पंजवा राज ते कीट कीट ते सुरपत कर दोख जठर को परते। कृपा निध छोड़ आम को पूजे आत्म का ती हरते। हर बिसरते दुख दुख मरते अनेक बार प्रमय बहु जोनी एक न काहू तरते रहाओ। त्याग स्वामी आन को चितवत मूड मुगद खल खरते।

चिकन में जरते नानक शरण चरण कमलन की तुम ना डारो प्रभ करते राग मलार महला पंजवा दुख दे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ मेरे ओए बैरागी त्यागी हूँ एक खिन तिस बिन रह न सको प्रीत हमारी लागी रहाओ उनके संग मोहे

कृपाल पै बड़ पागी महा सुख पाया बर न पाको रेन नानक जन पागी मल्हार महला पंजवा माई मोहे प्रीतम देहो मिलाई सगल सहेली सुख पर सूती जे कर लाल बसाई रहाओ मोहे अवगन प्रभ सदा दयाला मोहे निर्गुण क्या चतुराई करो बराबर जो प्रे संगराती ए हो मैं कीटी ठाई तई निमानी शरण इकता की गुरु सब गुरु पुरुष सुखदाई एक निमख में मेरा सब दुख काटिया नानक सुख रहन बिहाई मल्हार महला पंजवा बरस मेघ जी तिल बिलम न लाओ बरस प्यारे मने सदारे होए आनंद सदा मन चाओ रहाओ।

तत शोभा तले अचारे मल्हार महला पंजवा प्रीतम साचा नाम ध्याए दुख दर्द बिन सह पव सागर गुर की मूरत हृदय बसाए रहाओ दुश्मन हते दोखी सब व्यापे हर शरणाई आया राख नहारे हाथ दे राख्यो नाम पदार्थ पाया कर कृपा किलवित सब काटे नाम निर्मल मन दिया गुण निधान नानक मन वस्या बहुर दुख ना थिया मल्हार महला पंजवा प्रभ मेरे प्रीतम प्राण प्यारे प्रेम भगत अपनो नाम दीजै दयाल अनुग्रह तारे रहाओ सिमरो चरण तुहारे प्रीतम हृदय तुहारी आशा संत जना तह करो बेनंती मन दर्शन की प्यासा बिछड़त मरण जीवन हर मिलते जन को दर्शन दीजै नाम आधार जीवन तन नानक प्रभ मेरे कृपा की जय मल्हार महला पंजवा अब अपने प्रीतम स्यो बने आई राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाओ एक पल बिसरत नहीं सुख सागर नाम नवे निद पाई उदोत पयो पूरन पावी को तेते संत सहाई सुख उपजे दुख सगल विनाशे पार ब्रह्म लिवलाई करो संसार कथन पै सागर हर नानक चरण ध्याई मल्हार महला पंजवा तन हर बरस सगल जग छाया तय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहाओ मिटे कलेश त्रिसं सब बूजी पार ब्रह्म ध्याया साध संग जन्म मरण निवारे बहुर न कतु धाया मन तन नाम निरंजन रातो चरण कमल लिवलाया अंगीकार कियो प्रभ अपने नानक दास शरणाया मल्हार महला पंजवा बिचरत क्यों जीवे ओए जीवन चितह उलास आस मिलवे की चरण कमल रस पीवन रहाओ जिनको प्यास तुम्हारी प्रीतम तिनको अंतर नाही जिनको बिसरे मेरो राम प्यारा से मुए मर जाही मन तन रव रहा जगदीशर देखत सवाह जूरे नानक रव रहो सब अंतर सर्व रहा पर पूरे मल्हार महला पंजवा हर कै भजन कौन कौन न तारे खग तन मीन तन मृग तन ब्राहा तन साधु संग उदारे रहाओ देव कुल दैत कुल जख किन्नर नर सागर उतरे पारे जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख बिदारे काम क्रोध महा बिख्या रस इनते पै निरारे दीन दयाल जपे करुणा में नानक सद बलिहारे मल्हार महला पंजवा आज मैं बैस्यो हर हाट नाम रास सांझी कर जनस्यो जाऊ न जम के काट रहा।

नाथ दीन दुख पंजन आप लिए लड़ लाई हर की ओट जीवे दास तेरे नानक प्रभ शरणाई मलार महला पंजवा मन मेरे हर के चरण रवि जय दर्श प्यास मेरो मन मोयो हर पंख लगाए मिली जय रहाओ खोजत खोजत मार्ग पायो साधु सेव करी जय पार अनग्रो स्वामी मेरे नाम महारस्ती जय त्राहे त्राहे कर सरनी आए जल को कृपा की जय कर गह लिहो दास अपने को नानक अपनों की जय मलार महला पंजवा प्रभ को भगत बछल बिरदायो निंदक मार चरण तल दीने अपनो जस वरतायो रहा।

कार्कियो में स्वामी प्रमको में सुखायो महा आनंद करो दास हर के नानक विश्वास मन आयो राग मल्हार महला पंजवा चौक दे कर दूजा इको अंकार सतगुरु प्रसाद गुरुमुख दीसे ब्रह्म प्रसार गुरुमुख त्रै गुणिया विस्तार गुरुमुख नाद वेद विचार बिन गुर पूरे कोर अंधार मेरे मन गुर गुर कर सदा सुख पाए गुर उपदेश हर हृदय वस्यो सांस गिरास अपना खसम त्याय।

गुरु बोहत पग जल तारण हार, गुरु पेटे ना होए जोन अवतार, गुरु की सेवा सो जन पाए, जाको कर्म लिखिया तुर आए, गुरु मेरी जीवन गुरु आधार, गुरु मेरी वर्तन गुरु परवार, गुरु मेरा खसम सतगुरु शरणाई, नानक गुरु पार ब्रह्म जाकी कीम ना पाई, मनार महला पंजवा गुरु के चरण हृदय वसाए, कर कृपा प्रभु आत मिलाए, अपने सेवक को ले प्रभु लाए, ताकि कीमत कही न जाए, कर कृपा पूरन सुख दाते, तुमरी कृपा से तू चित आवे, आठ पैर तेरे रंग राते रहाओ, गावन सुनन सब तेरा भाना, हुकुम बूझे सो

सदा सदा जाइए कुर्बान, काल गवाया करते आप, सदा सदा मन किसनो जाप, दृष्ट तार राखे सब जंत, गुण गावो नित नित भगवंत, एको करता आपे आप, हर के भगत जाने प्रताप, नावे की पैज रखदा आया, नानक बोले तिसका बोलाया, मलार महला पंजवा, गुर शरणाई सगल निधान, साची दरगे पाये मान, ब्रह्म को दुख दर्द सब जाए, साध संग सब हर गुण गाए, मन मेरे गुर पूरा सालाए, नाम निदान जपो दिन राती, मन चिंदे फल पाए रहाओ, सत गुर जेवड़।

सो मन निर्मल जो गुर संग राची, गुर पूरा पाए वडवाग, काम क्रोध लोभ मनते त्याग, कर कृपा गुर चरण निवास, नानक की प्रभु सत अरदास, राग मलार नैला।

नानक प्रयो प्रीतम किया मलार महला पंजवा मन कने प्रमय बने उमक तरस पाले प्रभ मिलबे की चाह रहाओ त्रै गुण माई मोह आई कहो बेदन काहे आन उपाव सगर किए नह दुख सा कहलाहे हज शरण साधु नानका मिल गुण गोविंद गाहे मल्हार महला पंजवा त्रै की शोभ सुहावनी नीकी हा हा हु गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाओ तुनत ललित गुणग अनक भांत बहुविध रूप दिखावनी नीकी गिर तर थल जल पवन परपुर कट कट लालन छावनी नीकी साध संग रमैया रस पायो नानक जा कै पावनी नीकी मल्हार महला पंजवा गुर प्रीत प्यारे चरण कमल रिद अंतर धारे रहाओ दर्श सफलियो दर्श पेखियो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे विषम विस्मय विषम भय अब कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तोहार।

संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग तन तोर प्रीत मोर चित चात्रिक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोहो त्याग माया तो हो मिल संत नानक जागया मल्हार महला तन्यवा गुण गोपाल गाओ नीत राम नाम तार चीत रहाओ छोड़ मान तज गुमान मिल साधुआ के संग हर सिमर एक रंग मिट जाहे दोख मीत पार ब्रह्म पै दयाल बिनस गए बिखे जंजाल सात जना के चरण लाग नानक गावे गोविंद नीत मल्हार महला तन्यवा कन गर्जत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन रहाओ हर चरण शरण तरण सागर तुन अनहता रस बैन पथिक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभु देन।

आए शात्रिक जल बिन प्रयो प्रयो टेरे बिल करे बिल लाई कम हर कोर दसो दिस बरसे बिन जल प्यास न जाए मीन निवास उपजे जल ही ते सुख दुख पूर्व कमाई खिन तिल रह ना सके पल जल बिन मरण जीवन तिस ताई तनवाडी तिर देश निवासी सच्चे गुर पै सबद पठाई।

गोसाई गुर प्रसाद कर ही फिर पाया कौ नानक तपत बुझाई मलार महला पहला जागत जाग रहे गुर सेवा बिन हर मैं को नाही अनेक जतन कर रहे न पावे आच पाच टर पाही इस तन तन का कहो गर्भ कैसा बिन सतबार न लागे बवरे हो मैं गर्भ खपे जग ऐसा रहा।

अमर अनाथ सर्व सिरमोरा काल विकाल परम पैखंजन कागद कोट इहो जग है बपरो रंगन चेहन चतुराई नानी सी बूंद पवन पत खोवे जन्म मरे खिन ताई नदी उपकंठ जैसे कर करवर सरपन कर कर माही उल्टी नदी कहाँ कर करवर सरपन डसे दूजा मन माही गरुड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी बिख्या गुरमत जारी मंथन हेम पै सच पाया हर की भगत निरारी जेती है तेती तुद जाते तू सर्व जिया दयाला तुमरी शरण परे पत राखो साच मिले गोपाला बादी तंद अंध नहीं सूजे बदिक कर्म कमावे सतगुरु मिले ता सूजस बूजस सच मन ज्ञान समावे निर्गुण देह साच बिन काची मैं पूछो गुर अपना नानक सो प्रभु प्रभु दिखावे बिन साचे जग सुपना मलार महला पहला चात्रिक मीन जल ही ते सुख पावे सारिंग सरद सुहाई रैन बबीहा बोलियो मेरी माई रमाओ त्रै स्यो प्रीत न उल्टे कबहू जो तै पावे साई नींद गई हो मैं तन फाकी सच मत हृदय समाई।

जुर कै सबद नाम आधार, ना जल डूंगर ना ऊंची धार, निज कर वासा ते मगना चालनहार, जित कर वसे तू है बिद जाने, बीजो महल न जाते, सतगुर बाजो।

एक शब्द राचे सत समाए, चौदिस हुकम वर्ते प्रभु तेरा, चौदिस नाम पतालं, सब में शब्द वर्ते प्रभु साचा, कर्म मिले बयालं, जामन मरणा दिसे सिर उबो, खुदया निद्रा कालं, नानक नाम मिले मन भावे, साची नगर रसालं, मलार महला पहला, मरण मुकत गत सार न जाने, कंठे बैठी गुर शब्द पछाने, तू कैसे आर

मन मेरे हर हर नाम शीतलाए, सतगुर ते हर पाए साचा, हर स्यों रह समाए रहाओ। सतगुर ते ज्ञान उपजै ता ए संसा जाए, सतगुर ते हर बुझिए गर्भ जोनी नह पाए।

वेद बाणी जग वर्तदा त्रै गुण करे विचार बिन नामे जम दंड सहै मरजन में वारो वार सतगुर पेटे मुक्त होए पाए मोक्ष द्वार मन रे सतगुर सेव समाए वड्डे भाग गुर पूरा पाया हर हर नाम ते आए रहाओ हर अपने पाने सृष्ट उपाय हर आपे दे आधार हर अपने भाने मन निर्मल किया हर स्यों लागा प्यार हर कै पाने।

तिस जेवड अवर ना कोई आपे बख्शे मेल लए करम प्राप्त होए साचा साहिब मारो सतगुरु दिया दिखाए अमृत वर्षे मन संतोखिए सच रहे निवलाए हर कहनाए सदा हरियावली फिर सुख कहना कुमलाए बिन सतगुर किने न पायो मन वेखो को पतियाए हर कृपा ते सतगुर पाईए ते कैसे सुवाए मन मुख परम पुलाया बिन पागा हर तन ना पाए त्रै गुण सबा तात है पर करे विचार मुक्त कदे ना हो वई नौ पायन मोख द्वार बिन सतगुर बंधन ना तुटही नाम न लगे प्यार पढ़ पढ़ पंडित।

नानक नामे ही पत उपजै। हर स्यों रहा समाए मल्हार महला तीजा, अष्टपदी कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद हर हर कृपा करे गुर की कारे लाए, दुख पल्लर हर नाम बसाए। साची गत साचे चित लाए, गुर की बाणी शब्द सुनाए। मन मेरे हर हर सेव निधान, गुर कृपा ते हर तन पाई है।

नानक साचे साच समाए राग मल्हार छंत मैला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद। प्रीतम प्रेम भगत के दाते अपने जन संग राते, जन संग राते दिन सराते एक निमख मनो ना विसरै। गोपाल गुण निध सदा संगे सर्व गुण जगदीशरै। मन मोहलीना चरण संगे नाम रस जन माते। नानक प्रीतम कृपाल सदहू किने कोट मदे जाते। प्रीतम तेरी गत अगम अपारे महापतित तुम पारे। पतित पावन भगत वचल कृपा सिंध स्वामिया। संत संगे भजन संगे रहो सदा अंतर जामिया। कोट जन्म परमंत जोनी ते नाम सिमरत तारे। नानक दर्श प्यास हर जियो आप लिहो समारे। हर चरण कमल मन लीना प्रभ जल जन तेरे मीना। जल मीन प्रभ जियो एक तू है पिन आन ना जानिए। गह पूजा लेवो नाम देवो तो प्रसादी मानिए। तज साध संगे

आप उसको आप मिलाया, तम पंजन हर राया, आचर्य स्वामी अंतरजामी, मिले गुण निध प्यारिया, महा मंगल सुख उपजे, गोविंद गुण निध सारिया, मिल संग सोहे देख मोहे, पूर्व लिखिया पाया, बिनवंत नानक शरण तिनकी, जिन्नी हर हर ध्याया, वार मलार की महला पहला, राणे कैलाश तथा माल दे की तुन, इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्लोक महला तीजा, गुर मिले मन रहसिय, ज्यों उठे तरण सिगार, सब दिशे हरियावली,

गुरु नानक सब सुख साचो नाम पौड़ी आपी ने आप साज आप पछाणिया अंदर तरत विछोड़ चंगो आताणिया गिन थम्मा गगन रहाए सब निशाणिया सूरज चंद उपाए जोत समाणिया किए रात दिनंत चोज विलाणिया तीरथ तरम विचार नावन पुरबाणिया तुझ सर अवर न कोए के आख वखाणिया सच्चे तख्त निवास होर आवन जाणिया। श्लोक महला पहला नानक सावन जे वसै चहो उमाहा होए नागा मिर्गा मच्छियां रसियां कर तन होए। महला पहला नानक सावन जे वसै चहो विछोड़ा होए गाई पुत्ता निर्धना पंथी चाकर होए। पौड़ी तू सच्चा सच्यार जिन सच वरताया बैठा ताड़ी लाए कवल छपाया ब्रह्म बड़ा कहाए अंत न पाया ना किस बाप न माए किंतु जाया ना किस रूप न रेख वरन सबाया ना किस भुख प्यास रज्जा ताया गुर में आप समोए शब्द वरताया सच्चे ही पते आए सच समाया। श्लोक महला पहला वैद बुलाया वैदगी पकड़ टंडोले बाहा कोला वैद न जाने।

मारू लोड लहो जित वन्य रोगा कान जित दारू रोग उठिए तन सुख वसे आए रोग गवाए आपना का नानक वैद सदाए पौड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश देव उपाया ब्रह्मे दित्ते वेद पूजा लाया दस अवतारी राम राजा आया दैता मारे ताए हुक्म सवाया ईश महेश्वर सेव तिन्नी अंतना पाया सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया दुनिया तंग दे लाए आप छपाया।

करे हो। नानक चूर मरे दोहागणी चिन अवरी लागाने हो। महला दूजा सावन आया हे सखी जल हर बरसनहार। नानक सुख सावन सुहागणी जिन सहनाल प्यार पौड़ी। आपे छिंज पवाए मलाखाड़ा रचिया लखे परथु पाए गुरमुख मचिया। मनमुख मारे पछाड़ मूरख कचिया। आप पेड़ मारे आप कारज रचिया। सबना खसम एक है गुरमुख जानिए। हुक्मी लिखे सिर लेख विन कलम मसवाणिए। सत संगत मेलाप जिथे हर गुण स्वभाव खानिए। नानक सच्चा शब्द साला है सच पछाणिए। श्लोक महला तीजा। ऊनव ऊनव आया अवर करेंदा वन क्या जाना तिस सास्यों केव रहसी रंग। रंग रहा तिन कामणी जिन मन पाओ पाओ होए। नानक पै पाए बाहरी तिन तम सुख न होए। महला तीजा। ऊनव ऊनव आया वरसे नीर निपंग। नानक दुख लागा तिन कामणी जिन कंते स्यो मन पंग पौड़ी। दोवे तरफा उपाय इक वर्त्या वेद बाणी वर्ताए अंदर वाद कत्या। परविरत निर्विरत हाठा दोवे विच तरंग फिरे रह बारिया। मन मुख कच्चे।

सब करण पलाह करे पौड़ी। सो हर सदा सरे भी है, जिस तर्क न लागे वार, आदाने आकार।

गुरमुख पद सो लेखा निबड़े बक्षे सिर पंडार ओथे हाथ ना अपने कूक ना सुनिए पुकार ओथे सतगुरु बेली हो।

उलाए, जो जल में कमल अलिपत है ऐसी बंत बनाए, से सुखिए सदा सोने जिन विच्चों आप गवाए, तिन सोग विजोग करे नहीं जो हर के अंक समाए।

नानक तिनका आख्या आप सुने, जे लयन पन्ने पाए महला तीजा, अमृत सदा वरसदा बूजन बूजन हार, गुरमुख जिन्नी बुझिया हर अमृत रखिया उधार, हर अमृत पीवे सवा रंग राते होमे तृष्णा मार, अमृत हर का नाम है वरसे कृपा धार, नानक गुरमुख नजरी आया हर आत्म राम मुरार। पौड़ी अतुल क्यों तोलिए बिन तोले पाया ना जाए, गुर के शब्द विचारिए गुण में रह।

है जल फल चौबीस वर्ष दा खाली को ठावना है एक जल वर्ष दे तिख मरे ताग तिना के ना है नानक गुरमुख तिन सोजी पई जिन वस्या मन माहे पौड़ी नाथ जति सिद्ध पीर किने अंत न पाया गुरमुख नाम पियाए।

नील अनिल अगम सरजीत सवाया, अगन उपाई वाद पुख तिहाया, दुनिया कैसर काल दूजा भाया, रखे रखन हार जिन शब्द बुझाया। श्लोक महला तीजा, एहो जल सब कै वसवा, वरसै पाए सुवाए, से बिरखा हरि आवले, जो गुरुमुख रहे।

छुट्टी है आपे बक्षणहार आपे वेखे सुने आप सब सहदे आधार सब में एक वर्तदार।

को विरला बूझे सो जन मुक्त सदा होए पौड़ी सच्चा वे परवाहो इको तू धनी तू सब किछ आपे आप दूजे किस गणी मानस पूरा गर्भ सच्ची तुदमणि आवा गौण रचाए उपाई मेदनी सतगुर सेवे अपना आया किस गणी जे हो मैं विच्चों जाए ताके ही गणत गणी मनमुख मोह गुबार जो पुल्ला मंजवानी कट्टे पाप असंख नामे इक कणी श्लोक महला तीजा बाबी हा खसमे का महल न जानी महल देख अरदास पाए अपने पाने बहुता बोले।

बोलिया खाए न पाए। खसम वड्डा दातार है जो इच्छे सो फल पाए। बाबी हा क्या बपुड़ा जग तै की सिख जाए महला तीजा। बाबी हा किन्नी रहन बोलिया सहजे सच सुभाए। क्यों जल मेरा जियो है जल बिन रहन न जाए। गुर शब्दी जल पाई है विच्चों आप गवाए। नानक जिस बिन चसा ना जीवई सो सतगुरु दिया मिलाए पौड़ी। खंड पताल असंख मैं गणत न होई। तू करता गोविंद तुद सिरजी तुदै गोई। लख चौरासी मेदनी तुद ही ते होई। इक राजे खान मलूक कहे कहावे कोई। इक सांस दाने संत धन दूजे पट खोई। इक दाते इक मंगते सगना सिर सोई। बिना में बाजारिया पीहावल होई। कूड़ निखुटे नानका सच करे सो होई। श्लोक महला तीजा। बाबी हा गुणवंती महल पाया औ गुणवंती दूर। अंतर तेरे हर वसे गुरमुख सदा हजूर। कूक पुकार ना हो गई नदरी नदर निहाल। नानक नाम रते सहजे मिले शब्द गुरु कै काल। महला तीजा। बाबी हा बेनती करे कर कृपा देहो जी दान। जल बिन प्यास न उतरे छुटक जाहे मेरे प्राण। तू सुखदाता बेअंत है गुणदाता निधान। नानक गुरमुख बस ले अंत बेली होए भगवान पौड़ी।

सच्चा अलख अपार तू गुणदाता निदान है असी अवगण यार जिस बच्चे सो पाए सी गुर शब्दी विचार। श्लोक महला पंजवा रात न बिहावी सापता जिना विसरै नाओ राती दिन सुहेलिया नानक हर गुण गाओ। महला पंजवा रतन जवे हर मान का हब्बे मणि मखन नानक जो प्रभ पाणिया सच्चे दर सोहन पौड़ी सच्चा सतगुर शेर सच समा लिया अंत खलोआ आए जे सतगुर अगे कालिया कोई न सके जमकाल सच्चा रखवा लिया गुरसा की जोत जगाए दीवा बालिया मनमुख बिन नावे।

गुरमुख शब्द समा लिए सच्चे के गुण गाओ नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच समाओ पौड़ी पूरा सतगुर सेव पूरा पाया पूरे कर्म त्याए पूरा शब्द मन वसाया पूरे ज्ञान ध्यान मैल चुकाया हर हर तीर्थ जान मनुआ नाया शब्द मरे मन मार तन जने दी माया दर सच्चे सच्चे आर सच्चा आया पूछ ना सके कोई जा खसने भाया नानक सच सलाहे लिखिया पाया श्लोक महला पहला कुल्हा देंदे बावले लेंदे वडे निलज चूहा थड न मावई तिकल बन्ने छज देन दो आई से मरे जिनको देन से जाहे नानक हुक्म न जा कई किथे जाए समाहे फसल आहारी एक नाम सामने सच नाम मैं महदूद लिखाया खसने के दर जाए दुनिया के दर के तेरे केते आवे जाहे केते मंगे मंगते केते मंग मंग जाहे महला पहला सौ मन हस्ती क्यों गुड़ खावे पंच सौ दाना खाए डके फूके खीरे उड़ावे सहे गया पछताए अंधी फूक मोई देवानी खसम मिटी फिर भानी अब गुल्ला चिड़ी का चुगन गैन चढ़ी बिल लाए खसने पावे ओहा चंगी जे करे खुदाए खुदाए सत्ता शिव मारे सह मिर्या सब पिछे पे खाए होए सताना पुरे नमावे साए गया पछताए अंधा किसनो बुक सुनावे खसमे मूल न भावे अक्षो प्रीत करे अक्सिद्धा अकबाली बैठाए खसमे पावे ओहो चंगा जे करे खुदाए

तिन पौ सागर तरना पौरी अगम अगोचर तू तनी सच्चा अलख अपार तू दाता सब मंगते इको देवन हार जिन्नी सेव्या तिन्नी सुख पाया गुरमति विचार इक नानो तुद एवे पाऊंगा माया नाल प्यार गुर कै शब्द सलाही है अंतर प्रेम प्यार विन प्रीति पगत न हो विन सतगुर ना लगे प्यार तू प्रभ सब तुझ सेव दे इक ताड़ी करे पुकार जेहे दान संतोखिया।

सुख पाया अंधा अंध कमाई बिख्या कदे ही रजे नाही मूरख पुख न जाई दूजे सबको लग विगुता बिन सतगुरु बूझ न पाई सतगुरु सेवे सो सुख पाए जिसनो कृपा करे रजाई। श्लोक महला पहला शरण करम दो नानका जे तन पल्ले पाए सो तन मित्र न कांडी है जित सिर चोटा खाए जिनके पल्ले तन वसे तिनका नाव फकीर जिनके हृदय तू वसे ते नर गुणी गहीर। महला पहला।

दया जानिए, कौजल तारण हार शब्द पछानिए, चोर जार जुआर पीड़े खानिए, निंदक लाए तबार मिले हरवानिए, गुरमुख सत समाए सो दरगे जानिए। श्लोक महला दूजा, नाव फकीर है पातशाह मूर्ख पंडित नाओ, अंधे का नाव पारखू एवे करे गुआओ, इल्लत का नाव चौधरी पूरी पूरे थाओ, नानक गुरमुख जानिए कल का एहो न्याओ। महला पहला, हरना बाजा कै सिकदारा एना परिया ना।

मह समाया एक पगवा वेस्तर परम दे बिन सतगुरु किन्हें न पाया देश दिशंतर पर थके तुद अंदर आप लुकाया गुर का शब्द रतन है कर चानन आप दिखाया अपना आप पछाणिया गुरमती सत समाया आवा गौन बजारिया बाजार जिनी रचाया एक फिर सच्चा सलाहा।

मन भाया पाल चलाए बन कोई ना रखसी जर जरवाना कन चलिया नचसी सतगुरु बोत बेड़ सच्चा रखसी अगन पखे पलहाड़ अंदिन पक्षी फासा चुगे चोग हुक्मी छुटसी करता करे सोहोग कूड़ निखुटसी। श्लोक महला पहला कर्म

मंडल लिव लाए अकथ कथा विचारिये मनसा मन समाये उलित कमल अमृत भरिया यो मन कथो न जाए अजपा जात ना विसरे आज जुगाद समाये सब सखियां पंचे मिले गुरमुख निज करवास सबद खोज एवं कर लह।

करीन तू दरियाओ खुदाया, एक चीज मुझे दे और जहर चीज न भाया, पुराब खाम पूजे हिकमत खुदाया।

रविया सब ठाई जित तू लाहे सचिया तित को लगे नानक गुण गाए सुध राग मलार बाण।

कम कुलाल ब्रह्मा चतुर्मुख दावणा जिन विश्व संसार राचीले जा कह कर ईश्वर बावला जगत गुरु तत्सारसा ज्ञान पाखीले पाप पुण्य जांचे दांगी आदि।

रंग रहाओ। सुरसरी सलल कृत बारनी रे संत जन तर्क नहीं पानन। सुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत न होए आनन। तर तार अपवित्र तरमानी रे जैसे कागरा करत विचारंग। भगत भगौत लिखिए तिह ऊपरे पूजिए कर नमस्कार। मेरी जात कुट बांगला टोल टोवंता नितय बनारसी आस पासा। अब बिक्र प्रधान ते करे दंडौत तेरे नाम शरणाए रविदास दासा। मल्हार हर जपत तेऊ जना पद्म कवलास तत्कास समतुल नहीं।

ते लोक प्रसिद्ध कबीरा जाके कुटुंब के केद सब टोटो अंत फिरे अजो बनारसी आस पासा आचार सहत विपर करें दंडौत तिन।

गई हापियो कहो रविदास पयो जब लेखो जोई जोई कीनो सोई सोई देखियो। राग का नवा चौक दे महला चौथा।

0: अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। मेरा मन साध जना मिल हरिया, हों बल बल बल बल साध जना को मिल संगत पार उतरिया रहा। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी, हम साध जना पग परिया, तन तन साध जिन हर प्रभ जानिया, मिल साधु पतित उधरिया। मनुआ चले चले बहु बहु विद, मिल साधु वस वत करिया, ज्यो जल तंत पसारियो बगत ग्रस, मीना वसगत खरिया। हर के संत संत पालनी के, मिल संत जना मल रहिया, हो मैं दुर्ग गया सवनी कर, ज्यो साधन कातर करिया। मस्तक लीलात लिखिया तुर ठाकुर, गुर सतगुर चरण उधरिया, सब दालद दुख पंज प्रभ पाया, जन नानक नाम उधरिया।
1: कानड़ा महला चौथा, मेरा मन संत

किल बिख दैन पए खिन अंतर, टूट गए माया के फास। क्या हम किर्म क्या कर्म कमावे, मूरख मुगद।

मात पिता बंद पहर साक कानड़ा महला चौथा। मेरे मन हर हर राम नाम जप चीत हर हर वक्त माया गड़वेड़ी गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत रहाओ। मिथ्या परम परम

आन प्रीतम जन उत्तम जिन मिलिया मन होए प्रतीत परचय राम रविया कट अंतर अखिर राम रविया रंग प्रीत हर के संत संत जन नीके जिन मिलिया मन रंग रंगीत हर रंग लहे ना उतरे कबहू हर हर जाए मिले हर प्रीत हम बहु पाप किए अपराधी गुर काटे कटत कटीत हर हर नाम दियो मुख औखद जन नानक पतित पुनीत कानड़ा महला चौथा जप मन राम नाम जगन्नाथ कूमन केर परे बिख बिखिया सतगुर काड लिए दे हाथ रहाओ स्वामी अभय निरंजन नरहर तुम राख ले हो हम पापी पाथ काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते कास्ट लो तरे संग साथ तुम वड पुरख बड अगम अगोचर हम टूट रहे पाई नहीं हाथ तू परे परे अपरंपर स्वामी तू आपन जाने आप जगन्नाथ अदृष्ट अगोचर नाम ते आए सत्संगत मिल साधु पात हर हर कथा सुनी मिल संगत हर हर जपियो अकप कत्कात हमरे प्रभ जगदीश गुसाई हम राख ले हो जगन्नाथ जन नानक दास दास दासन को प्रभ करो कृपा।

गुण गावे, गुरमत हो बल बले हो बल बले, जन नानक हर जप पई निहाल निहाल निहाल। कानड़ा महला चौथा, हर गुण गावो जगदीश, एका जी की चै लख बीस, जप हर हर शब्द जपीस, हर हो किरपीस राव, हर कृपा कर स्वामी हम लाए, हर सेवा हर जप जपे, हर जप जपे जप जापो जगदीश। तुमरे जन राम जपे ते उत्तम तिनको, हो कुमकुमे कुमकुम जीस, हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे, सो करे जे तुद पावीस, जन नानक अमृत पिया गुरमती, तन तन तन तन तन गुरु साबीस। कानड़ा महला चौथा, पज रामो मन राम, जिस रूप ना रेख वडाम, सब संगत मिल पज राम, बड हो पाग मथाम। रहाओ जित गृह मंदर हर होत जास तित तर, अनदो अनद पज राम राम राम, राम नाम गुण गावो हर प्रीतम, उपदेश गुरु गुर सतगुरा, सुख होत हर हरे हरे, पज राम राम राम, सब शिष्ट तार हर तुम किरा।

पहला चौथा सतगुर चाटो पग चाट जित मिल हर पादर बाट पग हर रस रस हर गाट हर हो लिखे लिलाट रहाओ खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्तार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट कर पेख न पाई है हर ब्रह्म जोग हर पाई है सत्संगति उपदेश गुरु गुरु संत जना खोल खोल।

काट कटे काट हर काट कानड़ा मेला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगम अगा दो मत गुरमत हर प्रभ ला दो सुर हो लिखे लीला दो रहाओ बिख माया संत बहुचित है विकार सुख पाइए हर पज संत संत संगति मिल सतगुरु गुर साधो ज्यो छोए पारस मनूर भय कंचन त्यो पतित जन मिल संगति सुध होवत गुरमति सुधा दो ज्यो काष्ट संग लोहा बहुतरता त्यों पापी संग तरे साध साध संगति गुर सतगुरु गुर साधो चार वर्ण चार आ

जा को सतगुर अपना राखे, सो जन हर रस रसना चाखे, कहो नानक गुर कीनी माया, हालत पलत मुख उजल भया, कानड़ा महला पंजवा, आराधो तुझे स्वामी अपने, उठत बैठत सोवत जागत, सास सास सास हर जपने।

कल युग में पाया जिन नाओ, कानड़ा महला पंजवा, कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना, अनेक बार कर बंदन संतन, हुआ चरण गोविंद जी के बसना, रहाओ अनेक पाप कर द्वार न पावो, होए कृपाल ता हर हर द्यावो, कोट कर्म कर दे न सोदा, साध संगत में मन पर बोदा, कृष्ण ना बूजी बहु रंग माया, नाम लेत सर्व सुख पाया, पार ब्रह्म जब पहे दयाल, सहु नानक।

अनिक स्वांग का छे पेख तारी, जैसो सा तैसो दृष्टारी, कहन कहावन सगल जंजार, नानक दास सच करनी सार। कानड़ा महला पंजवा, तेरो जन हर जत सुनत उमायो।

सहज समाध समायो कानड़ा महला पंजवा संतन पह आप उदाहरण आयो रहाओ दर्शन पेटक होत पुनीता हर हर मंत्र दृढ़ायो कांटे रोग पे मन निर्मल।

लिप्त नाम आयो कानड़ा महला पंजवा बिसर गई सब तात पर आई जब ते सात संगत मोय पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई जो प्रभु कीनो सो पल मान्यो।

तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ, तुमरी आस परोसा तुमरा, तुमरा नाम हृदय ले धरना, तुमरो बल तुम संग सुहेले, जो जो कहो सोई सोई करना, तुमरी दया मया सुख पावो, हो कृपाल सा पौजल।

नैतिक तानो राज जोबन तन बहुर बहुर फिर ताया सुख पाया तृष्णा सब बुझी है सांस पाई गुन गाया बिन बूझे पशु की न्याई प्रम मोहे व्याप्यो माया साध संग जम जेवरी काटी नानक सहज समाया कानड़ा महला पंजवा हर के चरण हृदय गाए शीतला सुख शांत मूरत सिमर सिमर नित त्याय रहाओ सगल आप हो।

कुमार हर हर मित कोट कसमल जात गुण रमंत दुख नासे रिद्ध

उदरे हर सिमरत नागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निज पतित उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरु नाम दृढ़ायो कानड़ा महला पंजवा तन ओ प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूरन बड़ पागी रहाओ मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोह त्यागी कोर परम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाओ अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूरन रतनागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्तक आन तरयो प्रभ पागी कानड़ा महला पंजवा कुचल कठोर का।

से गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहितार रहाओ। कवन कवन कवन गुण कहिए अंत नहीं कछ पारे, लाख लाख लाख कई कोरे को है ऐसो विचारे। विषम विषम विषम ही भइए लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है।

ऊंच नीच सब एक समानो, मुख बकनो मन मान रहाओ। कट कट पूर रहे सुख सागर, पै पंजन मेरे प्राण। मने प्रगास पयो प्रमनास्यो, मंत्र दियो बुरकान। करत रहे कर्तज्ञ करुणा में, अंतर जामी ज्ञान। आठ पहर नानक जस गावे, मांगन को हरदान। कानड़ा महला पंजवा, कहन कहावन को कई केत। ऐसो जन बिरलो है।

कहु नानक जन हर हर हर है, कत आवे कत रमतै, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर न जाए, तन मन गलत भये ते संगे, मोहनी मोहे रही मोरी माय रहाओ, जय जय पै कहो बिरसा हो अपनी, तेऊ तेऊ गहे रहे अटकाए, अनिक पांत की एक है जाली, ताकि गंठ नहीं चोराए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही सरनाए, काटे अज्ञान परम मोह माया, लियो कंठ लगाए, कानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम त्यावन, नाम हमारे प्राण आधार है रहाओ, नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवारे, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल विषम नाम हर तारे, अगम पदार्थ लाल अमोला, पयो प्राप्त गुर चरनारे, कहो नानक प्रभु पय कृपाला, मगन पय ही रह दरसारे, कानड़ा महला पंजवा, साजन मीत स्वामी नेरो, देखत सुनत सबन कै संगे, होरे काज बुरु कै फेरो, रहाओ, नाम बिना जे तो लपतायो, कछु नहीं नाही कत्तेरो, आगे दृष्ट आवत सब प्रगट, इहा मोयो परम अंधेरो, अटक्यो सुत बनता संग माया, देवन हार दतार बिसेरो, कहो नानक एक कै पारो सो, बंधन काटन हार गुरमेरो, कानड़ा महला पंजवा, विखे दल संत

पयो परगास अनद उजियारा तय समाद समायो कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समरथ अथायो कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक ले लायो कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जप तीर।

संत प्रसाद हर के गुण गाया, गुर पेटत नानक सुख पाया, कानड़ा महला पंजवा, सिमरत नाम मने सुख पाये, साध जना मिल हर जस गाये।

जगत उदाहरण नाम ते तेरे, नवनिद नाम निदान हर केर, हर रंग रंग रंग अनुपेर, काहे रे मन मोहे मगनेर, नैनो देख साध दर तेरे, सो पावे जिस लिखत लिले रे, रहाओ सेवो साध संत चरने रे, बाँचो तूर पवित्र करे रे, असत मज्जन मैल कटे रे, साफ साफ त्यावो मुख नहीं मोरे, किछ संग न चाले।

बरना सा को एक तुले रे, दर्शन प्यास बहुत मन में रे, मिल नानक देव जगत गुर के रे। कानड़ा महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन पर।

मान मोह त्याग छोड़ो तौ नानक हर जियो पेटना। कानड़ा महला पंजवा रंगा रंग रंगन के रंगा कीट हस्त पूरन सब संगा। रहाओ बरत नेम तीरथ सैत गंगा जल हेवत पूख अरनंगा पूजा चार करत मेलंगा चकर कर्म तिलक खाटंगा दर्शन पेटे बिन सतसंगा हठ निग्रह अत रहत बिटंगा हौ रोग व्यापै चुके न पंगा काम क्रोध अत कृष्ण जरंगा।

तुम्हारे बलबले बलबले बल गई। पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए, प्रभ थान तेरो केहरो जित जंतन कर विचार। अनिक दास कीरत करें तुम्हारी, सोई मिलियो जो पावतो जन नानक ठाकुर।

उपाओ रहाओ। कटन खटन जटन होमन नाही दंड तार सुआओ, जतन पांतन तपन प्रमन अनिक कथन।

जो संत वेद कहत पंथ गाखरो मोह मगन अहंकार राव। जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप नाम जपत सो जन उदरे जिसे उदारो आप बिनस जाए।

ओही पंच दोही उर्ज निकट बत्यो ताकी शरण साधुआ दूत संग निवार रहाओ। कोट जन्म जोन प्रम्यो हार पर्यो द्वार कृपा गोविंद पई मिल्यो नाम आधार।

सहज सुभाए आपने आए, कछु ना जानो कछु दिखाए, प्रभ मिलियो सुख बाले पोले रहाओ, संजोग मिलाए साध संगाए, कथु ना जाए करें बसाए, गुण निधान प्रगट्यो ए चोले, चरण लुभाए आन सजाए, थान सनाए सर्व समाए, रसक रसक नानक गुण बोले।

पायो अनेक उकत चतुराई जतन जतन अनेक उपावरे तो मिलियो जो कृपाई प्रभु दयार कृपार कृपा निध जन नानक संत रे नाई कानड़ा महला पंजवा माई सिमरत राम राम राम।

मृत मृत निकट निकट सदा है हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई कानड़ा अष्टपदिया।

मन गुरमत नाम समावे गो, नाम सुने नामो मन भावे, नामे ही तृप्तावे गो। कनक कनक पहरे बहु कंगना, कापर पात बनावे गो। नाम बिना सब फीक फिकाने, जन्म मरे फिर आवे गो। माया पटल पटल है भारी, कर

अज्ञान लाए सवालिया, गुर ज्ञाने लाए जगावे गो। नानक पाणे अपने ज्यो पावे, तिवे चलावे गो। कानड़ा महला चौथा, जप मन हर हर नाम तरावे गो। जो जो जपे सोई गत पावे, ज्यो त्रू पहला समावे गो। रहाओ।

मिल सतगुरु नाम सियावे गो। जन्म जन्म की हो मैं मल लागी, मिल संगत मल लह जावे गो। ज्यो लोहा तरयो संग कास्ट लग, शब्द गुरु हर पावे गो। संगत संत मिलो सत संगत, मिल संगत हर रस आवे गो। दिन संगत कर्म करे अभिमानी, कड पानी चीकड़ पावे गो। भगत जना के हर रखवारे, जन हर रस मीठ लगावे गो। खिन खिन नाम दे वडियाई, सतगुरु उपदेश समावे गो। भगत जना को सदा निव रही है।

ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावे गो जो जो भगत होए सो पूजो परमन परम चुकावे गो जात न जात देख मत परमो।

एक नागे हर जपत्या अंत ना पावे गो। तू अथाओ अत अगम अगम है मत गुरमत मन ठहरावे गो। जिन तू जप्यो तेई जननी के हर जप्यो कौ सुख पावे गो। बिदरदासी सुत छोक छोरा कृष्ण अंक गल लावे गो। जल ते ओ

मन गुरमत चाल चलावे गो ज्यो मैगल मस्त दी जय तल कुंडे गुर अंकस शब्द दृढ़ावे गो रहाओ चल तो चले चले दह दह दिस गुर।

नगर में सबला गुरखिन में मार कडावे गो सत संतोख धर्म आन राखे हर नगर।

सतगुर महापुरुष है पारस, जो लागे सो फल पावै गो। ज्यो गुरु उपदेश तरे प्रहलादा, गुर सेवक पैज रखावै गो। सतगुर बचन बचन है नीको, गुरु बचनी अमृत पावै गो। ज्यो अमरीक अमरा पद पाए, सतगुर मुख बचन त्यावै गो। सतगुर शरण शरण।

हर हर हर हर हर सर सेवे तीन दरगे मान दिवावे गो गुरमत गुरमत गुरमत त्यावे हर गल मिल मेल मिलावे गो गुरमुख नाद वेद है गुरमुख गुर परचय नाम दियावे गो हर हर रूप हर रूपो होवे हर जन को पूज करावे गो साकत नर सतगुरु।

लग संगत नाम सियावे गो नानक राख राख प्रभ मेरे सत संगत राख समावे गो छक्का पहला।

बिनवंत नानक शरण स्वामी, बड़ भाग दर्शन पाए, मिल साधु नित पजय नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवे हर अम्यो पीवे, जन्म मरना पा गए, सत संग पाये हर से आये, बहुर दुख ना लागे, कर दया दाते पुरख विदाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन पूर बांचे, हर दर सहज

गोविंद गाये नित ध्याये। परवान सोई आया जप ताप संजम हर हर निरंजन। गोविंद तन संग चाले बिनवंत नानक कर दया दीजे। हर रतन बांधो पाले मंगल चार चोज आनंदा कर कृपा मिले परमा।

गोविंद गोविंद गुरु मत ध्याय सादर गए पाए मान। गोविंद गोविंद गोविंद जप मुख उजला प्रधान। नानक गुरु गोविंद हर जित मिल हर पाया ना।

सतसंगत सतगुर तन तनो तन तन तनो जित मिल हर बुलग बुलोगिया सब कहो मुखो हर हर हरे हर हर हरे हर बोलत सब पाप लहो गया। श्लोक महला चौथा हर हर हर हर नाम है गुरमुख पावे कोय हौ मैं ममता नाथ होए दुर्मत कड्डे धोए नानक अमदिन गुण उचरे जिनको तुर लिखिया होए। महला चौथा हर आपे आप दयाल हर आपे करे सो होए हर आपे आप वरसदा हर जेवड अवरना कोए जो हर प्रभु पावे सो थिए जो हर प्रभु करे सो होए कीमत किने न पाया बेअंत प्रभु हर सोए नानक गुरमुख हर सा लाहिया तन मन शीतल होए पौड़ी। सब जोत तेरी जग जीवना तू कट कट हर रंग रंगना सब त्यावे तुद मेरे प्रीतमा तू सत सत पुरख निरंजना एक दाता सब जगत पिखारिया हर जाते सब मंग मंगना सेवक ठाकर सब तू है तू है गुरमति हर चंग चंगना सब कहो मुखो रिखी केस हरे जित पावे सब फल फलना। श्लोक महला चौथा हर हर नाम से आए मन हर दरगे पावे मान जो इच्छे सो फल पाए सी गुर सब दी लगे ध्यान किल विख पाप सब कटी है हों मैं चुके गुमान गुरमुख कमल विगस्या सब आत्म ब्रह्म पछान हर हर कृपा।

गुरु मेले मुख गुरु मुख हर समझावणी सब बोलो राम रमो श्री राम रमो जित दालद दुख भुख सब ले जावणी। श्लोक महला चौथा हर हर अमृत नाम रस हर अमृत हर उर्धार विच संगत हर प्रभु वरतदा बुज्जो शब्द विचार। मन हर हर नाम से आया दिखाऊ मैं कड्डी मार जिन हर हर नाम न चेतियो तिन जुए जन्म सब हार गुरु तुफे हर चेता।

महला चौथा हर कीरत उत्तम नाम है विच कल जुग करनी सार मत गुरु मत कीरत पाई है हर नामा हर उरहार वड पागी जिन हर त्याया तिन सौ प्या हर पंडार बिन नावे जे कर्म कमावणे नित हो मैं होए खुआर जल हस्ती मलना वाली है फिर भी फिर पावे चार हर मेलो सतगुरु दया कर मन वसे एकंकार जिन गुरमुख सुन हर मन्या जन नानक तिन जयकार पौड़ी राम नाम वखर है उत्तम हर नायक पुरखा मारा हर खेल की

गुरुमति हर निरंकारा, सब चवो मुखो जगन्नाथ, जगन्नाथ जग जीवनो जित पव जल पार उतारा। श्लोक महला चौथा, हमरी जेबा एक प्रभ, हर के गुण अगम अथाहा, हम क्यों कर जपे ए आणिया, हर तुम बड अगम अगाहा। हर देव प्रभु मत ऊतमा, गुर सत गुर के पग पाहा, सत संगत हर में।

जन नानक के प्रभ आए मिल, हम गावे हर गुण संत महला चौथा, हर प्रभ सज्जन नाम हर मैं मन तन नाम शरीर, सब आशा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन हर तीर पौड़ी, हर उत्तम हरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला, जो जप दे हर हर दिन सुरात तिन सेवे चरण नित कौला, नित सार संभाले सब जी जंत हर वक्त है निकट सब जौला, सो बुझे जिस आप बुझाए सी जिस सतगुरु पुरख प्रभ कौला, सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे, गुण गावत गुणी समौला। श्लोक महला चौथा, सुतिया हर प्रभ चेत मन हर सहज समाज समाए जन

जन नानक इक आधार हर प्रभ इक से गत पट पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत बड़ पागी अनहद वजिया आनंद मूल राम सब देखिया गुर सब दी गोविंद गजिया आद जुगाद वेस हर एको मत गुरमत हर प्रभ पजिया हर देवो दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लज्जिया सब तन कहो गुर सतगुरु गुर सतगुरु जित मिल हर पड़दा कज्जिया। श्लोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुबर भरे वाहन जिना सतगुर मन्या जन नानक वड पाग लहन। महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन न जाहे हर हर अगम अगाध हर जन कित विद मिले मिलाहे हर हर जस जपत जपंत जन एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लहो लड़ लाए। पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किछ वखर होए सो वरनी है तिस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सत गुर चटसाल है जिस हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सतगुरु जित मिल हर लेखा लिखा। श्लोक मैला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिए सतगुर भाए हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन पैनायन जिन हर मन वस्याए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन भाए। मैला चौथा हर हर नाम निदान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए तन मन शीतल होया सांत वसी मन आए नानक हर हर चौंदिया सब दालद दुख ले जाए। पौड़ी हों वारिया तिनको सदा सदा जिना सतगुर मेरा प्यारा देखिया तिनको मिलिया मेरा सतगुरु जिनको तुर मस्तक लेखिया हर अगम दियाया गुरमती तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया गुर बचन से आया जिना अगम हर ते ठाकुर सेवक रल एकिया सब कहो मुखो नर नर हरे नर नर हरे नर नर हरे हर लाहा हर भगत विशेखिया। श्लोक महला चौथा राम नाम रम रव रहे रम रामो राम रमीत कट कट आत्म राम है प्रभ खेल कियो रंग रीत हर निकट वसे जग जीवना परगास कियो गुरमीत हर स्वामी हर प्रभ तिन मिले जिन लिखिया तुर हर प्रीत जन नानक नाम ते आया गुर बचन जपियो मन चीत। महला चौथा हर प्रभ सज्जन लोड़ लो पाग वसे वड पाग गुर पूरे देखा लिया नानक हर लिव लाग। पौड़ी तन तन सुहावी सफल करी जित हर सेवा मन भाणी।

मेरा हर सब सुगड़ सुजाने, हर मेल दिखाए आप हर, गुरबचनी नाम समाने, तिन वित्तो नानक वारिया, जो जप दे हर निर्वाणी। श्लोक महला चौथा, हर प्रभ रत्ते लोयना, ज्ञान अंजन गुरुदे, मैं प्रभ सज्जन पाया, जन नानक सहज मिले।

पौड़ी। तुद आपे जगत उपाय कै तुद आपे वसगत कीता, एक मनमुख कर हारायन एक ना मेल गुरु तिना जीता। हर उत्तम हर प्रभ नाम है गुरु बचन सभा गै लीता, दुख दालद सबो लह गया जानाओ गुरु हर दीता। सब सेवो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो, जिन जगत उपाय सबो वस कीता। श्लोक महला चौथा। मन अंतर हो मैं रोग है परम फूले मन मुख दुर्जना, नानक रोग बजाए मिल सतगुर साधु सज्जना। महला चौथा। मन तन ताम सगारवा जा देखा हर नैने, नानक सो प्रभ मैं मिले हो जीवा सद सुने। पौड़ी। जगन्नाथ जगदीशर करते अपरंपर पुरख।

कट कट अंतर रव रहा जप्यो जन कोई सगल जपो गोपाल गुण प्रगट सब लोई। श्लोक महला चौथा गुरुमुख मिले से सज्जना हर प्रभ पाया रंग जन नानक नाम सलाए तू लुड लुड दर गए।

रामा राम राम मैं अंत न पाया, हम बार कृत पारे तुमरे, तू बड़ पुरुष पिता मेरा माया रहाओ। हर के नाम असंख अगम है, अगम अगम हर राया।

जन को कृपा करो मधुसूदन। हर देवो नाम जपाया मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है। जन नानक गुरुमुख पाया कल्याण महला चौथा। हर जन गुण गावत हसिया हर हर भगत बनी मत गुरमत। तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहा गुर के पग सिमरो दिन राती। मन हर हर हर बसिया हर हर हर कीरत जग सारी। सस चंदन जस सस्या हर जन हर हर हर निवलाई। सब साकत खोज पया ज्यो किरत संजोग चलियो। नर निंदक पग नागन छो जलिया। जन के तुम हर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखिया। कहां भया दैत करी बखीली सब कर कर चर परिया। जे तेजी जंत प्रभ किए सब काले मुख ग्रसिया। हर जन हर हर हर प्रभ राखे जन नानक शरण पया। कल्याण महला चौथा। मेरे मन जप जप जगन्नाथे गुरु उपदेश हर नाम ते आयो। सब किल बिख दुख लाथे रहाओ। रसना एक जस दाए न साके बहु की जय बहु रसनते। बार बार खिन पल सब गावे गुण कह ना सके प्रभु।

कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभु का, कहो तिन को क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्प आरापो, कोई मिले प्रभु मिलते, हर के गुण बहुत बहुत बहुत होबा, हम कुछ कर कर बरनते, हमरी मत वसगत प्रभु सुमरे, जन नानक के प्रभु समरथे, कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप हर गुण अतः सुन थई, धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई रहाओ, सो हर हर नाम से आवे हर जन, जिस बद भाग मथई, जह दरगे प्रभ लेखा मांगे, तह छुटे नाम से आए थई, हमरे दोख बहुत जन्म जन्म के, दुख हो में मैल लग थई, गुरतार कृपा हर जल ना वाए, सब किल बिख पाप गथई, जन के रिद अंतर प्रभ स्वामी, जन हर हर नाम पज थई, जह अंति अवसर आए बनत है, तह राखे नाम साथई, जन तेरा जप गावे हर हर, प्रभ हर जपियो जगन्नाथ थई, जन नानक के प्रभ राखे स्वामी, हम पात्र रख बुढ़ थई, कल्याण महला चौथा, हमरी चितवनी हर प्रभ जाने, और कोई निंद करे हर जन की।

हर सेवा से काल जोए न साके, चरनी आए पवे हर जाने। जाको राख ले मेरा स्वामी, ताको सुमत दे पहकाने। ताको कोई अपर न साके, जाकी भगत मेरा प्रभु माने। हर के चोज विडान देख जाने जो

रिद्ध सुध मिले खोटे पछताने। तुम हर दासे समरथ स्वामी, एक मांगो तुझ पासो हर दाने। जन नानक को हर कृपा कर दीजे, सद बसे हृदय मोहे हर चराने।

गुरमत मुरार हर मुकंदे जगदीशर चरण शरण जो आए तेजन पवनित पार परे भगत जना की तेज हर रास है जन नानक आप हर के।

जाचिक नाम जाचे जाचे सर्वतार सर्व के नायक सुख समूह के दाते रहाओ खेती खेती मांगर मांगे पावनिया सो पाये सफल सफल सफल दर्शरे परस परस गुण गाये नानक तत् तत् सो मिलिये हीरे हीर विदाई है।

सज नव तन मन रंगी शोभा रहाओ। ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा भगत दान जस मंगी, जोग ज्ञान ध्यान सेख ना गए सगल जपे तरंगी। कहो नानक संतन बलिहार है जो प्रभु के सत्संगी, कल्याण महला।

योग जुगत ज्ञान पुगत सुरत शब्द तत् बेते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली कल्याण महला पंजवा कौन विद ताकी कहा करो तर्क ज्ञान शस्त्र गया अजर पद कैसे।

गोविंद नानक आसरो कल्याण महला पंजवा। मन तन जापिए भगवान गुरपुरे सो प्रसन्न भय सदा सुख कल्याण रहाओ। सर्व कार्य सिद्ध भय गाए गुण गोपाल मिल साध संगत प्रभु सिमरे नाथिया दुख काल। कर कृपा प्रभु मेरिया करो दिन रहन सेव। नानक दास शरणागति

रहाओ, हर दिन आन ना कोई समरथ, तेरी आस तेरा मन तान, सर्व कटा के दाते स्वामी, देशो पैरन खान, सुरत मत चतुराई सोबा, रूप रंग तन मान, सर्व सुख आनंद नानक, जप राम नाम कल्याण, कल्याण महला पंजवा, हर चरण सरन कल्याण।

मुक्त जुगत अनेक सुख हर भगत लवे ना लावनो प्रभ दर्श लुभत दास नानक बहुड़ जोन ना सावनो कल्याण महला चौथा अष्टपदियां इको अंकार सतगुरु प्रसाद रामा राम रामो सुन मन पीजे हर हर नाम अमृत रस मीठा गुरमत सहजे पी जय रहाओ कास्त में ज्यो है बैसंतर मत संजम काड कटी जय राम नाम है जोत सबाई सत

सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवि जय, अंतर रतन जवे हर मानक, गुर कृपा ते ली जय, मेरा ठाकुर वड़ा वड़ा है।

राम नाम अनुग्रह बो किया गुरु साधु पुरख मिली जय गुण राम नाम विस्थिरन किए हर सगल पवन जस जी जय साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रह ना सकी जय जो जल मीन जलन जल प्रीत है खिन जल बिन फूट मरी जय माँ अपाग अपाग है जिनके तिन साधु तूर न पी जय तिना तिसना जलत जलत नहीं बूझे दंड धर्म राय का दी जय सब तीर्थ बरत जग पुन किए हिवे गाल गाल तन छी जय अतुल्ला तोल राम नाम है गुरमत को पुजे ना तोल तुली जय तब गुण ब्रह्म ब्रह्म तू जाने जन

मन तम अर्थ करो सब आ गए रस गुरमत ज्ञान दृढ़ी जय रहा ब्रह्म नाम गुण साफ तरोवर नित चुन चुन पूज करी जय आत्म देव देव है आत्म रस लागे पूज करी जय विवेक बुद्ध सब जग में।

चरण तले सिर दी जाए। नाम बिना नक ते नर देखो, तिन पस पस नाक वडी जाए। साकत नर अंकारी कही है, बिन नावे त्रिग जीवी जाए। जब लग सांस सांस मन अंतर, तत बेगल शरण परी जाए। नानक कृपा कृपा कर धारो, मैं साधु चरण पखी जाए। कल्याण महला चौथा, रामा मैं साधु चरण धुवी जाए। किल विखो दहन होए खिन अंतर, मेरे ठाकुर कृपा की जय रहाओ। मंगत जन दीन करे दर ठाडे, अत परसन को दान दी जय। त्राहे त्राहे शरण प्रभ आए, मोको गुरमत नाम दृढ़ी जय। काम क्रोध नगर में सबला, नित उठ उठ जूझ करी जय। अंगीकार करो रख ले वो, गुर पूरा कार्ड कटी जय। अंतर अगन

ज्यो सूरज किरण गव्या सर्ब ठाई, सब कट कट राम रवि जय। साधु साध मिले रस पावे, तप निज पर बैठिया पी जय। जन को प्रीत लगी गुर सेती, ज्यो चकवी देख सूरी जय। निरखत निरखत रैन सब निरखी, मुख का अमृत पी जय। साकत स्वान

साधु साध शरण मिल संगत जित हरो अस्पार कभी जाए पर उपकार बोले बहु गुनिया मुख संत भगत हर दी जाए तू अगन दयाल दया पत दाता सब दया तार रख ली जाए सर्व जी जग जीवन एको नानक प्रताल करी जाए कल्याण महला चौथा रामा हम दासन दास करी जाए जब लग सास होए मन अंतर साधु तूर कवि जय रहाओ शंकर नारद शेख नाग मुन तूर साधु की लोची जय पवन पवन पवित्र हो है।

कर्म राय की कान चुकावे, दिख दुबदा काड कडी जाए, परम सुके बहु उबसुक कही है, मिल साधु संग हरी जाए, कांते बिलम पल टिल न की जाए, साधु चरण लगी जाए, राम नाम कीर्तन रतन वत हर साधु पास रखी जाए, जो बचन गुर सत सब

नित लोड़ो ता सतगुर शरण पवी जाए जेवड भाग होए अपनी का ता गुरमत नाम दृढ़ी जाए सब माया मोह बिकम जग तरिए सहजे हर रस पी जाए माया माया के जो अधिकारी विच माया पचै तची जाए अज्ञान अंधेर महापंथ बिखरा अहंकार पार लग ली जाए नानक राम राम राम राम राम राम ते गत की जाए सतगुरु मिले ता नाम दृढ़ाए राम नामे रले मिली जाए छक्का पहला।

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद राज प्रवासी विपास महला पहला चौक दे कर पहला नाय

पाते कब होना होए। अवर सियाण तो सगली पाज जय बक्से तै पूरा पाज रहाओ। नौ तेरा तान नौ दीवान नौ तेरा लक्कर नौ सुल्तान नाए तेरे मां।

आया सो जन जान साची दरगे पावे मान कहना सुनना अकथ कर जाए कपनी बदनी नानक जल जाए प्रवासी महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन अष्ट तीरथ संग गहे गुरु उपदेश जवाहर मानक सेवे सिख सो खोज लह गुरु समान तीरथ नहीं कोए सर संतोष।

करे रत्ता सच नाम तल ही अल सो गुर परमल कही है जाकी वास बनास पत सौर है पास चरण लिव रही है गुरमुख जी प्राण उपजे गुरमुख शिव कर जाई है गुरमुख नानक सच समाई है गुरमुख निज पद पाई है प्रभाती मैला पहला गुर कर सादी विद्या विचार है पर कर पावे मान आपा मध्य आप प्रगासिया पाया अमृत नाम करता तू मेरा जजमान एक दखना हों पै पै मांगो दे अपना नाम रहाओ पंच तस्कर कामत राखे चूका मन अभिमान दिस्त बिकारी दुर्मत भागी ऐसा ब्रह्म ज्ञान जत सत चावल दया कनक कर प्राप्त पाती धान दूध कर्म संतोष कियो कर ऐसा मांगो दान खिमा तीरज कर गऊ लवेरी सहजे बछड़ा खीर पिए सिफत कर्म का कपड़ा मांगो हर गुण नान करवत रहे प्रभाती महला पहला आवत किने आवाख्या जावत क्यों राख्या जाए जिससे हुआ सोई पर जाने

एक सखनी होर फेर परियत है, तैसो ही एव खेल खत्म का, ज्यों उसकी वड्याई सुरती के मार्ग चल के उल्टी नजर परगासी। मन विचार देख ब्रह्म ज्ञानी, कौन गिरही कौन उदासी, जिसकी आशा तिस ही सौंपते एहो रहा निर्वाण, जिससे होआ सोई कर मान्या, नानक गिरही उदासी सो परवान। प्रभाती महला पहला, दिष्ट बिकारी बंधन बांधे, हों तिस कै बल जाई, पाप पुन की सार न जाने, फूला फिरे अजाई। बोलो सच नाम करतार, सुन बहुर ना आवन।

ताको समझावन जाये जे को भूला होई। आते खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई, नाव पर भाते सब त्याये छोड़ो दुनी परीता। प्रणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता, परवाती महला पहला मन माया मन ताया मन पंखी आकाश तस्कर शब्द निवारिया मगर उठा साबास। जा तू राखे राख ले साबत हो वैरास, ऐसा नाम रतन निध मेरे गुरमत देह लगो पग तेरे रहाओ। मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गावार, मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार। पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार, कट कट एक वखाणी है कहू न देखिया जाए। फोटो पूठो रालिए बिन नावे पच जाए, जा तू मेले ता मिल रहा जा तेरी होए रजाए। जात जन्म ने पूछिए सब कर ले हो बताए, सा जात सा पत है जे कर्म कमाए। जन्म मरम दुख काटिए नानक छूट सुनाए, प्रभाती महला पहला जागत बिगसे मूठो अंधा, गलफा ही सिर मारे तंदा। आशा आवे मनसा जाए पुरजी पानी किछ ना बसाए, जागस जीवन जागन हारा सुख सागर अमृत भंडारा रहाओ। कहो न बूझे अंग न सूझे ओंदी कार कमाई, आपे प्रीत प्रेम परमेश्वर करमी मिले वडाई। दिन दिन आवे तिल तिल चीजे माया मोह कटाई, बिन गुर बूडो ठोर न पावे जग लग दूजी राई। एन इस जिया देख संभाले सुख दुख पूर्व कमाई, कर्म हीन सच पीखिया मांगे नानक मिले वडाई। प्रभाती महला पहला मस्त करो मूर्ख जग कहिया, अधिक बको तेरी लिव रहिया। फूल चूक तेरे दरबार नाम बिना कैसे आचार, ऐसे चूठ मुठे संसारा निंदक निंदे मुझे प्यारा रहाओ। जिस निंदे सोई बिद जाने गुर के सबदे दर निशाने, कारण नाम अंतर्गत जाने जिसनो नगर करे सोई बिद जाने। मैं लो उजल सच सोए उत्तम आख ना ऊंचा होए, मन मुख खूल महा बिकाए गुरमुख होए सो राचे नाए। अंधो बोलो मुग्ध गवार, हीनो नीच बुरो बुरियार, नीदन को तन नाम प्यार यो तन सार होर बिख्याचार। उस पत निंदा शब्द विचार जो देवे तिसको जयकार, तू बच्चे जात पत होए नानक कहे कहा वै सोए। प्रभाती महला पहला खाया मैल वधाया पेंदे कर की हान, बक बक वाद चलाया बिन नावे बिख जान। बाबा ऐसा बिखन जाल मन वासिया, बिबल चाग सहज परगासिया रहाओ। बिख खाना बिख बोलना बिख की कार कमाए, जम गरबा दे मारिए छूट सा चैनाए। जिव आया तिव जाए सी किया लिख ले जाए, मन मुखमूल गवाया दरगह मिले सजाए। जग खो तो सच निर्मलो गुर शब्दी विचार, ए नर बिरले जानिए जिन अंतर ज्ञान मुरार। अजर जरे नीजर चरे हमर अनंत स्वरूप, नानक जल को मीन से थे पावे राखो प्रीत। प्रभाती महला पहला
गीत नाद हर्ष चतुराई रह सुरंग सुरमाई पाई पैनन खां चीत न पाई साथ सहज सुख नाम वसाई क्या जाना क्या करे करावे नाम बिना तन किसना सुखावे रहाओ जोग विनोद स्वाद आनंदा मत सत पाए भगत गोविंदा कीरत कर्म कार निज संदा अंतर रव तो राज रविंदा प्रियो प्रियो प्रीत प्रेम उर्धारी दीना नाथ प्रियो बनवारी हम दिन नाम दान व्रतकारी त्रिपत तरंग तत विचारी अकथो कथो क्यों मैं जोर भगत करी कराहे मोर अंतर वसे चूके मैं मोर किससे भी दूजा नहीं होर गुर का शब्द महारस मीठा ऐसा अमृत अंतर डीठा जिन चाखिया पूरा पद होए नानक प्राप्यो तन सुख होए परवाती महला पहला अंतर देख शब्द मन मानिया और न रामजन हारा एनस जिया देख संभाले तिस ही की सरकारा मेरा प्रभु रांग कणो अत रूड़ो दीन दयाल प्रीतम मनमोहन अत रस लाल सगूड़ो रहाओ ऊपर कूप गगन तनिहारी अमृत पीवन हारा जिसकी रचना सो विधि जाने गुरमुख ज्ञान विचारा पसरी किरण रस कमल विगासे सस्कर सूर समाया काल बिंदुस मन सामन मारी गुर प्रसाद प्रभु पाया अत रस रंग चलू ले राती दूजा रंग न कोई नानक रसम रसाए राते रब रहा प्रभु सोई परवाती महला पहला बारे में रावल खप जावे चहो छह में सन्यासी योगी का पड़िया सिर खूथे बिन शब्द गल फासी शब्द रते पूरे बैरागी औ हथो हस्त में पीछिया जाची।

पाए सबज मिले से सूचा चारी साची दरगे माने हम दिन नाम रतन लिव लागे जुग जुग साथ समाने सगले कर्म कर्म सुख संजम जब तप तीरथ सब वसे नानक सतगुरु मिले मिलाया दुख पराशित काल नसे करवाती महला पहला संता की रेण साध जन संगत हर कीरत कर तारी कहां करे बपुरा जन बरत गुरमुख हृदय मुरारी जल जाओ जीवन नाम बिना हर जप जाप जपो जप माली गुरमुख आवे साध मना रहाओ गुर उपदेश साथ सुख जाको क्या तिस उपमा कही है लाल जवेहर रत्न पदार्थ खोजत गुरमुख लही है चीने ज्ञान त्यान तम साचो एक शब्द लिवलावे निरालंब निरहार नहीं केवल निरपौता लीलावे सायर सपत करे जल निर्मल उल्टी नाम चरावे बाहर जा तो ठाक रहावे गुरमुख से समावे सो गिरही सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछानिया नानक कहे अवर नहीं दूजा साथ शब्द मन मानिया राग करवाती महला तीजा चौपदे इको अंकार सतगुर प्रसाद गुरुमुख विरला कोई बूझे सब दे रहा समाई नाम रते सदा सुख पावे साथ रहे लिवलाई हर हर नाम जपो जन भाई गुर प्रसाद मन अस्थिर होवे हम दिन हर रस रहा अघाई रहा हम दिन पगत करो दिन राती इस जुग का लोहा भाई सवा जन निर्मल मैल न लागे सच नाम चितलाई सुख सिगार सतगुरु दिखाया नाम वड्डी वड्याई अकुट पंडार करे कदे तोट ना आवे सदा हर सेवो भाई आपे करता जिसनो देवे तिस वसे मन आई नानक नाम ते आए सदा तू सतगुरु दिया दिखाई करवाती महला तीजा निर्गुणी आरे को बख्श ले स्वामी आपे लहो मिलाई तू बेअंत तेरा अंत न पाया सब दे दिहो बुझाई हर जियो तुद विटो बल जाई तन मन अर्पी तुद आगे राखो सदा रहा शरणाई रहाओ अपने पाने विच सदा रख स्वामी हर नामो दे वड्याई पूरे गुरते पाना जापे हम दिन सहज समाई तेरे पाने भगत जे तुद भावे आपे बख्श मिलाई तेरे पाने सदा सुख पाया गुर कृष्णा अग्न बुझाई जो तू करे सो होवे करते अवर न करना जाई नानक नावे जेवड़ अवर न जाता पूरे गुर ते पाई करवाती महला तीजा गुरमुख हर साल आया जिन्ना तीन साल आए हर जाता विचों परम गया है दूजा गुर कै शब्द पछाता हर जियो तू मेरा इक सोई तुद जपी तुद ऐसा लाही गत मत तुझते होई रहाओ गुरमुख सालान से साध पायन।

गुर कै शब्द कमल पर गासिया, सौम्य दुर्मत खोई, सब नामे एको सच वरते विरला बूझे कोई। गुरमति मन निर्मल होआ, अमृत तत्व खामे, हर का नाम सदा मन वसिया, विच मन ही मन माने, सब बलिहारी गुर अपने विटो, जित आत्म राम पछाने, मानस जन्म सतगुरु न सेविया, बिरथा जन्म गवाया, नजर करे ता सतगुरु मेले, सहजे सहज समाया, नानक नाम मिले वडियाई, पूरे भाग से आया, प्रभाती महला तीजा, आते पांक बनाए बहुरंगी, शिष्ट उपाय प्रभ खेल किया, कर कर वेख करे कराए, सर्व जियानो रिजक दिया, कली काल में रवे आराम, कट कट पूर रहा प्रभे को, गुरमुख प्रगट हर हर नाम रहा, गुप्ता नाम वर्ते विच पल जुग, कट कट हर पर पूर रहा, नाम रतन तिना हृदय प्रगटिया, जो गुर शरणाई पग पया, इंद्री पंच पंचे वस आने, खिमा संतोष गुरमत पावे, सो तन तन हर जनवड पूरा, जो कह बैराग हर गुण गावे, गुरते मोह फेरे जे कोई, गुर का कहया ना चित धरे, कर आचार बहु संतोषं चे, जो किछ करे सो नरक परे, एको शब्द एको प्रभु वर्ते, सब एक स्ते उत्पत्तल है, नानक गुरमुख मेल मिलाए, गुरमुख हर हर जाए रले, प्रभाती महला तीजा, मेरे मन गुर अपना सालाए, पूरा पाग हो गए मुख मस्तक, सदा हर के गुण गाहे रहाओ, अमृत नाम को जन हर दे, कोट मदे कोई विरला ले, जिसनो अपनी नजर करे, गुर के चरण मन माए वसाए, दुख अनेरा अंदरों जाए, आपे फाचा ले मिलाए, गुर की बाणी सो लाए प्यार, एथे ओथे एव आधार, आपे देवे सृजनहार, सच्चा ननाए अपना भाणा, सोई तगत सुगड़ सो जाना, नानक तिसके सब कुर्बाना, प्रभाती महला चौथा विपास इको ओंकार, सतगुरु प्रसाद, रसक रसक गुण गावे गुरमत, लिव उन मन नाम लगान, अमृत रस पिया गुर शब्दी, हम नाम विटो कुर्बान, हमरे जग जीवन हर प्राण, हर

हो गुरु मंत्र दियो हर कान रहाओ। आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर नाम बखान। कित बिद क्यों पाई है प्रभु अपना मोको करो उपदेश हर बान। सत संगत में हर हर वस्या मिल संगत हर गुण जान। वड्डे पाग सत संगत पाई गुर सत गुर परस भगवान। गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान। जन नानक को गुर कृपा भारी हर नाम दियो खिन गान। हरवाती महला चौथा उगवे सूर गुरमुखर बोले सब रैन संभाले हर गाल। हमरे प्रभ हम लोच लगाई हम करें प्रभु हर पाल। मेरा मन साधु तूर जवाल हर हर नाम दृढ़ायो गुरु मीठा। गुर पद चारे हम बाल रहाओ। साकत को दिन रैन अंधारी मुर्फाते माया जाल। खिन पल हर प्रभ हृदय न वस्यो ऋण बादे बहु विदबाल। सत संगत मिल मत बुद पाई हौ छूटे ममता जाल। हर नामा हर मीठ लगाना गुर की ये शब्द निहाल। हम बारिक गुर अगम गुसाई गुर कर कृपा प्रतपाल। दिख पौ जल डुबदे काड लियो प्रभ गुरु नानक बाल गोपाल। प्रभाती महला चौथा एक खिन हर प्रभ कृपा धारी गुण गाए रस प्रतीक। गावत सुनत बहु पे मुक्ते जिना गुरमुख खिन हर पीक। मेरे मन हर हर राम नाम रसतीक। गुरमुख नाम शीतल जल पाया हर हर नाम पिया रस जीक। रहाओ जिन हर हृदय प्रीत लगानी तिना मस्तक उजल टीक। हर जन शोभा सब जग ऊपर ज्यो विच उडवा सस पीक। जिन हर हृदय नाम न वस्यो तिन सब कारज फीक। जैसे सिगार करे देह मानुख नाम बिना नकटे नकीक। कट कट गुनैया रमत राम राय सब वर्ते सब मैं एक। जन नानक को हर कृपा धारी गुरु बचन से आयो करी नीक। प्रभाती महला चौथा अगम दयाल कृपा प्रभधारी। मुख हर हर नाम हम कहे पतित पावन हर नाम ध्यायो सब किलबिख पाप लहे। जप मन राम नाम रव रहे दीन दयाल दुख पंजन गायो। गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ। पाया नगर नगर हर बसयो मत गुरमत हर हर सहे। शरीर सरोवर नाम हर प्रगत्यो कर मंदर हर प्रभ लहे। जो नर परम परम उद्याने ते साकत मूड मुहे। जो मृग ना भी बसे बास बचना त्रम त्रम्यो चार गहे। तुम वड अगम अगाध बोध प्रभ मत देवो हर प्रभ लहे। जन नानक को गुर हाथ सिर करयो हर राम नाम रव रहे। प्रभाती महला चौथा मन लागी प्रीत राम नाम हर। हर जप्यो हर प्रभु वडपा सतगुरु बचन सुखाने हीरे। हर तारी हर प्रभु कृपा मेरे मन पज राम नाम हर निमखफा। हर हर दान दियो गुरु पूरे हर नामा मन तन बसा। रहाओ काया नगर वस्यो कर मंदर जप शोभा गुरमुख करपफा। हलत पलत जन पै सुहेले मुख उजल गुरमुख तरफा। अनपौ हर हर हर लिव लागी हर उर्धार्यो गुर निमखफा। कोट कोट के दोष सब जन के हर दूर किए एक पलफा। तुमरे जन तुम ही ते जाने तब जान्यो जन से मुखा। हर हर आप करयो हर जन में जन नानक हर प्रभ इकफा।

प्रभाती मेला चौथा गुर सतगुर नाम दृढ़ायो हर हर हम मोए जीवे हर जपदा तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा दिख दुख दे बां दे कडबा जप मन राम नाम हर भांबा उपजंप उपाय न पाये कतहु गुर पूरे हर प्रभ लाबा रहाओ राम नाम रस राम रसायन रस पिया गुरमत रसदा लो मनूर कंचन मिल संगत हर उर्धार्यो गुर हरवा हौ मैं बिखिया नित लोभ लुवाने उत कलत मोह लुभवा तिन पग संत न सेवे कबहू ते मन मुख पूंगर परदा तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो हम करे हार तुम शरणवा ज्यो जानो त्यों राखो स्वामी जन नानक दास तुम नवा सत्ता पहला प्रभाती विपास पड़ताल महला चौथा इको अंकार सतगुरु प्रसाद जप मन हर हर नाम निधान हर दरगे पावे मान जिन जपिया ते पार प्राण रहाओ सुन मन हर हर नाम कर ध्यान सुन मन हर कीरत अठ न जान सुन मन गुरुमुख पावे मान जप मन परमेश्वर प्रधान चिन खोवे पाप कुटान मिल नानक हर भगवान प्रभाती महला पंजवा विपास इको अंकार सतगुर प्रसाद मन हर किया तन सब साजिया पंच तत् रच जोत निवाजिया सेजा तरत बर्तन को पानी निमख ना विसारो सेवो सारंग पानी मन सतगुर सेव होए परम गते हरख सोगते रहे निरारा का तू पावे प्राण पते रहा काचड़ पोग रस अनक पुंचाए मात पिता कुटंग सगल बनाए रिजक समाहे जल थल मीत सोहर से वो नीता नीत कहां सखाई जय कोई न होवे कोट अपराध इक खिन में धोवे बात करे नहीं पछोतावे एका बक्स फिर बहुर ना बुलावे किर्त संजोगी पाया भाल साध संगत में बसे गोपाल गुरमिल आए तुमरे द्वार जन नानक दर्शन देहो मुरार प्रभाती महला तन्यवा प्रभ की सेवा जन की शोभा काम क्रोध मिटे तिस लोभा नाम तेरा जन के पंडार गुण गावे प्रभ दर्श प्यार तुमरी पगत प्रभ तुम्हें जनाई काट जेवरी जन लिए छुड़ाई रहा जो जन राता प्रभ के रंग तिन सुख पाया प्रभ के संग जिस रस राया सोई जाने देख देख मन में हैराने सो सुखिया सब ते उत्तम सोए जा के हृदय वसिया प्रभ सोए सोई नेचर आवे न जाए हम दिन प्रभ के हर गुण गाए ताको करो सगल नमस्कार जाके मन पूरन निरंकार कर कृपा मोय ठाकुर देवा नानक उदरे जन की सेवा प्रभाती महला पंजवा गुण गावत मन होए आनंद हाथ पैर सिमरो भगवंत जाके सिमरन कलमल जाहे इस गुर की हम चर

सीधा सगल त्याग नाम हर गीदा जिस गुर कै सदा बल जाइए हर सिमरन जिस गुर ते पाइए बूढ़त प्राणी जिन गुरे तराया जिस प्रसाद मोहे नहीं माया सड़क पलक जिन गुरे सवारिया जिस गुर ऊपर सदा हो।

गुसाई सास सास पारगम अरादि अपने सतगुर के बल जाई अगम अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाये लाहा खाट हुई है तनवंता अपना प्रभु ध्याई है आठ पैर पार ब्रह्म त्याई सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया परवाती महला पंजवा सिमरत नाम किल बिकसद नाते सच नाम गुर दीनी रासे प्रभ की दरगे शोभा वंते सेवक सेव सदा सोहंते हर हर नाम जपो मेरे भाई सगले रोग दोष सब बिनसें।

होत जन्म के गए कलेश, जो तिस पावे सो फल होस, तिस गुर को हो सद बल जाई, जिस प्रसाद हर नाम दियाई, ऐसा गुर पाये वडवागी, जिस मिलते राम लिवलागी, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी, सगल गटा के अंतर जामी, आठ पैर

आए भगत हर सो मन माना, सुन सज्जन संत मीत सुहेले, नाम रतन हर अगै अतोले, सदा सदा प्रभ गुण निर्गाय, कहो नानक वड़ पागी पाय। प्रभाती महला पंजवा, से तनवंत सोई सत्साहा, हर की दरगै नाम विसाहा, हर हर नाम जपो मन मीत, गुरपुरा पाई।

प्रभाती महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ सुगुण सुजान गुरपुरा पाये वडबागी दर्शन को जाये कुर्बान रहाओ चिलगुठ में तो शब्द संतोख नाम आराधन हो आजोग साध संग हो आप्रगास चरण कमल मन माये निवास जिनकी आकिन लिया राख प्रभ पूरा अनाथ का नाथ जिसे निवाजे कृपा धार पूरन कर्मता के आचार गुण गावे नित नित नित नवे लख चौरासी जोर न भवे इहा उहा चरण पुजारे मुख उजल साचे दरबारे जिस मस्तक गुर तरिया हाथ कोट मदे को विरल

गुर गुर करत सदा सुख पाया, दीन दयाल पर कृपाला, अपना नाम आप जपाया रहाओ। संत संगत मिल पया प्रगास, हर हर जपत पूरन भैयास, सर्व कल्याण सुख मन बूठे, हर गुण गाए गुरु नानक तूठे।

राम राम राम राम जाप, कल कलेश लोभ मोह बिनस जाए अहंताप। रहाओ आप त्याग संत चरण लाग, मन पवित्र जाहे पाप। नानक बालक कछु ना जाने, राखन को प्रभु माई बाप। प्रभाती महला पंजवा, चरण कमल शरण टेक। ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, सर्व ऊपर तू ही एक। रहाओ प्राण आधार दुख बिगार, दैनहार बुद्ध विवेक। नमस्कार रखनहार, मन आराद प्रभु मेक। संत ऋण करो मज्जन, नानक पावे सुख अनेक।

सुत कंचन स्यो हेत बधाया, सब कुछ अपना इकराम कराया। ऐसा जाप जपो जप माली, दुख सुख पर हर भगत निराली रहाओ। गुण निधान से राम न पाया, सात शब्द तुझ माए समा।

बिन सतगुर को ते कोई न जानी, सगल सरोवर जोत समानी, अनद रूप वितों कुर्बानी, पाओ पगत गुरमति पाए, होमे विचों सबद जलाए। तावतरा

जीवन मुक्त जा शब्द सुनाए, सच्ची रह सच्चा सुख पाए, सुख दाता दुख नेता हारा, अवर न सूजस भी जी कारा, तन मन तन हर आगे राखिया, नानक कहे महारस चाखिया, प्रभाती महला पहला, निवली करम पुलंगम पाथी, रेचक पूरक कुंभ करे, बिन सतगुर किस सोजी नाही, पर में पूला बूड मरे, अंदा परया पर कोवे, अंतर की मलक दे ना लहे, नाम बिना फोकट सब कर्मा, जो बाजी गर परम पुले, खट कर्म नाम निरंजन सोई, तू गुण सागर अवगुण मोही रहाओ, माया तंदा तावनी, दुर्मत्कार विकार,

बाद ओ परम पूले मरो न कोई सतगुरु श्री सदा सुखोई बिन सतगुरु मुक्त किने न पाई आवे जाए मरे मर जाए ओ शरीर है त्रै गुण तात किसनो व्यापे सोग संता।

पयाल जाए क्यों चलिए जे बल रूप पछाने राजा जनमेजा दे मती ब्रज व्यास पराया तिनका जग अठारे काए कीर्तना चले चलाया गणत न गनी हुकम पछाना बोली पाए सुवाए जो किछ वरते तुरे सवाही सब तेरी वडियाई गुरमुख अलपत लेप कदे न लागे सदा रहे शरणाई मनमुख मुगद आगे चेते नाही दुख लागे पछताई आपे करे कराए करता जिन ए रचना रचिए हर अभिमान ना

अंतर झूठा क्यों सुच होए, सब दी तो वै विरला कोए, गुरमुख कोई सच कमावे, आवन जाना ठाक रहावे।

पार हर जस कर्म धर्म पत पूजा काम क्रोध अग्नि में पूजा हर रस चाख्या तो मन पीजा प्रणवत नानक अवर न दूजा प्रभाती महला पहला राम नाम जप अंतर।

शीतल गुर बूझ बुझाई, प्रभ निवाजे किन कीमत पाई, कहो नानक गुर बूझ बुझाई, नाम बिना गत किने न पाई। प्रभाती महला पहला, एक तुर बख्श ले गुर पूरे, सच्ची बनत बनाई, हर रंग राते सदा रंग साचा, दुख विसरे तप पाई, झूठी गुरमत की चतुराई, बिन सत बार ना लागे काई, रहाओ मन मुख को दुख दर्द भी आपस, मन मुख दुख ना जाई, सुख दुख दाता गुरमुख जाता, मेल ले शरणाई, मन मुख ते अब भगत ना होवस, हो मैं पचे दीवाने, इह मनुआ खिन ऊप प्याली, जब लग शब्द ना जाने, भूख प्यासा जग पया, तित नहीं बिन सतगुर पाए, सहज सहज मिले सुख पाए।

ज्ञान रतन प्रगट होए, मनमुख मूल ना जाननी, मानस हर मंदर ना होए, हर मंदर हर जियो साजिया, रखिया हुकुम सवार, तुर लेख लिखिया सो कमावना।

हर मंगल में मन लोहत है मोया दूजे भाए पारस पे पे कंचन भया कीमत कही ना जाए। हर मंगल में हर वसे सर्व निरंतर सोए नानक गुरमुख बन जिए सच्चा सौदा होए। प्रभाती महला की जा तै पाए जागे सुजन जागरण करें हमने मैल उतार सदा जागे कर अपना राखें पंच तस्कर का डैमार। मन मेरे गुरमुख नाम ध्याए जित मार घर पाइए मन से ही कर्म कमाए रहाओ गुरमुख सहज तुम उपजे दुखों में विचों जाए। हर नामा हर मन वसे सहजे हर गुण गाए गुरमति मुख सोने हर राख्या उधार एते ओते सुख गणा

करे सुहोग विपास प्रभा की मैला पन्नवा अष्टपदिया इको अंकार। सतगुरु प्रसाद मात पिता पाई सुत बनता चूगे चोग आनंद स्यों जुगता

काला अंतर कपट सुरे बेताला वर्मी मारी साप न मुआ प्रभ सब कुछ जाने जिन तू किया कुंवर काप गेरी के बस्तरा अपदा का मारिया दे के नस्ता देश छोड़ पर देश धाया पंच चंडाल ना ले ले आया कान पर आए हिराए तू का कर कर मांगे तृप्तावन से तू का बनता छोड़ बद नजर पर नारी वेश ना पाये महा दुखियारी बोले ना ही होए बैठा मोनी अंतर कल्प पवाई है जोनी अंते रहता दुख देही सहता हुक्म ना बूझे व्याप्या ममता बिन सतगुर किने न पाई परम गते पूछो सगल वेद सिमरते मन मुख कर्म करे अजाई जो बालू कर ठौरना ठाई जिसनो पै गोविंद दयाला गुर का बचन तिन बांध्यो पाला कोट मदे कोई संत दिखाया नानक तिन कै संग तराया जे होवे पाग का दर्शन पाईए आप तरह सब कुटुंब तराईए रहाओ दूजा प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम तिलगत सब काते धर्म राय के कागर पाते साध संगत मिल हर रस पाया पार ब्रह्म रिद माए समाया राम रमत हर हर सुख पाया।

जन्म जन्म का टूटा गांडा जब कब संजम नाम समा लिया, अपने ठाकुर नगर निहा लिया, मंगल सुख कल्याण तिथाई। जय सेवक गोपाल गुसाई, प्रभु सो प्रसन्न तय गोपाल, जन्म जन्म के मिटे विताल, होम जग उर्द तप पूजा, कोट तीर्थ स्नान करी जा, चरण कमल निमख हृदय धारे, गोविंद जपत सब।

भरपूर मात पिता हर प्रीतम मेरा मीठा जन भरवासा तेरा कर गय लीने अपने दास जप जीवे नानक गुणतास विपास प्रभा की बाणी भगत कबीर जी की।

जो जन जान बजे पुरखोत्तम काची अवगत बाणी नामा कहे जग जीवन पाया हृदय अलख बिडाणी परवाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंक ना जानिया

कैलाश करवासी अकुल पुरख इक चलत उपाया कट कट अंतर ब्रह्म लुकाया जी की जोत न जाने कोई तैने किया सो मालूम होई राव जो परगा

हृद अंतर पर तलकाती। ठग दुष्ट बगा लिव लागा, देख बैसनो प्राण मुख भागा। कल

दो तोती कर्म मुख खीरं हृदय छुरी संध्यानी पर दर्द हिरन की बानी शिल्पू जस चक्र गणेशं निस्जाग सुपगत परवेशं पग नाचस चित्त अकर्मं एलं पट नाच अधर्मं मृग आसन तुलसी माला कर उजल तिलक कपाला हृदय कूर कंठ रुद्राक्षं रे लंपट कृष्ण अवाखं।

राम भज जन्म सिरात है, कहो कहा बार बार समझत नह क्यों गवार, बिनसत नह लगे बार पूरे समगात है। रहा सगल परम डाल।

अवसर भी हाथ में, जय जावंती मेला नामा। रे मन कौन गत हुए है तेरी, ए जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान। बिखियन

अनिता विनोद सुत कतंच भात मीट हित बंध कतंच मोह कुटुंबते कतंच चपल मोहनी रूपं ते खंते त्यागं करोत।

दिसै दुखम थान बसंत पूछै मैं सिमरंत मरण सदा छिते। होवंत आ गया भगवान पुरख है नानक की सास अकर थके।

प्राप्तम धर्म लखन नानक जैसो परसन माधवे मृत मोहं अलप बुद्धन रचंत बनता विनोद साहन जो बन बे कर्म कनक कुंडले बचित्र मंदर शोभंत वस्त्राय।

धने दयाल एक भगवान पुरखे नानक सर्व जी प्रत पाल के अनित्य वित्तं अनित्य चित्तं अनित्य आशा बहुविध प्रकारं अनित्य हेतं अहम् अहम् बंधं।

होत अंधकार सिमरत प्रकाशन गुण रमत अग खंडने रिद बसंत बै भीत दूते कर्म करत महानिर्मले जनमे मरण रहंत स्रोता सुख समो अम

नच बिदया निधान निगम नच गुण गय नाम कीर्तनी नच राग रतन कंठन नहि चंचल चतुर चातुरे भाग उद्यम लब्धं माया नानक साध संग खल पंडते कंठ रमणी राम राम माला हस्त ऊच

अजाभोदंत कंद मूलं बसंते समीप कुल हरे तत्र गते संसारिणान सोग हर्षं व्यापते छलं छिद्रं कोट विघ्नं।

कदेन चित्तो जाता अस्थल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग कितो। अपजसन मिटंत सत पुत्र सिमर तवर गए।

ऊपर बने आकाश तले धर सोहती दैदिस चमके भी जल मुख को जो हती।

जप तप संजम हरख सुख मान महत अर गर्बे मूसन निमक के प्रेम पर वार वार देव सरबे मूसन।

जग में चेत्यो जान के जग में रहो समाए, जिन हर का नाम न चेत्यो बादे जन्मे आए। कबीर आशा करिए राम की, अवरे आस निराश, नरक परे ते

ताबत रखे ता राम भजे नाहे ता बिनती बात। कबीर केसो केसो कुकिया ना सोए सारे।

कबीर राम रतन मुख को तेरी तारक आगे खोले कोई आए मिले जो गाती ले दो महंगे मोल कबीर राम नाम जाने।

जीवंते पंखी चले दिशावरी बिरखा सुफल फलंत। कबीर साधु संग प्राप्ति लिखिया होए लीलात, मुकुट पदार्थ पाये खाक न अवकट काट। कबीर एक करी आदि करी आदि हूँ तो आदे अगत।

खेलत खेलत हाल करे जो कुछ होए ता होए। कबीर जो तुम्हें साध तिरम के पाके से तू खेले काठी सरसों तेल के ना फल कई ना तेल। ढूंढत डोल है अंग गत अर चीनत ना ही संत कहनामा क्यों पाए बिन पगतों भगवंत।

खल डूंगर पवे होवन अज करी दे कूजड़ा सह को माखी ओम राती वड्डियां सुख उठन पास सिज तिना दा जीरिया दिना विदानी आस करीदा जेने होंदा वारिया नित्ता आयरिया खेड़ा जले

कंध कुहारा सिर कड़ा वन के पर लोहारे खरीदा हूँ लोड़ी सो अपना तू लोड़ है अंगियार खरीदा इतना आटा।

नबी वाके छप्पड़ तू मैं क्या हो चिकर डुबे हाथ फरीदा नंदी संत नारावे वड्डी सी मोई आके।

सोताओ वत कुआरी ना पिए कलर केरी छपड़ी आए उलते हंज सिंजू बोड़न ना पीवे उड़न संधी डंज हंस उदर कोदरे पया लोक विदारण जाए गहला लोक ना जानदा हंस ना कोदरा खाए चल चल गईया पंखियां जिनी वसाए तल फरीदा सर परिया पी चल सी थके कवले कल फरीदा इत सिराने तोए सन कीड़ा लड़े मास केतड़े

नौबत वजी सुबह क्यों चलन का कर साज फरीदा रात पूरी वंडी है सुतियां मिले न खाओ जिना नैन निंद्रावले तिना मिलन को आओ फरीदा मैं जानिया दुख मुझको।

रब खजूरी पक्कियां मां कहने वहन जो जो वंजे दीहड़ा सो उम्र हथ पवन खरीदा तन सुखा पिंजर किया तलियां खूंडे काज अजय सुरद न बहुड़ो देख बंदे के पाज काजा करंग तंडोलिया सगला खाया मास एगे लेना मत हो फिर देखन की आस काजा चूड़ ना पिंजरा बसे ता उदर जाहे जित पिंजरे मेरा सो वसे मास न तिद्दू खाहे फरीदा गोर निमाणी सड करे निकरिया कर आओ।

आमल आखी से था बंदगी चलन अज के कल खरीदा मोतैदा बन्ना एवें दिसे ज्यों दरिया वैता अगे दोजक तपिया सुनिए हूल पवै कहा इतना नू सब सोजी आई इक फिर दे वे।

रब न छोड़न पास। फरीदा रुत फिरी वन कंबिया सप चढ़े चढ़ता है सारे कुंडा टूंडिया रहन किताऊ नाही। फरीदा पार पटोला तज कर कंबलड़ी पहरे ओ जिनी वेसी सौ मिले से वेश करे ओ। महला तीजा काए पटोला पारती कंबलड़ी पहरे नानक कर ही बैठिया सौ मिले जे नियत रास करे। महला पंजवा फरीदा गर्भ

रावणे जिना विसारे नाओ कैसे दुख कनेरिया अगे थौर न छाओ फरीदा पिछल रात ना जाग्यो जीवन दरो मोयो ए जे तैं रब विसारिया ता रब ना विसरयो ए महला पंजवा फरीदा कंक रंगावला वड्डा ने मुमताज अल्ले से ती रतियां इहो सचावा साज महला पंजवा फरीदा दुख सुख इक कर दिल ते लाए विकार अल्ले पावे सो भला तां लगी दरबार महला पंजवा फरीदा दुनी वजाई वजदी तू भी वजै ना।

क्या चलै किस नाल इक जा बंदे नाल हैं इतना सुतिया दे उठाल तू देंदिए सुहाग को तो तन काई कोरे जिन्ना नाव सुहागनी तिन्ना छाप न होर सबर मंज कमान ए सबर का नीहनो

कनक कै तनूर ज्यों बालन हद बलन कैरी थका फिर जुला जेहू फिरी मिलन। तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन हड ना बाल फिर कैरी क्या फेड़िया अंदर फिरी निहाल। हौ कुंडेंदी सज्जना सज्जन नैंदे नाल नानक अलख ना।

सिर तल उत्तर पाओ। मैं जानिया बड़ हंस है पाने की पासंग, जो जाना बग बकुड़ा जन्म न पेड़ी अंग। क्या हंस क्या बगुला।

को कमस को अखर कान गुण कमस को मणिया मनते कमस को विशो हों करी जित वस आवे तंते निहंस को अखर खान गुण जो बा मणिया मनते।

निपाणा अनहोंदे आप वंदाए को ऐसा भगत सदाए एक सिक्का ना गालाए सब नाम सच्चा तई याओ न कही ठाए मानक सब अमोल वे सबना मन

सर्व रहो भरपूर सगल घट रहो व्यापे, व्यापत देखे जगत जाने कौन तेरी गते। सर्व की रक्षा करे आते हर पते,

आन नहीं तुम भरे हर अंत नहीं पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दर तुले ब्रह्म संसार एक दिन क्या बखाने हाँ के बल बल बल बल सद बल हार अमृत प्रवास हर अतुल भंडार भर परे ही ते परे अपर अपार पर आपनो भाव

आननाई समसर उदियारो निर्मल कोट करा छते जाए नाम लिए हर हर जन नानक भगत दल कुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हाके बल बल बल बल सद बल हार।

जन नानक भगदर तुल ब्रह्म समसर ए जी क्या बसन हाके बल बल बल बल।

निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी हर्षवंत आनंद रूप निर्मल विगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं।

धन धन ते धन जने जे कृपाल हर हर भयो हर गुरु नानक जिन परसो से जन्म मरण दो तेरे हो सत सत हर सत सत सत सत भणिए दूसर आन न आवर पुरख पुरातन सुनिए अमृत हर को नाम लेत मन सब सुख पाए जे रसन साखो तै जन त्रिपुत अधाए जे ठाकुर सो परसन भयो सतसंगत तै प्यार हर गुरु नानक जिन परसो तिन सब कुन कियो उधार सच सभा दीवान सच सचे तै धरयो सचे सत निवास सच तपावस करयो सत सुन जो सन

हर तारन तरम समरथ सवैद कुल समूह उदाहरण सो चित चेत अचेत जान सत संगते भरम अंधेर मोयो कत भौ मूरत घड़ी सापल सिमरन राम नाम रखना संगला होठो काज अलग सुख बंधन कोट जन्म कहाँ दुख भौ सिखा संत नाम भजनान के राम रंग आत्म स्योरों रंचक रेत खेत तन निर्मत दुर्लभ दे सवार भरी खान पान सोधे सुख भुंचत संकट काट विपत हरी मात का भाई अर बंधते बूधन के सब सोज परे बरमान होवत दिन प्रतिनित आवत निक

नानक काठ भरम भरी। रे मन मूस बिलावे गर्वत कर्तव करत महाम भुना। संपत धौल धूल संग झूलत माया मगन भरमत भुगना। सुत बनता साजन सुख बंदते तासु मो बड़ो सुघना। बोयो भीत अहं मम अंकुर बीतत औध करत अधना। मृत मंजार पसार मुख निरखते भुंचत भुगत भूख भुखना। सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नानक जगे जानत सुपना। देहे न देहे ननहे ननीता माया मत कहा लो मादारो। देहे न देहे ननहे ननीता माया मत कहा लो गारो। छत्र न पत्र न चौर न चावर बैठी जात हृदय न विचारो। रथ न अश्व न गज सिंहासन छिन में त्यागत नाम सिधारो। सूर न वीर न मीर न थानम संग न को दृष्ट निहारो। कोट न ओट न कोश न छोटा कर्त विकार दो कर झारो। मित्र न पुत्र कल्प साजन सुख उल्टत जात बिरख की छारो। दीन दयाल पुरख प्रभु पूरन छिन छिन सिमरो अगम अपारो। श्रीपत नाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारो। प्राण मान दान मग जोहन चीत चीत दे ले ले तारी। साजन सैन

एवं करते शोध तन जारी करम धर्म संजन सुख सुचनेमा करम धर्म संजन सुचनेमा चंचल संग सगल विदहारी पथ पंखी बिरख अचतावर बौगंद जौन भम्यो अत भारी सिन पल चसा नाम नहीं सिमर्यो दीना नाथ प्राण पथ सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उधरे और माया मग्न

गुण मर्म चार खट दर्शन ब्रह्मागत समरंथ गुणाम गावे गुण शेष सहस जेदा रस आद अन्...

भगत दीन गुण रही सहज आत्म रंग माने, योग ध्यान गुरु ज्ञान बिना प्रभ और न जाने। सुखदेव परिखत गुण रहे गौतम रिख जस गायो, कब कल सुजस नाम।

जात दृष्ट अमृत धार काल को खन उतारे तिमर अज्ञान जाए दर्श द्वारे ओ जो से

सत संगत सहज सारे जागिले गुर बिचारे निमरे भूत सदीव परम प्यारे कौ तीरथ कल सहारे सतत दीप मझारे लैना जगत गुरु पर सुमुरारे तै तो दर्यो नाम अपारे बिमल जास बिठारे साधक सिद्ध

मन हर हर दर्श समानी आत्मावंत ज्ञानी जानी अकलगत गुरु परवानी जाति दृष्ट अकल छानी बिमल बुद्ध सुठानी तहसील सना।

लैणा जगत गुरु पर सुमुरार, दृष्ट भरत काम हरण दहन अघ पाप परासन, सबद सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन, लोभ मोवश करण शरण जाचक प्रत पालन, आत्मरत संग्रहण कहन अमर

गरल नाश कन नठे अम्यो अंतरगत पियो रिद बिगास जागयो अलग पल धरी जुगंतर सतगुर सहज समाद रव्यो सामान निरंतर उदारो चित दारद हरन तिथंते कलमल प्रसन्न सब रंग सहज कल उचरे जस जमतो लेने रसने नाम औखद नाम आधार अर नाम सम

पुरुष सिमर साचा, जाता एक नाम असल संसारे। जिन भगत भौजल तारे, सिमरो सोई नाम प्रधान। इत नाम रसिक

तीरथ रव फिर प्रगण संसारे सात सरोवर मवल सराब। उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम जय जयकार जपंत नरा। हर नाम रसन गुरुमुख बरदायो उल्ट गंग पर

कोई नाम अचल भगते भवतार। अमरदास गुरु को पुरिया चित नाम लागते तुझसे ध्याई जति कपि।

पाओ अमर गुरु की खोजो। नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाय मुख मिष्ट बाणी। धन सतगुण सेवे जिस पसाए गत

हृदय बसो अत हो सोए रसिन ही जातो मुखों भगत उतरे अमर गुर इतरंग रातो मस्तक निशान

चरण तपर सकयत चरण गुर अमर पवल्ले, हथ तपर सकयत हथ लगे गुर अमर पे, जी तपर सकयत जी गुर अमर भजे।

गुर अमर रास निज भगत है, देख दर्श पावो मुकते। गुर अमर दास पर

गुरु अमरदास परसिए ध्यान ले पौम कै। गुरु अमरदास परसिए अभो लभे गुर चुक। एक बंधु गण जो को रहे जासमंत मानो लहे। जाल पा पदार्थ इतने गुरु अमरदास जिथे मिले। सच नाम करतार सुदृढ़ नानक संग्रह हो ताते अंगद।

तात गुण कवण वखाणो जो गुण अलख अगम तिने गुण अंत न जानो बोलो विधाते निर्मयो सब संगत कुल उधरणे गुरु अमरदास कीरत कहे त्राहे त्राहे तो पाशरण आप नारायण कलाधार जग में परवरयो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो जैसे जैसे भरपूर सबक दीपक।

जप तप सत संतोख तिक दर्शन गुर सिखे सरण परे ते उबरे छोड़ जमपुर की लिखे भगत।

गुरु अमरदास कारण करण जिम तो रखे त्यों रहो दिखे के गुरु ज्ञान अर ध्यान तत्सम तत्।

धर्म धन कर गयो भगत सीधे सर लड़यो भय निर्भव हर अटल मन सबद गुरु ने जाग गयो काम क्रोध लोभ मोह

अद्भुत सेव परम पद पायो अबला से अवगत ध्यायो। इस भेटे दारिद्र न चमते फल सहारता।

नाम निरंजन उर धरया। हर नाम रसक गोविंद गुण गाहते, चाहत तत समत सरे, कब कल ठकर हर दासने, गुरु राम दास सर अबर भरे। छूटत प्रवाह अमेव अमरात, अमृत सरोवर सद भरया। ते पीरे संत करे मन मज्जन, उबजनो सेवा करिया। तिन भव निवार अनभय पद दीना, शब्द मात्र ते उधर धरे। कौन कर्ण ठकुन हर दास तने, गुरु राम दास सर अवर भरे। सतगुरु मत गूढ़ बिमल सत संगते, आत्म रंग चलूल भया। जागा मन कवल सहज परगासा, अभय निरंजन घरे लहा। सतगुरु दयाल हर नाम दिलाया, इस पर साधवस पंच करे। कल कल ठाकुर हर दास तने, गुरु राम दास सर अभर भरे। अनुभव अनुमान अकल लिव लागे, पारस भेटिया सहज घरे। सतगुर प्रसाद परम पद पाया, भगत भाय भंडार भरे। मेटिया जन मंत्र मरण भव, भागा के

भरत परवाते सुपुलि न होते सतगुर शब्द अथाओ अम्यो धारा रसगुत्ते मत माता संग

सतगुरु नाम एक निव मन जप दृढ़ जन दुख पाप कौ कत होए जियो। तारण करण छिन मात्र जाको दृष्ट धारे शब्द हृदय विचारे काम क्रोध खोए जियो। जीवन शब्द दाता अगम जा

पावे गुरमुख ध्यान दुर्मत मैल धोवे जियो सतगुण नाम एक लिव मन जते जन दुख पाप को

साध मुन जन सुर नर जाती सबद सार एक लिव लाई है। सुन जाने को तेरा अपारे निर्भव निरंकारे अकथ कथन हारे तुझे बुझाई है। भर्म

नाम सो अपार सार दीनो गुरुद धरे नल कौ पारस परस कच कंचना हुए चंदना सुबास जास सिमरत अन करे जाके दे।

पाऊं तैनीर सर अवर अनल अनाद कियो। सकल खनिस सूर दिन सैल करो फल फूल दियो। सुर नर सपत सम

दास भट बेनत कहे, जो गुरु नाम हृद में धरे सो जन्म मरण दो ते रहे। गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे। गुर कर सच बिचारे गुर कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सुपन अघन कटे सब तेरे। गुर नैन भैन गुर गुर करो गुरु सत कब नल कै, जिन गुरु न देखो न कियो ते अकथ संसार में। गुरु गुरु गुर कर मन मेरे, तारण तरण समर्थ कलयुग सुनत समाद शब्द जिसके रे। सुन दुखन नाश सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान बस्त तै मेरे। पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत

जिस देख चरण अघन हरो। निसबासुर एक समान ध्यान, सो नाम सुने सुत भांडरो। भन दास आस जगत गुरु की, पारस भेत परस करो। रामदास गुरु हर

त्याग तजो भजो हर ज्ञानियों। वचन गुरु हृदय धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उधरो द्वार हर मानियो। जो तो सब सुख इत

गुरु गुरु गुरु जप सत कर अगम गुण जान निधान हर मन धरो ध्यान ऐस करो बचन गुरु हृदय धर सुन गुरु जल बिमल अथा मजन करो संत गुरु सिख करो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निर्भव जपे प्रेम गुरु शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुगद मन भ्रम तजो नाम गुरु मुख भजो गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु जप सत कर।

उदत गुर गहर गमीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लेवलाये। सुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुर्मत हिरते शब्द गुरु ध्याये। अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुरु बिमल सर संत।

मिलत मुन जन रे तरे नारदाद सनकाद हर गुरु मुखे तरे एक नाम लगत जो रस आ

कृपा सत जुग जिन धूपर श्री प्रहलाद भगत उदयं हाथ कमल माथे पर धरियं अनख रूप जी लख न जाई साधक सिद्ध।

का ब्रह्म भरम शुभ छुटका, अवलोका ब्रह्म भरम सब छुटका, दिव दृष्टि कारण करण सतगुरु गुरु सेव अलग गत जाकी, श्री राम दास तारण तरण। परताप सदा गुर का घट घट परदास भया।

करें पर भात शुद्ध मन गुरु पूजा दिद सहित करन। कंचन तन होए परस पारस को ज्योत स्वरूपी ध्यान धरन। जग जीवन जगन्नाथ जल थल मेरिया पूर्व विद वरनं। सतगुरु गुरु सेव अलग।

तिन तरयो समुद्र रुद्र थिन एक में जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडली सुरजी सत संगते परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन बच

ही पाता। गुरमुख संगत सबे विचारो, वाओ वाओ का बड़ा तमाशा, किया खेल बड़ मेल तमाशा। वाहे गुरु तेरी सब रचना, तू जल थल गगन पयाल पूर रहा, अमृत ते मीठे जाके बचना। माने ब्रह्मा

सत्संगत से ती मन खचना, किया खेल बड़मेर समासा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत आ

गुर समरथ गए किरिया धूप बुद्ध समत समारन को उन धम दूजा फैरंत सदा अग पुंज तुरंग निवारन को मथुरा जन जान कहीं जे साज तू और कछु न विचारन को हर नाम बहुत बड़ो कल ने भव सागर पारे उतारन को संतत ही सत संगत संग सुरंग रते जस गावत है ब्रह्म पंथ धर्यो धर्मी धर आप रहे ले धारण।

मन इच्छत ही फल पावत है। रव के सुख को तिन त्रास कहा, जो चरण गुरु चितलावत है। निर्मल नाम सुधास पर पूरन सब त्रंग प्रगट तिन आगर,

अंतर्गत तेज कुंचे लोक प्रजा से देखत दर्श भटक भ्रम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अत लुभते अल्प मोजो कुसुम सुबासे विद्यमान गुर आप थ

बसीस धर्यो गुर हथे। तीन भवन भरपूर रहो सोई, अपन करत क्यों ना जगत कोई। आपन आप ही उपायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे, असुरे नर गण गंधर्व को जंत फिरे। अविनाशी अचल अजौनी, संभो पुरखो तुम अपार परे। करण कारण समरथ सदा।

सतगुरु नानक भगत करे एक मन तन, मन धन गोविंद दियो अंगद अनंत मूरत निज धारी, अगम ज्ञान रस रस हियो गुरु अमरदास।

मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिटियो जो तिणन। बाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिटियो जो खिणन। कर्म कर तो दर्श परस पारस फल बल भट जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तै हर परम पद पायो। जै सित सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन। जै सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जै सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे। जै सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नव निध पावे। सोई रामदास गुण बल भण मिल संगत धन धन करो। जै सतगुर लग प्रभु पाइए सो सतगुण सिमरो नरो। जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत न छोड़ो पासे। ताके गौहर ज्ञान प्रगत उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नाशे। कव कीरत जो संत चरण

जय तिखत अत होए रहत मन सोई। संत सहार गुरु रामदास, नानक नाम निरंजन जानो, तीनी भगत प्रेम निवलाई। साते अंगद अंग संग भयो सायर, तिन सबद सुरद।

तै जन्म ते गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सो जस वखाण्यो भगत जोग को जैतवार।

گر ارجن گھر گر رام داس بھگت اتر آیو بل بھاگی ان مانیو رد سبد

वेदन भर सहता भय बंजन पर पीर निवारण कल संहार तुए जस भगता कुल सौदी गुरु राम दास तन धर्म भुजा अर्जन हर भगता।

कहे मथुरा अमृत बैन मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन पिखो नैन सत रूप सत नाम सत संतोख धर्यो आद पुरख पर तथे लिखो अक्षर मस्तक धुरे प्रगट ज्योत जगम।

मुख प्रगट होए। दुख रुसारन शब्द है जे मन वसाए कोए, गुर कृपा ते मन वसै कर्म प्राप्त होए। नानक हों हों करते खप मोए, कूहन लख असंख, सतगुर मिले सोबरे साचे शब्द अलंख। जिना सतगुर इक मन सेविया, तिन जन लागो पाए, गुर शब्दी हर मन वसै माया की पुख जाए। से जन निर्मल उजले जे गुरमुख नाम समाए, नानक होर पाप।

बौरस साल ने सवार दी खट बस मीठे पाए त्यों बाणी भगत सलां दे हर नाम चित लाए मन तन तन आगे राखिया सिर वेचिया गुर आगे जाए पै भगती भगत बहु लोच दे।

0: नाम रतन प्रकाशिया मन तन निर्मल होए। नाम हीन नक्शे फिरे बिन नाम बह रोए, नानक जो तुर करते लिखिया सो मेट न सके कोए। गुरमुखा हर तन खटिया गुर कै शब्द विचार, नाम पदार्थ पाया तुत परे पंडार। हर गुण बाणी उचरे अंत न पारा वार, नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार।
1: गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़या दसवें आकाश, तिथ है ऊंग न पुख है हर अमृत नाम सुखवा।

हेत है अंत बेली को न सखाए, सतगुर सेवे सो सुख पाए, नाम वसै मन आए, नानक से वड्डे वड पागी जे गुरमुख नाम समाए। मनमुख नाम न चेतनी बिन नाम है दुख रोए, आत्मा राम न पूजनी दूजे क्यों सुख होए, हों मैं अंतर मैल है शब्द न काढ़े तोए, नानक बिन नाम है मैलिया मोए जन्म पदार्थ खोए। मनमुख बोले अंगले तिसमें अग्नि का वास, बाणी सुरत न बुझनी शब्द न करे प्रगास, ओ ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुर वचन ना करे विश्वास, ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है नित हर लिव सदा विकास, हर ज्ञानिया की रखदा।

आए बिक का मारण हर नाम है गुर गरुड़ शब्द मुख पाए जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुरु मिलिया आए मिल सतगुरु निर्मल होया बिक हो मैं।

सतगुर पुरख निर्वैर है नित हिरदय हर लिवलाए निर्वैर नाल वैर रचाएंदा अपने कर लूकी लाए अंतर क्रोध अहंकार है अन्दिन जले सदा दुख पाए कूड़ बोल बोल नित पौंक दे।

हर हर नाम ना चेतनी करते आप खुआए, हर गुरमुख कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए, जन नानक तिस बलिहारण जो सतगुरु लागे पाए, नाम लगे से उबरे बिन नाम है जम पुर जाए, नानक बिन नाम है सुख नहीं आए गए पछताए, चिंता तावत रह गए।

आनंद। सतगुर सेवन अपना गुर शब्दी विचार, सतगुर का पाना मन लैन हर नाम रखे उरदार। एथे ओथे मनियन हर नाम लगे व्यापार, गुरमुख शब्द सियाप दे तित साचे दरबार। सच्चा सौदा खर्च सच अंतर प्रेम प्यार।

जन की टेक हर नाम हर बिन नामे ठवर न ठाओ गुरमति नाव मन वसै सहजे सहज समाओ वडपागी नाम ते आया एहन सलागा पाओ जन नानक मंगै तूर तिन हो सद कुर्बाने जाओ लख चौरासी मेदनी तिसना जलती करे पुकार ए मोह माया सब पसरिया नाल चले नाम ती वार बिन हर सांत ना आवई किस आगे करी पुकार वड पागी सतगुरु पाया बूझया ब्रह्म विचार तिसना अग्न सब बुझ गई जन नानक हर उरदार असी खत्ते बहुत कमाम दे अंत ना पारा वार हर कृपा करके बख्श ले हो हों पापी वड गुनहगार हर जियो लेखे वार ना आवई तू बख्श मिलावन हार गुर तुठे हर प्रभ मेलिया सब किल कट विकार जिना हर हर नाम ते आया जन नानक तिन जयकार विछड़ विछड़ जो मिले सतगुर के पै पाए जन्म मरण नह चल भये गुरमुख नाम ते आए गुर साधु संगत मिले हीरे रतन लवन नानक लाल अमोल का गुरमुख खोज लहन मनमुख नाम ना चेत्यो तिग जीवन तिग वास जिसना जित्ता खाना पहनना सो मन ना वस्यो गुणतास ए मन शब्द ना पेदियो क्यों होवे करवास मनमुखिया दोहागनी आवन जान मोयास गुरमुख नाम सुहाग है मस्तक मणि लिखियास हर हर नाम उरधारिया हर हृदय कमल प्रगास सतगुर सेवन आपना हो सद बलिहारी तास नानक तिन मुख उजले जिन अंतर नाम प्रगास शब्द मरे सोई जन सिजै बिन शब्द मुक्त न होई पेख तरह बहु कर्म विगुते पाए दूजे परज विगोई नानक बिन सतगुरु नाव ना पाई है जेसो लोचे कोई हर का नाव अत वड ऊंचा ऊंची हु ऊंचा होई अपड़ कोई न सकई जे सो लोचे कोई मुख संजम हच्छा ना हो वही कर पेख पवे सब कोई गुर की पौड़ी जाय चढ़े कर्म प्राप्त होई अंतर आए वसे गुर शब्द विचार है कोई नानक शब्द मरे मन मानिए साचे साची सोए माया मोह दुख सागर है बिख दुत्तर तरे आना जाए मेरा मेरा कर दे पच मोए हों मैं करत विहाय मन मुखा उरवार न पार है अद विच रहे लपटाए जो तुर लिखिया सो कमावना करना कछु न जाए गुरमति ज्ञान रतन मन वसे सब देखिया ब्रह्म सुवाए नानक सतगुर बोझ वड पागी चढ़े ते पौजल पार लंगाए बिन सतगुर दाता को नहीं जो हर नाम दे आधार गुर कृपा ते नाव मन वसे सदा रहे उरधार तिसना बुझे तिपत होए हर कै नाए प्यार नानक गुरमुख पाईए हर अपनी कृपा धार बिन शब्द जगत बर लिया कहना कछु न जाए हर रखे से उबरे शब्द रहे लिव लाए नानक करता सब कित जानदा जिन रखी बनत बनाए होम जग सब तीर्था पढ़ पंडित थके पुराण बिख माया मोह न मिटई विच होमे आवन जान सतगुर मिले मल उतरी हर जपिया पुरख सुजान जिना हर हर प्रभ सेविया जन नानक सतगुर बाण माया मोह बहु चित्व दे बहु आशा लोभ विकार मन मुख अस्थिर नाथी है मर बिनस जाए खिनवार वड पाग होवे सतगुर मिले होमे तजै विकार हर नामा जब सुख पाया जन नानक शब्द विचार बिन सतगुरु भगत न हो वही ना

मन आवन जान ना सुजई ना सुजै दरबार माया मोह पलेटिया अंतर अज्ञान गुवार सब नरफ पा जा गया सिर डंड लगा बहु पार गुरमुखा करा उपर हर चेतिया से पायन मोख द्वार नानक आप ओह उदरे सब कुटंब तरे परवार शब्द मरे सो मुआ जापे गुर प्रसादी हर रस्त्रा पे हर दरगे गुर सब जापे बिन शब्द मुआ है सब कोए मन मुख मुआ अपना जन्म खोए हर नाम न चेते अंत दुख रोए नानक करता करे सो होए गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिना अंतर सुरत ज्ञान सदा सदा हर गुण रवे अंतर सहज ज्ञान ओए सदा आनंद विवेक रहे दुख सुख एक समान तिना नदरी इको आया सब आत्म राम पहचान मन मुख बालक बिरद समान है जिना अंतर हर सुरत नाही विच हो मैं कर्म कमाऊं दे सब धर्म राय कह जाही गुरमुख अच्छे निर्मले गुर कह सब सुवाए ओना मैल पतंग ना लग गई जे चलन सतगुर भाए मन मुख झूठ ना उतरे जे सो तोवन पाए नानक गुरमुख मेलिया।

नानक गुरमुख मन च्यों लुजै, जिना सतगुर पुरख न सेवियो शब्द न कीतो विचार। ओए मानस जून ना आखियन पशु टोर गावार, ओ ना अंतर ज्ञान ना ध्यान है हरसो प्रीत ना प्यार। मन मुख मोए विकार में मर जमे वारो वार, जीव दयानो मिले सो जीव दे हर जग जीवन उद्धार। नानक गुरमुख सोहणे सिद्ध सच्चे दरबार, हर मंदर हर साजिया हर वसै जिस नाल, गुरमति हर पाया माया मोह पर जाल। हर मंदर वस अनेक है नव निर्नाम समाल, तन भगवंती नानका जिना गुरमुख लद्दा हर पाल। वड पागी गढ़ मंदर खोजिया हर हृदय पाया नाल, मन मुख दे दिस फिर रहे अत तिसना लोभ विकार। माया मोह न चुकई मर जमे वारो वार, सतगुर सेव सुख पाया अत तिसना तज विकार। जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द विचार, हर हर नाम से आए मन हर दरगह पावे मान। किलविक पाप सब कटिए हो मैं चुके गुमान, गुरमुख कमल विकसिया सब आत्म ब्रह्म पहचान। हर हर कृपा तार प्रभ जन नानक जप हर नाम, तनासरी तनवंती जानिए पाई जा सतगुर की कार कमाए। तन मन सौंपे जी सो भाई लय हुक्म फिराओ, जय बैसावे बैसे भाई जय पे जय तह जाओ। एवड तन होर को नहीं भाई जेवड सच्चा नाओ, सदा सच्चे के गुण गावा भाई सदा सच्चे के संग रहाओ। पैनन गुण चंगियाईया भाई अपनी पथ के साथ आपे खाए, तिसका क्या सालाई है भाई दर्शन को बल जाए। सतगुर विच वडियां वडियाईयां भाई कर्म मिले ता पाए, एक हुक्म मन ना जाननी भाई दूजे भाई फिराए। संगत तोई ना मिले भाई बैसन मिले ना थाओ, नानक हुक्म तिना मनाए सी भाई जिना तुरे कमाया नाओ। तिन विटो हो वारिया भाई तिन को सद बलिहार रह जाओ। से दाड़ियां सचियां जे गुरचरनी लगन, अंदिन सेवन गुर आपना अंदिन अनदरहन। नानक से मोह सोहणे सच्चे दर दिसन, मुख सच्चे सच दाड़ियां सच बोले सच कमाए। सच्चा शब्द मन वस्या सतगुर माहे समाहे, सच्ची राशि सच तन उत्तम पदवी पाहे। सच सुने सच मन लैन सच्ची कार कमाहे, सच्ची दरगह बैसना सच्चे माहे समाए। नानक बिन सतगुर सच ना पाईए मन मुख भूले जाए। बाबीहा प्रयो प्रयो करे जल निज प्रेम प्यार, गुर मिले शीतल जल पाया सब दुख।

वडपागियां सोहागनी जिना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर जोत प्रगासिया नानक नाम समाए वाह वाह सतगुरु पुरख है जिन सत जाता सोए जित मिले तिक उतरे तन मन शीतल होए वाह वाह सतगुरु सतपुरख है जिसनो समत सब कोए वाह वाह सतगुरु निर्वैर है जिस निंदा उस्तत तुल होए वाह वाह सतगुरु सुजान है जिस अंतर ब्रह्म विचार वाह वाह सतगुरु निरंकार है जिस अंत ना पारावार वाह वाह सतगुरु है जे सच दृढ़ाए सोए नानक सतगुरु वाह वाह जिसते नाम प्राप्त होए हर तरफ सच्चा सोहेला गुरमुख नाम गोविंद अंगन नाम सलाहना हर जपया मन आनंद वड पागी हर पाया पूरन परमानंद जन नानक नाम सलाया बहुना मन तन पंग मुंह प्रिया सोनेओ क्यों सज्जन मिले प्यारिया हौ तू देंदी तिन सज्जन सच सवारिया सतगुरु मेंदा मित है जे मिले ता इहो मनवारिया देंदा मुंह पिर दस हर सज्जन सृजन हारिया नानक हौ फिर पाली अपना सतगुरु नाल दिखा लिया हौ खड़ी निहाली पंग मत मुंह सज्जन आवे को आन मिलावे अज मैं फिर मेल मिलावे हों जियो करी तिस विटो चोखनी है जो मैं फ्री दिखावे नानक हर होए दयाल ता गुरपुरा मिलावे अंतर जोर हों मैं तन माया कूड़ी आवे जाए सतगुर का फुरमाया मन न सकी दुत्तर तरिया न जाए नजर करे जिस अपनी सोच लै सतगुर भाए सतगुर का दर्शन सफल है।

दर्शन क्यों तृप्तिय नानक मिले सुभाए गुरमुख के मन रहसी है जिना प्री प्यार क्यों जीवन फिर बहारे जासो देखन अपना नानक जीवन भी हरे जिना गुरमुख अंदर ने हो तै प्रीतम सच्चै लाया राती अतैडे हो नानक प्रेम समाया गुरमुख सच्ची आस की जित प्रीतम सच्चा पाई है अंदर रहे आनंद नानक सह समाई है सच्चा प्रेम प्यार गुरु पूरे ते पाई है कबहू ना होवे पंग नानक हर गुण गाई है जिना अंदर सच्चा ने हो क्यों जीवन प्री विहुनिया गुरमुख मेले आप नानक चिरी विछुनिया जिनको प्रेम प्यार सौ आप पहलाया कर्म कर नानक लेहो मिलाए मैं जाचक दीजे नाम हर गुरमुख हस है गुरमुख रोवे जे गुरमुख करे साई भगत होवे गुरमुख होवे सो करे विचार गुरमुख नानक पावे पार जिना अंदर नाम निदान है गुरबाणी विचार तिनके मुख सद उजले तिस सच्चे दरबार तिन बैंदियां उठदियां कदे ना विसरे जे आप बख्शे करतार नानक गुरमुख मिले ना विछड़े जे मेले सृजनहार गुर पीरा की चाकरी महा करड़ी सुखसार नदर करे जिस आपनी तिस लाए हे प्यार सतगुर की सेवे लगिया पौजल तरह संसार मन चिंदिया फल पाए सी अंतर विवेक विचार नानक सतगुर मिले प्रभ पाई है सब दुख निवारण हार मन मुख सेवा जो करे दूजे पाए चित लाए कुट कलत कुटुंब है माया मोह वधाए दरगे लेखा मंगी है कोई अंत ना सकी छाए बिन नाम है सब दुख है दुखदाई मोह माए नानक गुरमुख नदरी आया मोह माया विछड़ सब जाए गुरमुख हुक्म मन्ने सह केरा हुक्मे ही सुख पाए हुक्मों से

दुई गणत लाहे अपनी नजर निहाल आपे लहो लाए जन देहो मती उपदेश विच्चों परम जाए जो तुर लिखिया लेख सोई सब कमाए सब कष्ट दे वस दूजी नाही जाए नानक सुख आनंद भये सब की मन रजाए गुर पूरा जिन सिमरिया से भय निहाल नानक नाम आराधना कारज आवे रास पापी कर्म कमाव दे कर दे हाए हाए नानक ज्यो मथन माधानिया क्यों मथे धर्म राय नाम से आए साजना जन्म पदार्थ जीत नानक धर्म ऐसे चवे कीतो पवन पुनीत खुबड़ी कुठाए मिट्टी गलन कुमंत्रिया।

نانک اے بد ہر پجو اک من ہوئے اک چت تیرت برت

का सब आधारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। ए वस्त जी नह जाई, नित नित रख उधारो, तम संसार चरण।

रागमाला राग एक संग पंच बरंगन संग अलापे आठो नंदन प्रथम राग पैरो वै कर ही पंच रागनी संग उचर ही प्रथम पैरवी बिलावली पुनिया की गावे बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए पैरों की पांचो नारी पंचम हरख दिशा सुनावे बंगालम मद माधव गावे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी भात अष्टपुत्र भैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौश

माल राग कौशक संगलाई मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशक उभारा खौखट औ पौरा नद गाये अष्टमाल कौशक संगलाए पुन आयो हिंडोल पंचनार।

परमानंद पास करे आए चंद्रबिम मंगलन सोहाए सरस बान औ आए बिनोदा गावे सरस बसंत समोदा अष्ट पुत्र में कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कछेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औ रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कांगरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग में गावे पांचों संग बिरंगन लावे।

सुख पाइय इकना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा पवाइय है। हुक्मै अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्मै जे पुछ।

दूर कथना कथी न आवे टोट कत कत कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे तक पाहे जुगा

पछताए। कागज कलम ना लिखण हार, मन्ने का वह कर्म विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने सुत हुए मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की शुद्ध। मन्ने मुहि चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पथ स्यों प्रगट जाए। मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाए।

दरियाऊ कुदरत कमण कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावे साई पली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ

असंख सूर मोह पख सार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल भख खाहे।

अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर भार होए, अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग बखान, जिन एह लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुर मार।

एक वार जो तुझ पावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिए हाथ पैर तन दे पानी धोतै उतरस खे।

अंतरगत तीरथ मल नाओ, सब गुण तेरे मैं नाही कोई। बिन गुण कीते भगत ना होए, स्वास्थ आथ बाणी बरमाओ। सत सुहाण सदा मन चाओ, कमण सो वेला वखत कमण, कमण थित कमण वार। कमण से रुती माह कमण, जित होवा आकार। वेल न पाया पंडती,

होई जान करता सिर ठीक कौ साजी आपे जाने सोई किव कर आखा किव सालाही क्यों वरनी किव जाना नानक आख

आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सहस अठारह कहन कतेबा आसुलू एक तात लेखा हुए ता लिखिए लेखे हुए वनास नानक वड्डा आखिए।

पवह समुंद ना जानिए है समुंद साहा सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल ना होमनी जे तिस मनो ना विसर है अंत न सिफती कहन ना अंत अंत न करने देन ना अंत अंत ना वेखण सुनन ना अंत अंत ना जापे क्या मन मंत अंत ना जापे कीता आकार अंत न जापे पारावार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहेब ऊंचा थाउ ऊंचे उपर ऊंचा नाउ केवड ऊंचा होए कोए तिस ऊंचे कौ जाने सोए जेवड आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना कमाए केते मंगह जोद अपार केतियां गणत नहीं बीच।

अमोल तोल अमोल परवान, अमोल बख्शीश अमोल निशान, अमोल कर्म अमोल परमान, अमूलो मुल आख्या ना जाए, आख आख रहे लिब लाए, आख है वेद पाठ पुराण, आख है पढ़े करह वख्यान, आख है बर्मे आख है इंद, आख है गोपी तै गोविंद, आख है ईश्वर आख है सिद्ध, आख है केते कीते बुद्ध,

देवतियां दर नाले गाव है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारी गावन जति सती संतोखी गाव है वीर करारी गावन पंडित पन्न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गाव है मोहनिया मन मोहन सुरगा मच्छ पयाले गावन रतन उपाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गाव है जोध महाबल सूरा गाव है खानी चारे गाव है खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से तुदनो गाव है जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस पावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पात शाह सहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शर्म पत चोली।

आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजह नाद आप नाथ नाती सब जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग बजोग दुए कार चलावह लेखे आवह भाग आदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावै तिवें चलावै जिव होवै।

आद अनिल अनाद अनाहक जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए पंडार जो किस पाया सो एकावार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश सया देश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी पौ लख होहे लख होवह लख वीस लख लख गेड़ा आखियह एक नाम जगदीस एक राहे पत पवड़िया चढ़िया होए अतीस सुन गल्ला आकाश की कीता आई रीस नानक नदरी पा

जोर जोर लागी मन मरन नह जोर, जोर ना राज माल मन शोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुट्टे संसार, जिस हाथ जोर कर वेख सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्म।

पै जाए। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आख हो कर्म। केते पवन पानी वै संतर, केते कान महेश, केते बर में काड़त करिय है।

नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथे नाद बलोद कोड आनंद सर्म खंड की वाणी रूप तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां ना जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरा सिद्धा की सुध

पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुदर तेरा केहा सो कर केहा जित बह सर्व संभाले

राजा धर्म दुआरी गावन तुद नो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म बीचारी गावन तुद नो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारी गावन तुद नो इंदर इंदर आसन बैठी।

ब्राह्मण तुदनो पंडित पढ़ रखीस जुग जुग वेदा नाली गामन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मच्छ पाए आली गामन तुदनो रतन उपाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाली गामन तुदनो जोध महाबल सूरा गामन तुदनो खानी चारी गामन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सेई तुदनो गावन जो तुद पावन रत्ती।

सोई सदा सत साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन अपाई कर कर देखे कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पातशाह सहा पत साहिब नानक रहन रजा।

कीती रात खसम बसार है ते कम जात नानक नावे बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करहु गुर पास हम कीरे किरम सतगुर सरण।

सिखाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ, हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण परगास, जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर सरन संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संगत, जित हर रस पाया,

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा हर त्याव

तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्याव है हर त्याव है तुझ जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन तूती जमती फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिनका भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुझ जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरते जी तू आपे करह सो होई तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन ना

या सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोई। तू कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला इत सरवरड़ पहले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया पंकज मोह पग नहीं चाले। हम देखा तह डुबियाले मन एक ना चेत समूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा। ना हों जती सती नहीं पढ़िया, मूरख मुगदा।

सो कर राख वडाई तोय रहाउ विसे चसिया कड़िया पहरा थिती वारी माह होआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस राग तनासरी महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाउ सहस तव नैन नन नैन है तुहि को सहस मूर्त नना एक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोए किस दै चानन सब मह चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत इस भावे सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभत मनो।

क्रोध लगर बहु परया मिल साधु खंडल खंडाही पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मन

साखत हर रस साधना जानिया, इन अंतर हो मैं कंडाही, ज्यों ज्यों चल है चुभे दुख पावे, जमकाल सह सिर डंडाही, हर जन हर हर नाम सुमानी, दुख जन्म मरण भव खंडाही, अवनासी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाही, हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डाही, जन नानक नाम

सिद्ध हुआ सिद्ध लाई रिद आखा आउ गुपत प्रगट हुए बैसा लोक राखे पाउ मत देख भूला विसरै तेरा चेतना आवे नाउ सुल्तान हुआ मेल लश्कर तख्त राखा पाऊ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाऊ मत देख भूला विसरै तेरा चेतना आवे नाउ श्री राग महला पहला।

लिखे भूलन भूलना लिखे खाना खाओ लिखे वाट चलाइया लिखे सुन वे खाओ लिखे सहा लवाई है पढ़े के पुछन जाओ बाबा माया रचना तो अंधे नाम वसारिया ना तिस एह ना ओह रहाओ जीवन मरना जाए कै इथे खाजे काल जिथे बह समझाई है।

पास जित बोले पत पाई है सो बोलिया परवान फिक्का बोल विगुचना सुन मूर्ख मन अजान जो तिस भावे है से भले होर के कहन बखान तिन मत तिन पत तिन धन पल्ले जिन हिरदै रहिया समाए तिनका क्या सा लाहना।

जित सेवियां सुख पाईए तेरी दरगाह चले मान रहाव सच सरा गुड़ बाहरा जिस विच सच्चा नाम सुने है वखाण है जेतड़ी हौ तिन बलिहार जाऊ ता मन खीवा जानिए जा महली पाए थाऊ नाऊ नीर चंगे आईया सत परमल तन।

करमंदर खुशी नाम की नदर तेरी परवार हुक्म सोई तुद भावसी होर आखण बहुत अपार नानक सच्चा पातशाह

कराह दूत लगे फिर चाकरी सतगुर का वेसा कल्प त्यागी बाद है सच्चा वे परवाह मान रे सच

जाय। जो तिस भाणा सो थीऐ अवर ना करना जाय। गुरमुख वस्त वे साहीऐ सच वखर सच रास, जिन्नी सच वणंजिया गुरपूरे साबास। नानक वस्त पछाण सी सच सौदा जिस पास। श्री राग महल पहला धात मिलै फुन धात कौ, सिफती सिफत समाए। लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ, सच मिलै संतोखिया हर जप एकै पाए। भाई रे संत जना की रेण, संत सभा गुर पाईऐ मुक्त पदार्थ तेन। रहाओ ऊचौ थान सुहावना ऊपर महल मुरार, सच करनी दे पाईऐ दर कर महल प्यार। गुरमुख मन समझाईऐ आत्म राम विचार, त्रिविद कर्म कमाईऐ आस अंदेसा होए। क्यों गुर बिन त्रिकुटी छुट सी, सहज मिले सुख होए। निज कार महल पछाणिऐ नदर करे मल धोए। बिन गुर मैल ना उतरै, बिन हर क्यों घर वास। एको शब्द विचारिऐ अवर त्यागै आस। नानक देख दिखाइऐ हौं सत।

लहै दरगाह झूठ खुआर रहाउ आप सुजान ना भुलै सच्चा वड किरसान पहला धरती साधकै सच नाम दे दान नौनिद उपजै नाम एक कर्म पवै निशान गुर कौ जान ना जाने क्या तिस चज अचार अंधलै नाम वसारिया मनमुख अंध गुबार आवन जान ना चुकई

राम नाम जप दिन सरात गुरमुख हर धन जान सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान नित अहनस हर प्रभ सेविया सतगुर दिया नाम कूकर कूड़ कमाई है गुर निंदा पचै पचान परमे पूला दुख कणु जम मार करै खुलहान मनमुख सुख ना पाई है गुरमुख सुख सुभान ऐसै धंध पटाई है सच लिखत परवान हर सज्जन गुर सेवदा गुर करनी

गत गए नाही सहसा सोग। गुरमुख जिस हर मन वसै तिस मेले गुर संयोग। काया कामन जे करी भोगे भोगण हार। इस सियो नेहो ना की जई जो दिसै चलन हार। गुरमुख रवह सुहागणी सो प्रभ सेज पतार। चारे अग्न निवार मर गुरमुख हर जल पाए। अंतर कमल परगासिया अमृत भरिया अगाए। नानक सतगुर मीत कर सच पाव है दरगाह जाए। श्री राग महला पहला हर हर जपो प्यारिया। गुरमत ले हर बोल मन सच कसवटी लाईऐ। तुलिया पूरै तोल कीमत किने ना पाईऐ। रिद मानक मोल अमोल पाई रे हर हीरा गुरमाहे। सत संगत सत गुर पाईऐ अहनस शब्द सलाहे। रहाओ सच वखर धन रास लै पाईऐ गुर परगास। ज्यों अग्न मरै जल पाया त्यों तृष्णा दासन दास। जम जंदार न लगई त्यों भौजल तरै तरास। गुरमुख कूड़ न पावई सच रते सच पाए। साकत सच न पाए।

गुर मिल पाओ जल लंगिया दरगाह पत परवान नानक ते मुख उजले धुन उपजै शब्द निशान श्री राग महला पहला वणज करहो वणजारिहो वखर लिहो संभाल तैसी वस्त वसाही है जैसी निबह नाल अग्गै साहू सुजान है लैसी वस्त संभाल भाई रे राम कहो चित लाए हर जस वखर लै चलो सहो देखै पति आए रहाओ जिन्ना रास ना सच है क्यों किन्ना सुख होए खोटै वणज वणंजै मन तन खोटा होए ठाही पाथे मिर्ग ज्यों दुख घणो नेतरोए खोटे पोतै ना पवै तिन हर गुर दर्स ना होए खोटे जात ना पत है खोट ना सी जस कोए खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए नानक मन समझाई है गुर कै शब्द साला राम नाम रंग रतिया पार ना परम तिना हर जप लाहा अगला निरपव हर मन माह श्री राग महला पहला कर दूजा तन जो

साहिब राव रहया भरपूर रहाओ आपे माछी मछली आपे पानी जाल आपे जाल मणकड़ा

शैतान मत कट जाई, नानक आखै राहे पै चलना, माल धन कित कु संजियाही। श्री राग महला पहला कर चौथा, सोई मौला जिन जग मौलिया, हरिया किया संसारू, आब खाक जिन बंद रहा।

को रहे ना पर ये पाई सोई काजी जिन आप तजिया एक नाम किया आधारू है पी होसी जाए न जासी सच्चा सिर जन हारू पांच वक्त

का तू ही कित कहो साहिब आवह रोहे, जे तू साहिब आवह रोहे तू ओना का तेरे ओहे। असी बोल बगाड़ बगाड़ बोल, तू नदरी अंदर तोलह तोल, जह करनी तह पूरी मत, करनी बाजहो घटे घट। प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए, आप

कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हौ सतगुर सेवी अपना एक मन एक चित पाए सतगुर मन कामना तीर्थ है जिसनो दे बुझाए मन चिंदिया वर पावना जो इच्छा सो फल पाए नाउ त्याई नाउ।

कमावणी सच घट प्रगट होए अंतर जिस कै सच वसै सच्चे सच्ची सोए सच मिले से ना बिछड़ है तिन निज घर वासा होए मेरे राम मैं हर बिन अवर ना कोए सतगुर सच प्रभ निर्मला

आई, पारस परसी है पारस हुई, ज्योति ज्योत सुमाई, जिनको पूर्व लिखिया तिन सत गुर मिलिया आई। मन भुखा भुखा मत करह, मत तू करह पुकार, लख चौरासी जिन सिरी सब सह दे आधार, निरप

से निर्मले हौ सद बनिहार है जास हृदय जिनकै हर वसै इत घट है परगास मन मेरे हर हर निर्मल त्याए तुर मस्तक जिनको लिखिया ते गुरमुख रहे लिव लाए रहाओ हर संत हो देखो नदर कर निकट वसै भरपूर गुरमत जिन्नी पछाणिया से देख है सदा हदूर जिन गुण तिन सद मन वसै औगण वंतिया दूर मनमुख गुण तै बाहरी बिन नावै मरदे झूर जिन शब्द गुरु सुन मन्या तिन मन त्याया हर सोए अन दिन भगती रत्या मन तन निर्मल होए कूड़ा रंग कसुंभ का बिन सजाए दुख रोए जिस अंदर नाम परगास है ओह सदा सदा थिर होए एहो जन्म पदार्थ पाए कै हर नाम ना चेतै लिव लाए पग खिसै रहना नहीं आगे ठौर ना पाए ओह वेला हथ ना आवई अंत गया पछताए जिस नदर करे सो उभरै हर सीती लिव लाए देखा देखी सब करे मनमुख बूझ ना पाए जिन गुरमुख हिरदा सुध है सेव पई तिन थाए हर गुण गाव है हर नित पढ़ है हर गुण गाए समाए नानक तिनकी बाणी सदा सच है जे नाम रहे लिव लाए श्री राग महला तीजा जिन्नी एक मन नाम त्याया गुरमती विचार तिनके मुख सद उजले।

समाए, तिनका जन्म सफल है, जो चल है सतगुरु पाई, कुल उधार है अपना, धन जनेंदी माए, हर हर नाम त्याई है, जिसनो कृपा करे रजाए, जिन्नी गुरमुख नाम त्याया, विचो हो आप गुआई, वे अंदर हो बाहर हो निर्मले।

या हर भगता हर तन रास है, गुरपूछ करह वापार, हर नाम सलाहन सदा सदा, वखर हर नाम आधार, गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया, हर भगता अतुट भंडार, भाई रे इस मन को समझाए, ए मन आलस क्या करह, गुरमुख नाम त्याय रहाओ, हर भगत हर का प्यार है, जे गुरमुख करे विचार, पाखंड भगत ना होवे, दुबदा बोल खुआर, सो जन रलाया ना रले, जिस अंतर विवेक विचार, सो सेवक हर आखी है, जो हर राख है उरतार, मन तन सौंपे आगे तरे, हो मैं विचो मार, तन गुरमुख सो

गुरमुख जप तप संजमी हर कै नाम प्यार। गुरमुख सदा त्याई है एक नाम करतार। नानक नाम त्याई है सबना जिया का आधार। श्री राग महला तीजा मन मुख मोहे व्यापिया। बैराग उदासी ना होए शब्द ना चीने सदा दुख। हर दरगह पत खोए हौ मैं गुरमुख खोई है नाम रते सुख होए। मेरे मन एहन सपूर रही नित आसा। सतगुर सेव मोह परज लै घर ही माहे उदासा रहाउ। गुरमुख कर्म कमावै बिगसै हर बैराग आनंद। अन दिन भगत करे दिन राती हौ मैं मारनी चंद। वड्डै भाग सत संगत पाई।

पाई। लाहा हर हर नाम मिले सहजी नाम समाय। बिन गुर महल ना पाईए नाम ना प्राप्त होय। ऐसा सतगुर लोड़ लहु जिदू पाईए सच सोय। असुर संगारे सुख वसै जो तिस भावे सो होय। जेहा सतगुर कर जानिया तेहो जेहा सुख होय। एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोय। नानक एक जोत दोए मूर्ति शब्द मलावा होय। श्री राग महला तीजा अमृत छोड़ बिख्या लोवाणी। सेवा करह विडाणी अपना धर्म गवावह बूझह नाही। अन दिन दुख विहानी मनमुख अंध ना चेत ही। डूब मोए बिन पानी मन रे सदा भजहो हर सरनाई। गुर का शब्द अंतर वसै ता हर विसर ना जाई। रहाओ एहो शरीर माया का पुतला विच हूं मैं दुष्टि पाई। आवन जाना जम्मन मरना मनमुख पात्र।

फल पाए। जत सत तप पवित शरीरा हर हर मन वसाए। सदा आनंद रहै दिन राती मिल प्रीतम सुख पाए। जो सतगुर की शरणागति हों तिनकै बल जाऊं। दर सच्चै सच्ची वडियाई सहजे सच समाओ। नानक नदरी पाईऐ गुरमुख मेल मलाओ। श्री राग महला तीजा मनमुख कर्म कमावनी। ज्यों दुहागण तन शिंगार सीजै कंत ना आवई। नित नित होए खुआर पिरका महल ना पावई। ना दिसै घर बार भाई रे एक मन नाम त्याए। संता संगत मिल रहै जप राम नाम सुख पाए। रहाउ गुरमुख सदा सुहागणी पिर राखिया उर धार। मिठा बोलहै निव चलहै सेजै रवै पतार। शोभावंती सुहागणी जिन गुर का हित अपार। पूरै भाग सतगुर मिलै जा भागै का उदौ होए। अंतर हो दुख भ्रम कटियै सुख प्राप्त होए। गुर कै भाणै जो चलै दुख ना पावै कोई। गुर के भाणे विच अमृत है सहजे पावै कोई। जिन्ना प्राप्त तिन पिया हों मैं विचों खोए। नानक गुरमुख नाम त्याई है सच मिलावा होए। श्री राग महला तीजा जा फिर जाने अपना। तन मन अगै धरे सुहागणी कर्म कमावंदिया। सेई कर्म करे सहजे साच मिलावड़ा। साच वडाई दे भाई रे गुर बिन भगत ना होए। बिन गुर भगत ना पाईऐ जे लोचै सब कोए। रहाउ लख चौरासी फेर पया कामण दूजै पाए। बिन गुर नींद ना आवई दुखी रहण विहाए। बिन शब्दै पिर ना पाईऐ

आई देख कुटंब मोहे लवाना चलदियां नाल ना जाई सतगुर सेव गुण निदान पाया तिस दी कीम ना पाई हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा अंते होए सखाई अपने मन चित कह कहाई बिन गुर आप ना जाई हर जीव दाता भगत वछल है कर कृपा मन वसाई नानक सोभा सुत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वडियाई श्री राग महला तीजा धन जननी जिन जाया धन पिता प्रधान सतगुर सेव सुख पाया विचों गया गुमान दर सेवन संत जन खड़े पायन गुणी निदान मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए गुर का शब्द मन वसै मन तन निर्मल होए।

गुरमुख बूझे कोई बिन बूझे कर्म कमावणे जन्म पदार्थ खोए रहाउ जिन्नी चाखिया तिन्नी साध पाया बिन चाखे भरम भुलाए अमृत साचा नाम है कहना कछु ना जाए पीवत हूं प्रवान भया पूरे।

कमाए। जात सत संयम नाम है, विण नाम है निर्मल ना होए। पूरे भाग नाम मन वसै, शब्द मिलावा होए। नानक सहजे ही रंग वरतदा।

कार सतगुरु सेव मन निर्मला हौं मैं तजवे कार आप छोड़ जीवत मरे गुर कै शब्द विचार धंदा तावत रह गए लागा साच प्यार सच रते मुख जले तित साचै दरबार सतगुरु पुरख ना मन्यो शब्द ना लगो प्यार इशनान दान जीता करह दूजे भाई खुआर हर जियो अपनी कृपा करे ता लागे नाम प्यार नानक नाम संभाल तू गुर कै हित अपार श्री राग महला तीजा किस हौ सेवी क्या जप करी सतगुर पूछो जाय सतगुर का भाणा मन लई विचों आप गवाय एहा सेवा चाकरी नाम वसै मन आय नामै ही ते सुख पाई है सच्चै शब्द सुहाय।

करा हाव, मन किया इच्छा पूरियां, शब्द रहया भरपूर, तै पाए भगत करह दिन राती, हर जीव वेखै सदा हदूर, सच्चा शब्द सदा मन राता, भ्रम गया शरीरों दूर, निर्मल साहिब पाया साचा गुणी गहीर, जो जागे से उबरे सूते गए मोहाए, सच्चा शब्द ना पछाणियो सुपना गया विहाय, सुनिए घर का पाहुणा ज्यों आया त्यों जाय, मनमुख जन्म बिरथा गया क्या मुँह देसी जाय, सब किसी आपे आप है हम मैं विच कहन ना जाय, गुर कै शब्द पछाणिए दुख हम मैं विचों गवाय, सतगुर सेवन अपना हम तिनकै नागो पाए, नानक दर सच्चै सच्यार है हम तिन बलिहारै जाऊ, श्री राग महला तीजा जे वेला वक्त विचारी है ता कित वेला भगत होए।

अगली मनवा रज्जा सहज सुपाई गुर का शब्द अमृत है जित पीते तिख जाय इहो मन साचा सच रत्ता सच्चे रहया समाय आखण वेखण बोलना शब्दे रहया समाय बाणी वजी चहु जुगी सचो सच सुनाय हम मैं मेरा रह गया सच्चे लया मलाय तिनको महल हदूर है जो सच रहे लिवलाय नदरी नाम ते आई है विन कर्मा पाया ना जाय पूरे भाग सत संगत लह सतगुर भेटै जिसे आय अन दिन नामे रत्या दुख बिखिया विचों जाय नानक शब्द मलावड़ा नामे नाम समाय श्री राग महला तीजा अपना भौ तिन पायुन जिन गुर का शब्द बीचार सत संगति सदा मिल रही सच्चे के गुण सार दुबधा मैल चुकाइयन हर राखिया उर तार।

शब्द सवारन हार रहाव सत्य शब्द मन मोहया प्रभ आपे लय मलाय अनदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाय ज्योति हूं प्रभ जापदा बिन सतगुर बूझ ना पाय जिनको पूर्व लिखिया सतगुर पेत्या तिन आय बिन नावे सब डुमणी दूजे पाए खवाय तिस बिन घड़ी ना जीवंदी दुखी रहन विहाय परम पुलाना अंदोला फिर आवे जाय नदर करे।

मामंदी पापी पचह पचाई सू प्रभ नदर ना आवई मनमुख बूझ ना पाई जिस विखाले सोई वेखै नानक गुरमुख पाई। श्री राग महला तीजा बिन गुर रोग ना तुटई हम मैं पीड़ ना जाए गुर प्रसादी मन वसै नामे रह समाई। गुर शब्दी हर पाई है बिन शब्द भरम भुलाए मन रे निज कर वासा होए राम नाम सलाहे तू फिर आवन जान ना होए रहाउ। हर इको दाता वर्तदा दूजा अवर ना कोई शब्द सलाही मन वसै सहजे ही सुख होए सब नदनी अंदर वेखदा जय पावै तै दे हम मैं।

आनंद सदा सुख है जिन्ना सच नाम आधार गुर शब्दी सच पाया दुख निवारण हार सदा सदा साचे गुण गावे है साचे नाही प्यार कृपा करके अपनी दितोन भगत भंडार मन रे सदा आनंद गुण गाए सच्ची बाणी हर पाई है हर सिउ रह समाई रहाउ सच्ची भगती मन लाल थिया रत्ता सहज सुभाए गुर शब्दी मन मोहया कहना कछु ना जाय जिहवा रत्ती शब्द सच्चे अमृत पीवै रस गुण गाय गुरमुख एहो रंग पाई है जिसनु कृपा करे रजाय संसार एहो संसार है सुतियां रहन विहाय एक अपने भाणे कड लयन आपे लयन मलाय आपे ही आप मन वसिया माया मोह चुकाय आप वडाई दितियन गुरमुख दे बुझाय सबना का दाता एक है भुलिया ले समझाई एक आपे आप खुआयन

मिल प्रीतम दुख कटिया शब्द मलावा होए सच खटना सच रास है सच्ची सच्ची सोए सच मिले से ना बिछड़ है नानक गुरमुख होए श्री राग महला तीजा आपे कारण करता करे सृष्ट देखै आप उपाय सब एको एक वर्तदा अलख ना लखिया जाय आपे प्रभु दयाल है आपे दे बुझाए गुरमति सद मन वसिया सच रहे लिवलाय मन मेरे गुर की मन लहर जाए मन तन शीतल सब थी है नाम वसै मन आई रहाउ जिन कर कारण धारिया सोई सार करे गुर कै शब्द पछाणी है जाय आपे नजर करे ते जन शब्दे सोहणे तित सच्चै दरबार गुरमुख सच्चै शब्द रत्ते आप मेले करतार गुरमति सच सलाहना जिस दा अंत ना पारावार घट घट

होना पाइया गुर बीचार रहाउ मनमुख कंत ना पछाणे तिन क्यों रहन विहाय गर्भ अटियां तृष्णा जल है दुख पाव है दूजे पाए शब्द रतियां सुहागनी तिन विचो हों मैं जाए सदा पिर राव है अपना तिना सुखे सुख विहाय ज्ञान विहूणी पिर मुतिया पिर मना पाया जाय अज्ञान मती अंधेर है बिन पिर देखे भुख ना जाय आव हो मिल हो सहेली हो मैं पिर देहो मलाय पूरे भाग सत गुर मिले पिर पाया सच समाय से सहिया सुहागनी जिनको नदर करे खसम पछाण है अपना तन मन आगे दे घर वर पाया अपना हम मैं दूर करे नानक सोभा वंतियां सुहागनी अन दिन भगत करे श्री राग महला तीजा एक पिर राव है अपना।

सोई। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होय। नानक नाम संभाल तू, जित सेवे है सुख होय। श्री राग महला तीजा, जग होमै मैल दुख पाया। मल लागी दूजे पाए, मल होमै धोती किवै न उतरै। जे सो तीर्थ नहाए, बहु

का निर्मल हुए मन मुख हर हर कर थके मैल ना सकी तो होए रहाओ मन मैल है भगत ना होवे नाम ना पाया जाए मन मुख मैले मैले मोए जासन पत गुआए गुर प्रसादी मन वसे मल हउ मैं जाए समाए ज्यों अंधेरा दीपक बाली है त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाए हम किया हम करहेंगे हम मूर्ख गावार करने वाला विसरिया दूजे पाए प्यार माया जेवड़ दुख नहीं सब भव थके संसार गुरमती सुख पाई है सच नाम उरतार जिसनो मेले सो मिले हम तिस बलिहारै जाऊं ए मन भगती रत्या सच बाणी निज थाउ मन रत्ते जिहवा रत्ती हर गुण सच्चे गाँव नानक नाम ना विसरै सच्चे माहि समाव श्री राग महला चौथा कर पहला।

लाए। हो सतगुर बिट्टो वारिया जिन हर प्रभ दिया दिखाए। रहाओ हुए नमाणी तह पवा पूरे सतगुर पास। निमाणिया गुरमान है गुर सतगुर करे सबास। हौ गुर सालाहे न रजू मैं मेले हर प्रभ पास। सतगुर नो सब को लोचदा जेता जगत सब कोए। बिन भागा दर्शन ना थी भाग हीन बहर होए। जो हर प्रभ भाणा सो थी।

हर करे दया प्रभ अपनी एक निमख ना मनो वसार रहाव गुण गोविंद नित गावी है अवगुण कटन हार बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे विस्थार सहजे सिफती रत्या भवजल उतरे पार तीर्थ वर्त लख संजम।

आस बिन सच्चे सब कूड़ है, अंते हुए बनास रहाउ। साहिब मेरा निर्मला तिस बिन रहन ना जाय, मेरे मन तन भुख अत अगली, कोई आण मलावे माय। चारे कुंडा भालिया सह बिन अवर ना जाय, तिस आगे अरदास कर जो मेले करतार। सतगुरु दाता नाम का पूरा जिस भंडार,

सदा सदा आराधी है। एहा मत वसेख मन तन मिठा तिस लगे जिस मस्तक नानक लेख श्री राग महला पंजवां संत जन हो।

हर जन हर लिव उदरी नानक सद बलिहार श्री राग महला पंजवां कर दूजा गोयल आया गोयली क्या।

आधारे पाप सगली जाही हौ तिनके बलिहार ने जे गुर की पैरी पाही साध संगत मन वसे साच हर का नाऊ सेवड भागी नानका जिन्ना मन एहो पाओ श्री राग महला पंजवां संच हर धन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार जिन तो साज सवारिया हर सिमर होए उदार जप मन नाम एक अपार प्राण मन तन जिनह दिया हृदय का आधार रहाओ काम क्रोध अहंकार माते व्याप्या संसार पौ संत सरणी लाग चरणी मिटै दुख अंधार सत संतोख दया कमावे ए करनी सार आप छोड़ सब हुए रेणा जिस दे प्रभ निरंकार जो दिसै सो सगल तू है पसरिया पासार कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म बीचार श्री राग महला पंजवां दो कृत सो कृत मंदे।

मान अपमान मंदे सो सेवक नाही, तात समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन एहु कीर्त करला, कथन कहन ते मुक्ता।

हर हर नाम संभाल, साधु संगत मन वसै पूरन होए काल रहाउ। गुर समरथ अपार गुर वडभागी दर्शन होए, गुर अगोचर निर्मला गुर जीवड़ अवर ना कोई, गुर करता गुर करनहार गुरमुख।

अपार गुरु उच्चा अगम अपार गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार जितड़े फल मन बांची है तितड़े सतगुर पास

कीमत किन ना पाइया सब सुन सुन आख सोए पीर पै कामर फालक साधक सुहदे और शहीद सेख मसायक काजी मुल्ला दर दरवेश रसीद बरकत तिन कहो अगली पढ़दे रहन दरूद पुछ ना साजे पुछ ना काहे

तेरे जुगह जुगह पंडार महला पहला सबे कंत मेलियां सगलियां करह श्रृंगार गणत गणावने।

तुद पावन सुहागणी अपनी कृपा लह सवार रहाओ गुर शब्दी शिंगारियां तन मन पिर कै पास दुए कर जोड़ खड़ी तकै सच कह अरदास लाल रत्ती सच पै वसी पाए।

आर दीपक शब्द विगासिया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार शोभा सुरत सुहावनी साचे प्रेम अपार बिन पेर पुरख ना जानी साचे गुर कह हित प्यार निस अंधारी सुतिए क्यों पिर बिन रैन विहाय अंक जलो तन जालियो मन धन जल बल जाय जा धन कंत ना राविया ता बिरथा जो बन जाय सेजै कंत मेहलड़ी सूती बूझ ना पाए हौ सुती पिर जागना किस को पूछो जाय सतगुर मेली पै वसी

शब्द पछाणिए साच रते गुरवाक तित तन मैल ना लगई सच कर जिस ओताक नदर करे सच पाई है।

रहाउ। सब जग बांधु काल को बिन गुर काल अपार, सच रते से उबरे दुबदहा छोड़ विकार। हौ किन कै बलिहार न दर सचै सचियार, सी चाने ज्यो पंखियां जाली बदक हाथ। गुर राखे से उबरे होर फाथे चोगे साथ, बिन नावे चुन सुटी है कोई ना संगी साथ। सचो सच्चा आखी है सच्चे सच्चा थान, जिन्नी सच्चा मन्या तिन मन सच ध्यान। मन मुख सूचे जानी है गुरमुख जिन्ना ज्ञान, सतगुर अगे अरदास कर साजन दे मलाए। साजन मिले सुख पाया जमदूत मोए बिख खाए, ना मैं अंदर हों वसा नाओ वसै मन आए। बाज गुरु गुबार है बिन शब्द बूझ ना पाए, गुरमति परगास हुई

सोहु प्रभ जानिए साचो साचे नाई सा तन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग महली महल बुलाइए सो पिर रावे रंग सच सुहागन सा भली।

राजन जाने अपना दर कर ठाक ना होई नानके को रव रहया दूजा अवर ना कोई श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानिए निर्मल दे शरीर निर्मल साचो मन वसे सो जाने अब पीर सहजे ते सुख अगलो ना लागे जम तीर पाई रे मैल नाही निर्मल जल नाए निर्मल साचा एक तू होर मैल भरी सब जाए रहाओ हर का मंदर सोना किया करन हार राव सस दीप अनूप जोत त्रिभवन जोत अपार हाट पटन गढ़।

जगत सब जानिए जे मन राखै ठाई ऐसा सतगुर जे मिले ता सहजे लय मलाई कस कस वट्टी लाइए परखे हित चित लाए खोटे ठोर ना पाइनी खरे खजाने पाए आस अंदेसा दूर कर इउं मल जाए समाए सुख को मांगे सब को दुख न मांगे कोई सुख है को दुख अगला मन मुख बूझ ना होए सुख दुख सम कर जानिए शब्द भेद सुख होई।

अतुल ना तोलिए कथन ना पाया जाए व्यापारी बन जा रिया आए वजो लखाए कार कमाव है सच की लाहा मिले रजाए पूंजी साची गुर मिले ना तिस तिल ना तमाए गुरमुख तोल तोलाए सी सच तराजी तोल आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल आप तलाए तोल सी पूरे पूरा तोल कथन कहण ना छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार काया सोच ना पाई है बिन हर भगत प्यार नानक नाम ना विसरे मेले गुर करतार श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे मिले पाईए रतन बीचार मन दी जय गुर अपने पाईए सर्ब प्यार मुक्त पदार्थ पाईए अवगण मेटन हार पाई रे गुर बिन ज्ञान ना होए पूछो हो ब्रह्मे नारद वेद ब्यास कोई रहाओ ज्ञान ध्यान तुन जानिए अकथ कहावे सोई सफलो बिरख हरियावला शाम कनेरी होए लाल जवे हरमान की गुर भंडारे सोए गुर भंडारे पाईए निर्मल नाम प्यार साचो वखर संचिए पूरे कर्म अपार सुख दाता दुख मेटनो सतगुर असुर संगार भवजल बिखमंड रावण ना कंधी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिसवान्य मलार सतगुर पै काबो हिथा नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरे दुख लागे सुख जाए जिहवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए घट बिरसे दुख अगलो जम पकड़े पछताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत न साथ बिन नावे तन बाद है भूलो मार गयाथ साचो साहिब सेवी है गुरमुख अकथो काथ आवे जाए पवाई है पय किरत कमाए पूर्व लिखिया क्यों मे

पर रव रहया बख्शे भगत भंडार रहाव। रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी मछली नीर ज्यो अधिको त्यों सुख घणो मन तन शांत शरीर। बिन जल घड़ी ना जीवै प्रभ जाने अब पीर। रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चात्रक में सर पर थल हरियावली एक बूंद ना पवई के। कर्म मिले सो पाई है

आपे खवै दुध कौ खपण ना दे आपे मेल वशुन्या सच वडे आई दे रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर मन मुख सो जी ना पवे गुरमुख सदा हजूर।

गुरमत होए ता पाईऐ सच मिलै सुख होए सच्चा नेहो ना टुटै जे सतगुर भेटै सोए ज्ञान पदार्थ पाईऐ त्रिभवन सोजी होए निर्मल नाम ना विसरै।

आय मन मुख सोजी ना पवै बिछड़ चोटा खाय नानक दर कर एक है अवर ना दूजी जाय श्री राग महला पहला मन मुख भुलै भलाई।

माया परम भुलाई परम भुली दोहागनी ना फिर अंक समाय रहाओ भूली फिरै दसंतरी भूली ग्रह तज जाय भूली डूंगर थल चढ़ै पर मैं मन डोलाय तुरहु विछुनी क्यों मिलै गर्भ मुठी बिल लाय बिछड़िया गुरमेल सी हर अस नाम प्यार साच सहज सोभा कणी हर गुण नाम आधार ज्यों पावे त्यों रख तू मैं तुझ बिन कवन पतार अखर पढ़ पढ़ भुलिए भेखी बहुत अभमान तीरथ नाता क्या करे मन मह मैल गुमान गुर बिन किन समझाई है मन राजा सुनतान प्रेम पदार्थ पाई है गुरमुख तत विचार सा तन आप गवाया।

वाचा करी मन निर्मल सुख होए गुर का शब्द मन वसिया हूं मैं विचो खोए नाम पदार्थ पाया लाभ सदा मन होए कर्म मिले ता पाईए आप ना लया जाए गुर की चरनी लग रहो विचो आप गवाए सच्चे सेती।

मैं तुझ बिन अवर न पावई, तू पावे है सुख होए रहाउ। नाम सलाही रंग सिउ, गुर कै शब्द संतोख, जो दिसै सो चलसी।

तड़ी गुर बिन बूझ ना होए नाम वडाई जे मिले सच रपै पत होए जो तुद पावे से भले खोटा खरा ना कोई गुर सरनाई छुट्टी है मनमुख खोटी रास अष्ट धात पातशाह की तड़िए शब्द विगास आपे परखे पारखू पवे खजाने रास तेरी कीमत ना पवे सब डिठी ठोक बजाए कहने हाथ ना लगई सच टिके पत पाए गुरमत तू सालाहना होर कीमत कहन ना जाए जित तन नाम ना पावई तित

मन मुख जाने अपनी तियां पूत संजोग नारी देख भगासी है नाले हरख सो सोग गुरमुख शब्द रंगावले अहनस हर रस भोग चित चल वित जावणु साकत डोल डोलाई बाहर ढूंढ विगुची है कर्म है वस्त सुथाई मन मुख होमे करमुसी गुरमुख पल्ले पाई साकत निर्गुण आरिया अपना मूल पछाण रखत बिंद का एहो तनु अग्नि पास पिराण पवन कै वस देवरी मस्तक सच निशान बहुता जीवन मंगी है मुआ ना लोड़े कोई सुख जीवन तिस आखी है जिस गुरमुख वस्या सोई नाम मिहुणे क्या गणी जिस हर गुर दर्श ना होए ज्यों सुपने निस भुली है जब लग निंदरा होए इउं सरपन कै वस जियड़ा अंतर हों मैं दोए गुरमत होए विचारी है सुपना एहो जग लोए अगन मरे जल पाई है जो बारक दूध माए बिन जल कमल सोना थी है बिन जल मीन मराए नानक गुरमुख हर रास में।

पूरा सतगुर रस मिलै गुर तारे हर नाम रहाओ। चला चला जे करी जाना चलन हार, जो आया सो चल सी अमर सो गुर करतार। पी सच्चा सालाहना सच्चे थान प्यार, दर कर महला सोहने पक्के कोट हजार। हस्ती कोड़े पाखरे लश्कर लख अपार, किस ही नाल ना चलिया खप खप मुए असार। सोयना

या कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरमुख कृपा करे भगत की जय बिन गुर भगत ना होए आपे आप मलाए बूझे ता निर्मल होवे।

मोहे लुभाणा चलदियां नाल ना जाई सतगुर सेव गुण निदान पाया किसकी कीम ना पाई प्रभ

बिन सतगुर को मग ना जाने अंधे ठौर ना काई। हर सुख दाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई। पेई अड़ै जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया। अन दिन भगत करह दिन राती हमै मोच काया। जिस स्यो राता तै सो हुए सच्चे सच समाया। आपे नदर करे पाहु लाई गुर शब्दी बीचार। सतगुर सेवे सहज उपजे हमै तृष्णा मार। हर गुण दाता सद मन वसै सच रखिया उरतार। प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाई। नाम निधान हर मन वसै हमै दुख सब जाई। सतगुर शब्द सुनाया हम सद बलिहारै जाऊं। अपने मन चित कह कहाई बिन गुरे आप ना जाई। हर जियो भगत वशल सुख दाता कर कृपा मन वसाई। नानक सोभा।

जे सतगुर सेवन से उभरे हर से तेल बनाए मन रे गुरमुख नाम त्याए तुर पूर्व करता लिखिया इन्ना गुरमुख नाम समाए रहाओ बिन सतगुर प्रतीत न आवे नाम न ना लागू पाओ सुपने सुख न पावे दुख मह सवै समाए जे हर हर की कै बहुत लोची है किरत न मेटिया जाए हर का भाणा भगती मन्या से भगत पए दर थाए गुर शब्द दड़ावै रंग स्यों बिन कृपा लया ना जाए जे सौ अमृत नीरी है पी बिख फल लागै ताए से जन सच्चे निर्मले जिन सतगुर नाल प्यार सतगुर का भाणा कमावंदे बिख होमै तज बेकार मन हठ कितै उपाए ना छूटी है सिमरत शास्त्र सुध हो जाए मिल संगत साधु उभरे गुर का शब्द कमाए हर का नाम निदान है।

होई। गुर प्रसादी पाई है कर्म प्राप्त होई। श्री राग महला तीजा पंखी बिरख सुहावड़ा सच चुगै गुर पाई।

गुर कै पाणे जे चल है ता अन दिन राचे है हर नाई रहाउ। पंखी बिरख सुहावड़े उड़ है चहो दिस जाहे, जेता उड़ है दुख घणे नित दाज है तै बिल लाहे। बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे, गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचे सहज सुपाए। साखा तीन नवारिया एक शब्द लिव लाए, अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना शाओ, तिन्ना पास ना बैसिए ओना घर ना ग्राओ। कटिए तै नित जालिए ओना शब्द ना नाओ, हुक्मे कर्म कमावणे पये किरत फराओ। हुक्मे दर्शन देखना जह भी जह तह जाओ, हुक्मे हर हर मन वसै हुक्मे सच समाओ। हुक्म ना जान है बपड़े भूले फिर है गवार मन।

पाई, दैत पुत कर्म धर्म किस संजम ना पड़े, दूजा भाव ना जाने, सतगुर भेटे निर्मल हुआ, अन दिन नाम बखाने, एको पढ़े एको ना बूझे, दूजा अवर ना जाने, खट दर्शन जोगी सन्यासी, बिन गुर परम पलाए।

पंडित पर पर वाद बखान है बिन गुर परम पलाय लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाई जां नाउ चेतै तां गत पाई जां सतगुर मेल मलाय सत संगत मह नाम हर उपजै जां सतगुर मिलै सुपाई मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाई सत बलिहारी गुर अपने बिटो जे हर सेती चित लाई सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर सेती रंग राता प्रभ निकट बसै सबना घट अंतर।

बिन गुर पाया न जाय, पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके, भेखी परम पलाय, गुर भेटे सहज पाया, अपनी कृपा करे रजाय। भाई रे गुर बिन सहज न होए, शब्द ही ते सहज उपजे, हर पाया सच सोए रहाओ, सहजे गाव्या थाई पवे, बिन सहजे कथनी बाद, सहजे ही भगत उपजे, सहज प्यार बैराग, सहजे ही ते सुख शांत होए, बिन सहजे जीवन बाद, सहज सलाही सदा सदा, सहज समाद लगाई, सहजे ही गुण उचरै।

त्रै गुण भरम भलाय, पढ़िया गुणिया क्या कथिया, जा मुंडो हो कुथा जाय। चौथे पद में सहज है,

सहज मलाएसी शब्द मलावा हुई। बिन सहज सब अंध है माया मोह गुबार, सहज ही सूझी पई सच्चा शब्द अपार। आपे बख्श मलायन पूरे गुर करतार, सहजे अधिष्ट पछाणिय निर

का शब्द जीव तमरे गुरमुख पव जल तरना वड्डा भाग नाउ पाईए गुरमत शब्द सुहाई आपे मन वसिया प्रभु करता सहजी रहिया समाई इक ना मनमुख शब्द ना पावे बंधन बंद पवाया

गुण गाव है सद निर्मल सहजे नाम समाते गुरमुख अमृत बाणी बोल है सब आत्म राम पछाणी एको सेवन एक अराध है गुरमुख अकथ कहानी सच्चा साहिब सेवी है गुरमुख वसै मन आए सदा रंग राते सच स्यों।

नानक शब्द समाय श्री राग महला तीजा सतगुर सेवे मन निर्मला भये पवित्र शरीर मन आनंद सदा सुख पाया भेटिया गहर गंभीर सच्ची संगत बैसन।

सच्चा शब्द पाति उपजय सच्चे सच्चा नाम जिन्नी हऊ मैं मार पछाणिया हऊ तिन बलिहार जाऊं मन मुख सच ना जा।

चलता देख के भज पए सतगुर सरना। सतगुर सच दड़ाया सदा सच संयम रहना। सतगुर सच्चा है बोहिथा शब्दे पव जल तरना। लख चौरासी फिर दे रहे बिन सतगुर मुक्त ना होई। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके दूजे पाए पथ खोई। सतगुर शब्द सुनाया बिन सच्चे अवर ना कोई। जो सच्चे लाए से सच लगे नित सच्ची कार करन। तिन्ना निज कर वासा पाया सच्चे महल रहन। नानक भगत सुखिये सदा सच्चे नाम रचन। श्री राग महला पंजवां। जाको मुश्कल अत बने टोई कोई न दे लागू होए दुश्मना। साक पे भज खले सबो भजे आसरा चुके सब असराऊ। केते आवे उस पार ब्रह्म।

बला नांग भूख की पीर दमड़ा पल है ना पवे ना को देवे तीर स्वार्थ स्वाहो ना को करे ना किछ होवे काज कित आवे उस पार ब्रह्म ताने चल होवे राज जां को चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग ग्रिस्त कटम पलिटिया कदे

ब्रह्म तन मन शीतल होय काम क्रोध मोहे वस किया किरपन लोभ प्यार चारे किलविख उन अग किए हुआ असुर संगार पोथी गीत कवित किश कदे न करन धरिया चित आवै उस पार ब्रह्म ता निमख सिमरत तरिया सास्त सिमरत बेद चार मोखागर बिचरे तपे तपी सर जोगिया तीरथ गमन करे खट कर्मा ते दुगणे पूजा करता नाए रंग ना लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए राज मिलख सिखदारियां रस भोगण बिसथार बाग सुहावे सोहणे चलै हुक्म अफार रंग तमाशे बहु विधि चाए लग रहिया चेतना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया बहुत तनाड अचारवंत सोभा निर्मल रीत मात पिता सुत पाइया साजन संग परीत लश्कर तरकस बंद बंद जियो जियो सगली कीत चेतना आयो पार ब्रह्म ता खड़र सातल दीत काया रोग ना छिदर किस ना किस काड़ा सोग मृत ना आवी चित तिस अहनस भोग भोग सब किश कीतो ने अपना जिये ना संक धरिया चेतना आयो पार ब्रह्म जम कंकर वस परिया किरपा करे जिस पार ब्रह्म होवै साधु संग ज्यो ज्यो ओह वधाई है त्यों त्यों हर स्यों रंग दोहां सिरियां का खसम आप।

घर पंजवा जानो नहीं पावै कवन बाता मन खोज मार्ग रहाव ध्यानी ध्यान लाव है ज्ञानी ज्ञान कमाव है प्रभ की नहीं जाता भगवती रहत जुगता जोगी कहत मुक्ता तपसी तपहराता मोनी मोन तारी सन्यासी ब्रह्मचारी उदासी उदास राता भगत नवे प्रकारा पंडित वेद पुकारा गृहस्थी गृहस्थ तरमाता एक शब्दी बहुरूप अवतूता कापड़ी कौते जागूता एक तीर्थ नाता निरहार वर्ती अपरसा एक लूक ना देवह दरसा एक मन ही ज्ञाता काटना कि नहीं कहाया सब कहते हैं पाया जिस मेले सो भगता सगल उकत उपावा त्यागी सरन पावा नानक गुर चरण पराता एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला कर तीजा जोगी अंदर जोगिया तू भोगी अंदर भोगिया तेरा अंत ना पाया सुरग मच पाया।

सिरे सिर तम दे लाया वेख की ताया अपना कर कुदरत पासा ढाल जियो प्रगट पहार है जापदा सब नावै नो प्रतापदा सतगुर बाज ना पायो सब मोही माया जाल जियो सतगुर कहो बल जाई है जित मिले परम गत पाई है सुर नार मुन जन लोच दे सो सतगुर दिया बुझाए जियो सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखानी है एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो एहो जगत परम पलाया आप हूं तुद खवाया प्रताप लगा दोहागणी भाग जिन्ना के नाए जियो दोहागणी क्या निशानिया खसम हो खुथियां फिर है निमानिया मैले वेस तिन्ना कामणी दुखी रहन विहाए जियो सुहागणी क्या कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया नदर करे कै अपनी आपे लए मलाए जियो हुक्म जिन्ना नू मनाया तिने अंतर शब्द वसाया सहिया से सुहागणी जिन सह नाल प्यार जियो जिन्ना पाणी का रासे आया तिन विचों परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सब सह लए मलाए जियो सतगुर मिले फल पाया जिन विचों अहंकरण चुकाया दुर्मत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय समाणिया सुख सेवा अंदर रखे है अपनी नदर करहे निस्तार जियो सतगुर मिलिया जानिए जित मिले नाम बखानी है सतगुर बाज ना पायो सब थकी कर्म कमाए जियो हौ सतगुर बिटो कुमाया जिन भ्रम भुला मार्ग पाया नदर करे जे अपनी आपे लए रलाए जियो तू सबना माहे समाया तिन करतै आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जा को जोत धरी करतार जियो आपे खसम निवाजिया जियो पिंड दे साजिया अपने सेवक की पैज रखिया दोए कर मस्तक धार जियो सब

मेरा गुण अवगन ना बिचारिया तब अपना बिरद संवारिया कंठ लाए कह रखियोन लगे ना तत्ती वाउ जियो मैं मन तन प्रभु ते आया जिए इच्छे अड़ा फल पाया सहा पातशाह सिर कसम तू जप नानक जीव नाऊ जियो तुदे आपे आप उपाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सचो सच वर्तदा जिस भावै तिसै बुझाई जियो गुर प्रसादी पाया तिथै माया मोह चकाया कृपा करके अपनी आपे लए समाए जियो गोपी नै गोवालिया तुदे आपे गोहे उठा लिया हुक्मी भांडे साजिया तू आपे पन सवार जियो जिन सतगुर स्यों चित लाया तिनी दूजा पाहु चुकाया निर्मल जोत तिन प्राणिया ओए चले जन्म सवार जियो तेरिया सदा सदा चंगे आईया मैं रात देह बड़े आईया अन मंगिया दान देवना कहो नानक सच संभाल जियो श्री राग महला पंजवा पै पाए मनाई सोए जियो सतगुर पुरख मलाया तिस जे वड़े अवन ना कोए जियो रहाओ गुसाई मेहंडा इठड़ा अम अबे थाम मिठड़ा पैन भाई सब सजना तुद जेहा ना ही कोए जियो तेरा हुक्मे सामने आया मैं सत का हल जो आया नाऊ बीजन लगा आस कर हर बोहल बख्श जमाए जियो हाँ गुर मिले एक पछाण दा दुईया कागल चेतना जान दा हर इक तै कार लायोन ज्यो भावे तिवें नभाए जियो तुसी भोगे हो पुंचो हो भाई हो गुर दी बाण कवाए पैनाइयो हों हो आ माहर पिंड दा बाने आंदे पंज शरीक जियो हों आया सामे ते हंडिया पंज किरसान मुजेरे मेहंदिया कन कोई कड ना हंगई नानक बुट्टा को गगराऊं जियो हों वारी घुमा जामदा इक साहा तुद त्याए दा उजड़ थेहो वसायो हों तुद विटहो कुर्बान जियो हर इत्थै नित त्याए दा मन चिंदी सो फल पाए दा सबे काज सवारियन लाहियन मन की भुख जियो मैं छड़िया सबो तंदड़ा गुसाई सेवी सचड़ा नौ निद नाम निदान हर मैं पल्ले बद्दा शिक जियो मैं सुखी हूँ सुख पाया गुरे अंतर शब्द वसाया सतगुर पुरख विखा लिया मस्तक तर कै हाथ जियो मैं बद्दी सच धर्म साल है गुरसिखा लहंदा पाल कै पैर धुआं पखा फेरदा तिस निव निव लगा पाए जियो सुन गल्ला गुर पह आया नाम दान इशनान दड़ाया सब मुक्त हुआ सै सारड़ा नानक सच्ची बेड़ी चाड़ जियो सब सिष्ट सेवे दिन रात जियो दे कान सुन हो अरदास जियो फूक बजाए सब डिठिया तुसे आपे नयन छड़ाए जियो हुण हुक्म हुआ मेहरवान दा पै कोई न किसै रियान दा सब सुखाली बुठिया एहो हुआ हले मीराज जियो।

आया किरत कमाया करनी कार कराई राम नाम बिन मुक्त ना होई बूढ़ी दूजै हेत कहो नानक प्राणी पहले पहरे छूटेंगा हर चेत दूजै पहरे रहन कै बन जारिया मित्रा पर जोबन मैं मत अहमिस काम व्यापिया बन जारिया मित्रा अंदुले नाम ना चेत राम नाम घट अंतर नाही होर जाने रस कस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संयम नाही जन्म मर हो गए झूठे तीर्थ वरत सुच संयम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा दुबधा व्यापै दूजा तीजै पहरे रहन कै बन जारिया मित्रा सरहंस उलथड़े आए जोबन घटै जरुआ जिनह बन जारिया मित्रा आम घटै दिन जाए अंतकाल पछतासी अंबले जां जम पकड़ चलाया सब कुछ अपना कर कर राखिया खिनमह भया पराया बुद्ध वसरजी गई सियाणप कर अवगुण पछताए कहो नानक प्राणी तीजै पहरै प्रभ चित हो लिवलाए चौथे पहरे रहन कै बन जारिया मित्रा बिरद भया तन खीन अखी अंध ना दिसई बन जारिया मित्रा कन्नी सुने ना वैन अखी अंध जीव रस नाही रहे परा कौ ताणा गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे मन मुख आवन जाना खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै आए चले क्या मान कहो नानक प्राणी चौथे पहरे गुरमुख शब्द पछ

या मित्रा हर पाया उदर मंजार हर त्यावै हर उचरै बनजारिया मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपे आराधे विच अग्नि हर जप जीवया बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थीवया जिसकी वस्त तिस चेतो प्राणी कर हृदय गुरमुख विचार कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिय कृपा तार दूजे पहरे रहण कै बन जारिया मित्रा मन लागा दूजे पाए मेरा मेरा कर पालिए बन जारिया मित्रा लै मात पिता गल लाए लावे मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवाए जो देवे तिसे ना जाने मूड़ा दित्ते नो लपटाए कोई गुरमुख हो ऐसो करे विचार हर त्यावे मन लिव लाए कहो नानक दूजे पहरे प्राणी तिस काल ना कबहू खाए तीजे पहरे रहन कै बन जारिया मित्रा मन लगा आल जंजाल धन चितवै धन संचवै बन जारिया मित्रा हर नामा हर ना संभाल हर नामा हर हर कदे ना संभालै जे होवै अंत सखाई एहो धन संपै माया झूठी अंत छोड़ चलिया पछताई जिसनो कृपा करे गुरमेले सो हर हर नाम संभाल कहो नानक तीजै पहरे प्राणी जे जाए मिले हर नाल चौथे पहरे रहण कै बन जारिया मित्रा हर चलन वेला आंदी कर सेव हो पूरा सतगुरु बन जारिया मित्रा सब चली रहण विहांदी हर सेव हो खिन खिन ढिल मूल ना करे हो जित अस्थिर जुग जुग होवो हर सीती सदमान हुरलिया जन्म मरण दुख खोवो गुरु सतगुरु स्वामी भेद ना जानो जित मिल हर भगत सुखांदी कहो नानक प्राणी चौथे पहरे सफलियो रहण भगतां दी श्री राग महला पंजवां पहले पहरे रहण कै बन जारिया मित्रा धर पाए ता उदरै माही दसी मासी मानस किया बन जारिया मित्रा कर मोहलत कर्म कमाहे मोहलत कर दीनी कर्म कमाणे जैसा लिखत तुर पाया मात पिता भाई सुत बनता तिन भीतर प्रभु संजोया कर्म सकर्म कराए आपे इस जनते वस किछ नाही कहो नानक प्राणी पहले पहरे धर पाए ता उदरे माहे दूजे पहरे रहण कै बन जारिया मित्रा पर जवानी लहरी दे बुरा भला ना पछाणी बन जारिया मित्रा मन मत्ता अहमेव बुरा भला ना पछाणे प्राणी आगे पंथ करारा पूरा सतगुर कबहू ना सेवया सिर ठाडी जम जंदारा धर्म राय जब पकरस बबरे तब क्या जवाब करे कहो नानक दूजे पहरे प्राणी पर जोबन लहरी दे तीजे पहरे रहण कै बन जारिया मित्रा एक संचय अंध अज्ञान पुत्र कलत्र मोहे लपटिया बन जारिया मित्रा अंतर लहर लुभान अंतर लहर लुभान प्राणी सो प्रभ चित न आवै साध संगत स्यों संग न किया बहु जोनी दुख पावै सिरजनहार वसारिया स्वामी एक निमख न लगो ध्यान कहो नानक प्राणी तीजे पहरे बिक संचे अंध अज्ञान चौथे पहरे रहण कै बन जारिया मित्रा दिन नेड़े आया सोई गुरमुख नाम संभाल तू बन जारिया मित्रा तेरा दरगाह बेली होए गुरमुख नाम संभाल प्राणी अंते हुए सखाई एहो मोह माया तेरे संग ना चाले झूठी प्रीत लगाई सगली रहण गुदरी अंधियारी सेव सतगुर चा

आया सोई लिखिया आया गोविंद का बनजारिया मित्रा उठ चली कमाना साथ एक रत्ती बिनवना देवनी बनजारिया मित्रा ओनी तकड़े पाए हाथ लिखिया आया पकड़ चलाया मन मुख सदा दुहेले जिन्नी पूरा सतगुर सेवया से दरगाह सदा सुहेले कर्म धरती शरीर जोग अंतर जो बो ऐसो खात कहो नानक भगत सोह दरबारी मन मुख सदा पवात श्री राग महला चौथा घर दूजा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मुंद यानी पेयड़ क्यों कर हर दर्शन पिखे हर हर अपनी कृपा करे गुरमुख सहोरड़ कम सिखे सहोरड़ कम सिखे गुरमुख हर हर सदा ते आए सहिया विच फिरे सुहेली हर दरगाह बहां लुड़ाए लेखा धर्म राय की बाकी जप हर हर नाम किरखे मुंद यानी पेयड़ गुरमुख हर दर्शन दिखे व्याह हुआ मेरे बाबला गुरमुखे हर पाया अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान प्रचंड बलाया बलिया गुर ज्ञान अंधेरा पिनसिया हर रतन पदार्थ लादा हौ मैं रोग गया दुख लाथा आप आपे गुरमत खादा अकाल मूर्त वर पाया अबनासी ना कदे मरे ना जाया व्याह हुआ मेरे बाबला गुरमुखे हर पाया हर सत सते मेरे बाबला हर जन मिल जन सुहंदी एव कड़े हर जप सुहेली विच सहुरड़ खरी सोहंदी सहुरड़ विच खरी सोहंदी जिन पेव कड़े नाम संभालिया सब सफल्यो जन्म तिन्ना दा गुरमुख जिन्ना मन जिन पासा ढालिया हर संत जना मिल कार्ज सोया वर पाया पुरखे आनंदी हर सत सत मेरे बाबला हर जन मिल जन सोहंदी हर प्रभ मेरे बाबला हर देव हो दान मैं दाजो हर कपड़ो हर सोभा देव हो जित सवरै मेरा काजो हर हर भगती काज सुहेला गुर सतगुर दान दवाया खंड वर पंड हर सोभा होई एहो दान नार लै रलाया होर मनमुख दाज जे रख दखल है सो कूड़ अहंकार कच पाजो हर प्रभ मेरे बाबला हर देव हो दान मैं दाजो हर राम राम मेरे बाबला फिर मेल तन वेल वदंदी हर जुगा जुगो जुग जुगा जुगो सद पीढ़ी गुरु चलंदी जुग जुग पीढ़ी चले सतगुर की जिन्नी गुरमुख नाम ते आया हर पुरख ना कब ही बिनसै जावे नित देवे चढ़े सो आया नानक संत संत हर एको जप हर हर नाम सोहंदी हर राम राम मेरे बाबला फिर मिल तन वेल वदंदी श्री राग महला पंजवा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन प्यारिया जियो मित्रा गोविंद नाम संभाले मन प्यारिया जी मित्रा हर निबह तेरे नाले संग सहाई हर नाम ते आई बिरथा कोई ना जाय मन चिंदे सी फल पावह चरण कमल चित लाए जल थर पूर रहया बनवारी घट घट नदर निहाली नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग भ्रम जाले मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारी मन प्यारिया जीओ मित्रा दिख सागर संसारी चरण कमल कर बोहित करते सहसा दुख न व्यापे गुरपूरा भेटै वडभागी आठ पहर प्रभ जापे आदि जुगादी सेवक स्वामी भगता नाम आधारी नानक सिख दे मन प्रीतम
बिन हारे झूठ पसारे मन प्यारिया जियो मित्रा हर लदे खेप सवली मन प्यारिया जियो मित्रा हर दर निहचल मल्ली हर दर सेवे अलख अपेवे निहचल आसन पाया तह जन्म ना मरन ना आवन जाना संसार दुख मटाया चित्र गुप्त का कागद फारिया जमदूता कछु ना चली नानक सिख दे मन प्रीतम हर लगे खेप सवली मन प्यारिया जियो मित्रा कर संतां संग निवासो मन प्यारिया जियो मित्रा हर नाम जपत परगासो।

धीरज क्यों करै, नाम बिहूना तन मनहीना, जल बिन मछली ज्यों मरै, मिल मेरे प्यारे प्राण आधारी, गुण साध संग मिल गावे, नानक के स्वामी तार अनग्रहो, मन तन अंक समावे, दखना सोहंदड़ो हबठाए, कोई ना दिसै दूजड़ो, खुलड़े कपाट, नानक सतगुर भेख ते संत, तेरे बचन अनूप अपार, संतन आधार, बाणी बिचारिय जियो, सिमरत सास ग्रास

हरि मन वांछत फल देत है स्वामी जी की बिरथा सारी नाथ के नाते सब कै साथी जप जुए जन्म ना हारी है नानक की बेनंती प्रभ पह कृपा कर पव जल तारी है दखना धूड़ी मजन साधखे साई थिए कृपाल लद्दे हब्बे थोकड़े नानक हर तन माल संत सुंदर स्वामी ताम भगत है विश्राम आसा लग जीव ते जियो मन तने गलतान सिमरत प्रभ नाम हर अमृत पीवते जियो अमृत हर पीवते सदा थिर थीवते बिकै बन फीका जानिया भये कृपाल गोपाल प्रभ मेरे साध संगत निध मानिया सर्व सो सुख आनंद कन प्यारी हर रतन मन अंतर सीव।

आप मूर्यो जस नानक आप सुनियो हे संत प्रेम ठगौरी पाए जाए गोविंद मन मोहया जियो संतन कै प्रसाद अगाद कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोया दोख सब जोया भगत लखियन कर वस पए मन सर्ब सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच पुजाया बहुड़ न माया होया कर गहलीने नानक प्रभ प्यारी संसार सागर ने

हरि। सतगुर दयाल कृपाल भेटत हरे, काम क्रोध लोभ मारिया कथन न जाए अकथ स्वामी, सदकै जाए नानक वारिया। श्री राग महला चौथा वणजारा, एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद। हर हर उत्तम नाम है जिन सिरिया सब कोई जियो, हर जी सबे प्रतपालदा घट घट रमैया सोए। सो हर सदा त्याई है तिस बिन अवर ना कोए, जो मोहे माया चित लाइंदे से छोड़ चले दुख रोए। जन नानक नाम त्याया हर अंत सखाई होए, मैं हर बिन अवर ना कोए। हर गुर सरनाई पाईऐ बणजारिया मित्रा, वड भाग प्राप्त होए रहाओ। संत जना मिन पाईया हर किने न पाया नाव, विच हौं मैं कर्म कमावंदे ज्यों वेसवा पुत निनाव। पिता जात तां होई है गुर तुठा करे पसाओ, वड भागी गुर पाया हर एलस लगा पाओ। जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीरत कर्म कमाओ, मन हर हर लगा चाओ। गुर पूरे नाम दरड़ाया हर मिलिया हर प्रभ नाओ रहाओ। जब लग जोबन सास है तब लग नाम त्याए, चल दिया नाल हर चल सी हर अंते लए छाए। हों बलिहारी तिनको जिन हर मन उठायाए, जिन्नी हर हर नाम ना चेत्यो से अंत गए पछताए। तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम त्याए, मन हर हर प्रीत लगाए। वड भागी गुर पाया गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हर आपे आप उपाएंदा हर आपे देवैली, हर आपे परम भलाएंदा हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है से विरले के ई के, हौ बलिहारी तिनको जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया मन हर हर गुठड़ाए, मन हर हर जपन करे। हर गुर सरनाई भज पौ जिंदू, सब किल विख दुख पर हरे रहाओ। घट घट रमैया मन वसै क्यों पाईऐ कित भत, गुरपूरा सतगुर भेटीऐ हर आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है हर नामै ते गत मत, मैं हर हर नाम वसाऊ है हर नामे ही जत पत। जन नानक नाम त्याया रंग रतड़ा हर रंग रत, हर त्याऊ हो हर प्रभ सत। गुर बचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ। जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास, सेवक पाए वणजारिया मित्रा गुर हर हर नाम परगास। तन तन वणज वापारिया जिन वखर लद्याड़ा हर रास, गुरमुखा दर मुख उजले ते आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिन पाया जिन्ना आप तुठा गुणतास, हर त्याव हो।

आओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग की वार महला चौथा सलोका नाल सलोक महला तीजा रागा विच श्री राग है जे सच तरे प्यार सदा हर सच मन वसै निश्चल मत अपार रतन अमोलक पाया गुर का शब्द बीचार जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा शरीर अकार नानक सच्चा सतगुर सेवै सदा सच वापार महला तीजा होर बिरहा सब तात है जब लग साहिब प्रीत ना होए एहो मन माया मोहया वेखण सुनण ना होए सह देखे बिन प्रीत ना उपजै अंधा क्या करे नानक जिन अखी लीतियां सोई सच्चा दे पौड़ी हर इको करता एक इको दीवान हर हर इक सैदा है अमर इको हर चित धर हर तिस बिन कोई नाहि डर भ्रम भउ दूर कर हर तिसै नो सलाहि जे तुद रखै बाहर कर हर जिसनो होए दयाल सो हर जप भउ बिखम तर सलोक महला पहला दाती साहिब संदिया क्या चलै तिस नाल इक जा गंदे नाल हन इक ना सुतिया दे उठाल महला पहला सिदक सबूरी सादका सबर तोसा मलायका दीदार पूरे पायसा थाओ नाही खायका पौड़ी सब आपे तुदे उपाय कै आप कारै लाई तू आपे वेख विगसदा अपनी वड्याई हर तुदो बाहर किश नाही तू सच्चा साई तू आपे आप वरतदा सबनी ही थाई हर तसै त्यावो संत जन हो जो लय छुड़ाई सलोक महला पहला फक्कड़ जाती फक्कड़ नाओ सबना जिया इका शाओ आप हो जे को भला कहाए नानक ता पर जापै जा पत लेखै पाए महला दूजा जिस प्यारे स्योने हो किसे आगे मर चलिया त्रिग जीवन संसार तां कह पाछै जीवना पौड़ी तुदे आपे धरती साजी है चंद सूरज दोए दीवे दस चार हट तुद साजिया वाह पार करीवे इक नानो हर लाभ दे जो गुरमुख थीवे तिन जम काल ना व्यापई जिन सच अमृत पीवे वे आप छुट्टे परवार स्यों तिन पिछे सब जगत छुटीवे सलोक महला पहला कुदरत करके वसिया सोए वक्त विचारे सो बंदा होए कुदरत है कीमत नहीं पाए जां कीमत पाए ता कही ना जाए सरै सरयत करह विचार बिन बूझे कैसे पावे पार सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद जिहे तिर देखां तेहे तिर मौजूद महला तीजा गुर सभा एव ना पाईऐ ना नेड़ै ना दूर नानक सतगुर ता मिलै जा मन रहै हदूर पौड़ी सप्त दीप सप्त सागरा नवखंड चार वेद दस अष्ट पुराण हर सबना विच तू वरतदा हर सबना पाणा सब तुझै त्यावहै जी जंत हर सार पाणा जो गुरमुख हर अराध दे तिन्हो कुरबाणा तू आपे आप वरतदा कर चोज वडाणा सलोक महला तीजा कलोम साजनी क्या सदाई है हृदय ही लिख ले हो सदा साहिब कै रंग रहै कबहू ना टूट सने हो कलोम साजनी जाए सी लिखिया पी नाले जाए नानक सह प्रीत ना जाए सी जो तुर छोड़ी सच्चै पाए महला तीजा नदरी आमदा नाल ना चलई वेखो को व्यो पाए सतगुर सच दरड़ाया सच रहो लिवलाए नानक शब्दी सच है
करमी पल्ले पाए पौड़ी। हर अंदर बाहर एक तू, तू जान है पेत, जो कीचै

तू आपे कमल अलिप्त है सह थां विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंदा एक निमख करी कर ख्याल हर तुदहो बाहर किस नहीं गुर शब्दी वेख निहाल सलोक महला तीजा हुक्म न जाने बहुतारो है अंदर धोखा नींद ना सोवे जे तन खसम चले रजाई दर कर सुबा महल बुलाई नानक करमी एह मत पाई गुर प्रसादी सच समाई महला तीजा मनमुख नाम विहूनिया रंग कुसुम्बा देख ना भुल इसका रंग दिन थोड़िया सोचा इसका मुल दूजा लगे पच मोए मूर्ख अंध गवार बिष्टा अंदर कीट से पै पचह वारो वार नानक नाम रते से रंगले गुर कै सहज सपाए भगती रंग न उतरे सहजे रह समाए पौड़ी श्रिष्ट उपाई सब तुध आपे रिजक संबाहया एक वल छल करके खाम दे मुहो कूड़ कुसत तिनी ढाया तुद आपे पावे सुह करह तुद ओतै कम ओए लाया इक ना सच बुझायो न तिना अतुट भंडार दिवाया हर चेत खाहे तिना सफल है अचेता हक तड़ाया सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित बेद बखान है माया मोह सवाय दूजे पाए हर नाम वसारिया मन मूर्ख मिले सजाए जिन जियो पिंड दिता तिस कबहू ना चेतै जो देंदा रिजक संभाए जम का पाहा गलहू न कटिए फिर आवे जाए मनमुख किशु ना सूजै अंधले पूर्व लिखिया कमाए पूरे भाग सतगुर मिले सुख दाता नाम वसै मन आए सुख मान है सुख पैनना सुखे सुख वेहाय नानक सो नाओ मनो ना विसारी है जित दर सच्चै सोभा पाए महला तीजा सतगुर सेव सुख पाया सच नाम गुण तास गुरमति आप पछाणिया राम नाम परगास सचो सच कमावना वड्याई वड्डे पास जियो पिंड सब तिसका सिफत करे अरदास सच्चा शब्द सलाहना सुखे सुख निवास जप तप संयम मने माहे बिन नावे त्रिग जीवास गुरमति ना उपाइए मनमुख मोहे विनाश ज्यो भावे त्यो राख तू नानक तेरा दास पौड़ी सब को तेरा तू सब सदा तू सब ना रास सब तुदे पासो मंग दे नित कर अरदास जिस तू देहे तिस सब किस मिले।

मां जानै जे दिन दिन अवध कटत है मोर मोर कर अधिक लाड धर पेखत ही जमराओ हसै ऐसा तैं जग भरम लाया कैसे बूझै जब मोहया है माया रहाओ कहत कबीर छोड़ बिख्या रस इत संगत निश्चो मरना रमैया जपो प्राणी अनत जीवन बाणी इन बिद भव सागर तरना जां तिस भावै तां लागै भाव परम भलावा विचों जाए उपजै सहज ज्ञान मत जागै गुर प्रसाद अंतर लिव लागै इत

प्राणी जरा मरण भव विसर गया, कटंब देख बिकसह कमला ज्यो, पर कर जो है कपट नरा, दूड़ा आयो है जमह तना, तिन आग लड़ै मैं रहन ना जाए, कोई कोई साजन आई कह, मिल मेरे बीठला ले बाहड़ी वलाई, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए रहाओ। अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी, संसार सागर पै अमर पया, माया मूठा चेतस नाही, जन्म गवायो आलसिया, विखम घोर पंथ चालना प्राणी, राव सस तह ना प्रवेशं, माया मोह तब बिसर गया, जा तजियले संसारं, आज मेरा मन प्रगट भया है, पेखियले धर्म राहो, तह कर दल करन महाबली, किन आग लड़ै मैं रहन ना जा।

बदते त्रिलोचन रामैया श्री राग भगत कबीर जियो का अचरज एक सुनोरे पंडिया अब किश कहन न जाय सुर नार गण गंधर्व जिन मोहे त्रिभुवन में खुली लाई राजा राम अनहद किंगुरी बाजे जाकी दिष्ट नाद लिव लागे रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया कनक कलस एक पाया तिसमह धार चोए अत निर्मल रसमह रसन चुआया एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजिया तीन भवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा ऐसे ज्ञान प्रगटिया प्रखोतम कहो कबीर रंग राता और दुनी सब भरम पलानी मन राम रसायन माता श्री राग

रे नार गर्भ कुंडल जब आसत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मादना एहनस एक अज्ञान सो नागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारिया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनहु बिसारिया फिर पछतावेगा मूड़िया तू कमन कमत भ्रम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरे अनरादा रहाओ बाल बनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोहे प्यापे रस मिसमेद अमृत बिख चाखी तो पंच प्रगट संतापे जप तप संयम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना अरादिया उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधिया तरुण तेज पर त्रै मुख जो है सर अपसर ना पछाणिया उन्मत काम महा बिख भूले पाप पुन ना पछाणिया सुत संपत देख इहो मन गर्भिया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो भग मुख जन्म बगोया कुंडर केस कुसुम ते धौले सपत पाताल की बाणी लोचन श्रम है बुद्ध बल लाठी ता काम पव समाधानी ता ते बिखै भई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछै पछताना निकुट्टी दे देख धुन उपजै मान करत नहीं बूझै लालच करै जीवन पद कारण लोचन कशु ना सूझै थाका तेज उड्या मन पंखी तारे आंगन ना सुखाई देनी कह सुनो रे भगत हो मरन मुक्त किन पाई श्री राग तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा कनक कटक

तहाव तुम जो नायक आचो हो अंतर जामी प्रभ ते जन जानी जय जन ते स्वामी शरीर अराध्य मोको विचार देहू रवदास सम दल समझावे को राग माज चौपदे कर पहला महला चौथा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद हर हर नाम मैं हर मन पाया वड भागी हर नाम ते आया गुर पूरे हर नाम सिद्ध पाई को विरला गुरमत चले जियो मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले मेरा प्राण सखाई सदा नाल चले गुर पूरे हर नाम दड़ाया हर निश्चल हर तन पल्ले जियो हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया कोई आन मलावे मेरे प्राण जीवाया हों रह

पुत्र सखा सुप्रीतम भाई, मैं दस्ते हर नर हरिय जियो, मेरी बेदन हर गुर पूरा जाने, हो रह ना सका बिन नाम वखाने, मैं औखद मंत्र दीजे गुरपूरे, मैं हर हर नाम उधरिय जियो, हम चातरक दीन सतगुर सरनाई, हर हर नाम बूंद मुख पाई, हर जल निद हम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरिय जियो, माज महला चौथा हर जन संत मिलो मेरे भाई, मेरा हर प्रभ दसो मैं भुख लगाई, मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन भीजै जियो, मिल सतसंग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरे मन पानी, हर हर अमृत हर मन भावै, मिल सतगुर अमृत पीजै जियो, वडभागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटा खावै, बिन भागा सतसंग ना लभै, बिन संगत मैल परिजै जियो, मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे, हर हर नाम दया मन तारे, गुरमत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मन पीजै जियो, माज महला चौथा हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया, मन हर रंग राता हर रस पी आया, हर हर नाम मुख हर हर बोली, मन हर रस टुल टुल पौंदा जियो, आवहु संत मैं गल में लाई है, मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाई है, हर के संत मिलो मन देवा, जो गुरबाणी मुख चौंदा जियो, वड भागी हर संत मलाया, गुरपुरे हर रस मुख पाया, भागहीन सतगुर नहीं पाया, मनमुख गर्भ जूनी नित पौंदा जियो, आप दयाल दया प्रभ तारी, मल हम मैं बिखिया सब नेवारी, नानक हट पटन विच काया, हर लैंदे गुरमुख सौदा जियो, माज महला चौथा हों गुण गोविंद हर नाम त्याई, मिल संगत मन नाम वसाई, हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी, मिल सतगुर हर रस की चै जियो, तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता, जाए पुछा जन हर की बाता, पाम मलुआ मल मल धुआ, मिल हर जन हर रस की चै जियो, सतगुर दातै नाम दिड़ाया, वड भागी गुर दर्शन पाया, अमृत रस सच अमृत बोली, गुरपुर

तू कट कट रविया अंतर जामी गुर पूरे हर नाल देखा लिया हौ सतगुर विटो सदवारिया जीओ एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया सब एका जोत वरतै भिन भिन ना रली किसै धीर लाइया गुर प्रसादी एक नदनी आया हौ सतगुर विटो बताया जीओ जन नानक बोलै अमृत बाणी गुरसिखा कै मन प्यारी पाणी उपदेश करे गुर सतगुर पूरा गुर सतगुर पर उपकारिया जीओ सत चौपदे महले चौथे के माज महला पंजवा चौपदे घर पहला मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई बिलप करे चातरक की न्याई त्रिखा न उतरै शांत न आवै बिन दर्शन संत प्यारे जियो हौ भोली जियो कोल कमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सहावा जियो सहज धुन बाणी चिर होवा देखे सारिंग पाणी तन सो देश।

निर्गुण सरगुण हर हर मेरा कोई है जीव आन मलावे जीव खट सासत विचरत मुख ज्ञाना पूजा तिलक तीरथ इशनाना निवली कर्म आसन चौरासी इन मह शांत न आवे जीव अनक बरख किए जप तापा गमन किया धरती परमाता एक खिन हृदय शांत न आवे जोगी बहुड़ बहुड़ उठता वै जीव कर कृपा मुहि साध मलाया मन तन सीतल धीरज पाया प्रभ अविनाशी बसिया कट पीतर हर मंगल नानक गावे जीव माज महला पंजवा पार ब्रह्म अपरंपर देवा अगम गोचर अलख अपेवा दीन दयाल गोपाल गोविंदा हर त्यावो हो गुरमुख गाती जीव गुरमुख मधसूदन निस्तारी गुरमुख संगी कृष्ण मरारी दयाल दमोदर गुरमुख पाईए होरत किते ना भांती जीव निरहारी केशव निरवैरा कोट जना जाके पूजह पैरा गुरमुख हृदय जा कै हर हर सोई भगत एकांती जीव अमोग दर्शन बेअंत अपारा वड समर्थ सदा दातारा गुरमुख नाम जपिए तित तरिए गत नानक बिरली जाती जीव माज महला पंजवा कहया करना दिता लेना गरीबा अनाथा तेरा माना सब किश तू है मेरे प्यारे तेरी कुदरत कौ बल जाई जीव पाणे उजड़ पाणे राहा पाणे हर गुण गुरमुख गावा पाणे परम पवे बहुजूनी सब किस तिसै रजाई जीव ना को मूरख ना को सियाणा वरतै सब किस तेरा पाणा अगम अगोचर बेअंत अथाहा तेरी कीमत कहन ना जाई जीव खाक संतन की देहो प्यारे आए पया हर तेरे द्वारे दर्शन पेखत मन आगावे नानक मिलन सुपाई जीव माज महला पंजवा दुख तदे जा विसर जावे भुख व्यापै बहु विद तावे सिमरत नाम सदा सुहेला जिस देवे दीन दयाला जीव सतगुर मेरा वड समरथा जिये संभाली ता सब दुख लत्ता चिंता रूप गई हो पीड़ा आप करे प्रतपाला जीव बारक वांगी हों सब किश मंगा दें दे तोट नाही प्रभ रंगा पैरी पै पै बहुत मनाई दीन दयाल गोपाला जीव हों बलिहारी सतगुर पूरे जिन बंधन काटे सगले मेरे हृदय नाम दे निर्मल किए नानक रंग रसाला जीव माज महला पंजवा लाल गोपाल दयाल रंगीले गहर गंभीर बेअंत गोविंदे ऊच अथाह बेअंत स्वामी सिमर सिमर हों जीवा जीव दुख भंजन निदान अमोले निरपो निरवैर अथाह अतोले अकाल मूर्त अजूनी संभो मन सिमरत ठंडा थीवा जीव सदा संगी हर रंग गोपाला ऊच नीच करे प्रतपाला नाम रसायन मन तृपतायन गुरमुख अमृत पीवा जीओ दुख सुख प्यारे तुद त्याई एह समत गुरु ते पाई नानक की धर तू है ठाकुर हर रंग पार परीवा जीओ माज महला पंजवा धन सो वेला जित मैं सतगुर मिलिया सफल दर्शन नेत्र पेखत तरिया धन मूरत चसे पल घड़िया धन सो उए संजोगा जीओ उदम करत मन निर्मल हुआ हर मार्ग चलत भ्रम सगला खोया नाम निधान सतगुरु सुनाया मिट गए सगले रोगा जीओ अंतर बाहर तेरी बाणी तुद आप कथी तै आप बखाणी गुर कहया सब एको एको अवर ना कोई होएगा जीव
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਪੀਆ, ਹਰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਥੀਆ, ਨਾਮ ਰੰਗ ਨਾਮ ਚੋਜ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਕੀਨੇ ਭੋਗਾ ਜੀਉ, ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਗਲ ਸੰਤਨ ਪਹਿ ਵਸਤ ਇਕ ਮੰਗੋ, ਕਰੋ ਬਿਨੰਤੀ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਈ ਲਖ ਵਰੀਆ, ਦੇਹੋ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰਾ ਜੀਉ, ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਤੁਮ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤੇ,

जो तुद मन भानी तिनकै संग सदा सुख पाया हर रस नानक तृप्त अगाना जीयो माज महला पंज।

आस पिया साथ मरी तुम ही संग मन लीना जियो यो बारक ती खीर अगावे ज्यो निर्धन धन देख सुख पावे त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यो हर संग इहो मन पीना जियो ज्यो अंधियार है दीपक परगासा परता चितवत पूर्ण आसा मिल प्रीतम ज्यो होत आनंदा त्यो हर रंग मन रंगीना जियो संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गजाया हर हमरा हम हर के दासी नानक शब्द गुरु सच दीना जियो माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बढ़ारन हरिया अवर साध चख सगले देखे मन हर रस सब ते

सह परापत जिस शब्द गुरु मन बूठा जियो जिन हर रस पाया सो तृप्त आगाना जिन हर साध पाया सो नाही डुलाना जिसह परापत हर हर नामा जिस मस्तक पागी था जियो हर एक सहाथ आया वरसाने बहुतेरे किस लग मुक्त भये कनेरे नाम निदाना गुरमुख पाई कहो नानक विरली दीठा जियो माज महला पंजवा निद सिद्ध रिद हर हर हर मेरे जन्म पदार्थ गहर गंभीर है लाख कोट खुशियां रंग रावे जो गुर लागा पाई जियो दर्शन पेखत पए पनीता सगल उदारी पाई मीता अगम अगोचर स्वामी अपना गुर कृपा ते सच त्याई जियो जाको खोज है सर्ब उपाए वडभागी दर्शन को विरला पाए ऊच अपार अगोचर थाना ओह महल गुरु देखाई जियो गहर गंभीर अमृत नाम तेरा मुक्त पया जिस हृदय बसेरा गुरबंधन तिनके सगले काटे जन नानक सहज समाई जियो माज महला पंजवा प्रभु कृपा ते हर हर त्यावो प्रभु दया ते मंगल गावो उठत बैठत सोवत जागत हर त्याय सगल अवरदा जियो नाम औखद मोको साधु दिया किल बिक काटे निर्मल थिया आनंद भया निकसी सब पीरा सगल बनासे।

पोत पोत सेवक संग राता प्रभ प्रतपाले सेवक सुख दाता पाणी पक्का पीसो सेवक कै ठाकुर ही का आहर जियो काट सिलक प्रभ सेवा लाया हुक्म साहिब का सेवक मन पाया सोई कमावै जो साहिब पावै सेवक अंतर बाहर माहर जियो तू दाना ठाकुर सब बिद जान है ठाकुर के सेवक हर रंग मान है जो किस ठाकुर का सो सेवक का सेवक ठाकुर ही।

संग जोत मलाया, कहो नानक भ्रम कते कवाड़ा, बहुड़ ना हुई है जो ला जियो, माज महला पंजवा। तिस कुरबानी जिन तू सुनिया, तिस बलिहारी जिन रसना पणिया, वार वार जाई तिस विटों, जो मन तन तुद आरा दे जियो। तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले, नैन निहाली तिस पुरख दयाले, मन देवा तिसे अपने साजन, जिन गुर मेल सो प्रभला दे जियो। सेवड भागी जिन तुम जाने, सब कै मदे अलिपत निर्बाणी, साध कै संग उन पौ जल तरिया, सगल दूत उन साधे जियो। तिनकी शरण परया मन मेरा, मान तान तज मोह अंधेरा, नाम दान दीजै नानक कौ, तिस प्रभ अगम अगा दे जियो। माज महला पंजवा, तू पेड़ साख तेरी फूली, तू सूखम हुआ असथूली, तू जल निद तू फेन बुदबदा, तुद बिन अवर ना पालिए जियो। तू सूत मणिये पी तू है, तू गंठी मेर सिर तू है, आद मद

आपे तुद संभालिए दियो। तू ठाकुर सेवक फुन आपे, तू गुपत प्रगट प्रभ आपे। नानक दास सदा गुण गावे, एक भोरी नदर निहालिए दियो। माज महला पंजवां, सफल सो बाणी जित नाम बखाणी। गुर प्रसाद किन विर लै जानी, धन सो वेला।

लिखा से चरण सहावे जो हर मार्ग चले हौ बाल तिन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारी साध संग किन माही उधारी किल बिख काट हुआ मन निर्मल।

दयाला सगले तृप्त अगाए जियो वाण त्रिण त्रिपवन की तुन हरिया कर्णहार खिन पीतर करिया गुरमुख नानक तिसै आराधी मन की आस पुजाए जियो माज महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदप तू

मेरा माणा, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो, जी जंत सब तुद उपाय, जित जित पाणा तित तित लाए, सब किछ कीता तेरा हुवै, नाही किस्त असाड़ा जियो, नाम त्याए महा सुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन सीतलाया, गुरपूरै वजी वधाई, नानक जिता बिखाड़ा जियो, माज महला पंजवां, जी प्राण प्रभ मन है अधारा, भगत जीव है गुण गाए अपारा, गुण निदान अमृत हर नामा, हर त्याए त्याए सुख पाया जियो, मनसा तार जो करते आवे, साध संग जन्म मरण मटावे, हास मनोरथ पूरन होवे, टेटत गुर दरसाया जियो, अगम अगोचर किश मित नहीं जानी, साधक सिद्ध त्यावे है ज्ञानी, खुदी मिटी चूका पुलावा, गुरमन ही मह प्रगटाया जियो, आनंद मंगल कल्याण निदाना, सुख सहज हर नाम बखाना, कोई कृपाल स्वामी अपना, नाव नानक कर्म है आया जियो, माज महला पंजवा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, तू प्रीतम ठाकुर अत पारी, तुमरे कर्तव तुम ही जानो, तुमरी ओट गोपाला जियो, गुण गावत मन हरिया होवे, कथा सुनत मल सगली खोवे।

गुर प्रसाद मन तारूं, तुमरी कृपा ते होए परगासा, सर्ब मया प्रतपाला जीओ, सत सत सत प्रभ सो।

खिन पीतर हर हर हर गुण जापे जीओ माज महला पंजवा। आओ साजन संत मीत प्यारे मिल गाव है गुण अगम अपारी गावत सुनत सबे ही मुक्ते सो त्याई है जिन हम।

नाम जपत सर्व सुख पाई है, सब भओ बिनसै हर हर त्याई है, जिन सेवे आसो पार ग्रामी, कार्य सगले थीए जियो, आए पया तेरी सरनाई, ज्यों भावै त्यों लैह मलाई, कर कृपा प्रभ भगती लाभ हो, सच नानक अमृत पिए जियो, माज महला पंजवां, पये कृपाल गोविंद गुसाई, मेघ वरसै सबनी थाई, दीन दयाल सदा कृपाला, ठांड पाई करतारी जियो, अपने जी जंत प्रतपारी, ज्यों बारक माता संभारी, दुख भंजन सुख सागर स्वामी, देत सगल आहारी जियो, जल थल पूर रहया मेहरवाना, सद बलिहार जाइए कुर्बाना, रैन दिन सतिस सदा त्याई, जे थिन मह सगल उदारे जियो, राख लिए सगले प्रभ आपे, उतर गए सब सोग संतापे, नाम जपत मन तन हरियावल, प्रभ नानक नदर निहारे जियो, माज महला पंजवां, जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे, से अस्थल सोइन चौबारी, जिथे नाम ना जपिए मेरे गोविंदा, से ही नगर उजाड़ी जियो, हर रुखी रोटी खाए संभाले, हर अंतर बाहर नदर निहाले, खाए खाए करे बद फैली, जान विसु की वाड़ी जियो, संतां से तीरंग न लाए, साकत संग विकर्म कमाए, दलाब दे खोई अज्ञानी, जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो, तेरी शरण मेरे दीन दयाला।

फल पाया कर कृपा प्रभ संग मलाया आमण जान रहे बड़ भागी नानक पूर्ण आसा जीव माज महला पंजवा मीह पया परमेश्वर पाया जी जंत सब सुखी बसाया गया कलेश पया सुख साचा हर हर नाम संभाली जीव जिसके से तिन्ही प्रित पारी पार ब्रह्म प्रभ पये रखवारी सुनी बेनंती ठाकुर मेरे पूर्ण होई काली जीओ सर्व जिया कहो देवनहारा गुर प्रसादी नदर निहारा जल थल महियल सब तृपताणी।

नानक दान किया दुख भंजन रत्ते रंग रसाली जियो माज महला पंजवा मन तन तेरा तन पी तेरा तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा जियो पिंड सब रास तुम्हारी तेरा जोर गोपाला जियो सदा सदा तू है सुखदाई।

सगल मनोरथ पूरन होए, कदे ना होए दुखाला जीओ। माज महला पंजवा, पार ब्रह्म प्रभ मेघ पठाया, जल थल महियल दह दिस वरसाया। शांत भई बुझी सब तृष्णा, आनंद भया सब ठाई जीओ। सुख दाता दुख भंजन हारा, आपे

तुद त्याई जीओ। माज महला पंजवा सभे सुख पए प्रभ तुठे, गुरपूरे के चरण मन उठे। सहज समाद लगी लिव अंतर, सोरा

गुर के चरण बसे मन माही, अंगीकार किया तिन करते, दुख का डेरा टाहया जियो, मन पन बसया सच्चा सोई, बिखड़ा थान ना दिसे कोई, दूत दुश्मन सब सज्जन हुए, एको स्वामी आहया जियो, जो किछ करे सो आपे आपे, बुद्ध सियाणप किशु ना जापे, अपनिया संतां नू आप सहाई, प्रभ भरम भलावा लाहया जियो, चरण कमल जन का आधारू, आठ पहर राम नाम वपारू, सहज आनंद गावे है गुण गोविंद, प्रभ नानक सर्ब समाहया जियो, माज महला पंजवा, सो सच मंदर जित सच त्याई है, सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है, सा धरत सुहावी जित वस है हर जन, सच्चे नाम विटहो कुरबाणो जियो, सच वडाई कीम न पाई, कुदरत कर्म न कहना जाई, त्याए त्याए जीव है जन तेरे, सच शब्द मन माणो जियो, सच सलाहन वड भागी पाई है, गुर प्रसादी हर गुण गाई है।

तरी जय सागर कटिय जम की पासा जीव चार पदार्थ हर की सेवा पार जात जप अलख अपेवा काम क्रोध किल बिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जीव पूर्ण भाग भये जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वसया जिस अंतर परवान गिरस्त उदासा जीव माज महला पंजवा सिमरत नाम हृदय सुख पाया कर कृपा भगती प्रगटाया संत संग मिल हर हर जपिया।

ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर प्रभ सबना गल्ला जोगा जीओ छिन मह थाप उथापन हारा आप एकंती आप पसारा लेप नहीं जग जीवन दाते दर्शन दिथे लहन विजोगा जीओ अंचल लाए सब शिष्ट तराई अपना नाओ आप जपाई गुर बोहित पाया कृपाते नान

अन दिन नित जागी बाहां पकड़ तिस स्वामी मेले जिसकै मस्तक लहना चरण कमल भगता मन उठे बिन परमेश्वर सगले मुठे संत जना की धूड़ नित बांच है नाम सच्चे का गहना उठत बैठत हर हर गाइए जिस सिमरत वार निह चल पाइए नानक कहो प्रभु होए दयाला तेरा कीता सहना राग माज अष्टपदियां महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

करावणिया, इस काया अंदर वस्त असंखा, गुरमुख साथ मिले ता वेखा, नौ दरवाजे दसवें मुक्ता, अनहद शब्द बजावणिया, सच्चा साहेब सच्ची नाई, गुर प्रसादी मन वसाई, आंदिन सदा रह रंग राता, दर सच्चै सो जी पावणिया, पाप पुन की सार ना जानी, दूजै लागी भरम पुलाणी।

कह नाही। जमपुर बद्दा दुख सहाही, अन्ना बोला किस नदर ना आवे। मन मुख पाप पचावनिया, एक रंग राते जो तुद आप निवलाई। पाए भगत तेरे मन पाए, सतगुर सेवन सदा सुखदाता। सब इच्छा आप पुजावनिया, हर जियो तेरी सदा सरनाई। आपे बख्शे दे वडियाई, जम काल तिस नेड़ ना आवे। जो हर हर नाम ते आवनिया,

भाए सिंगार बनाई गुर प्रसादी महल घर पाई अन दिन सदा रवै दिन राती मजीठे रंग बनावणिया सबना फिर वसै सदा नाली गुर प्रसादी को नदर निहाली मेरा प्रभ अत ऊचो ऊचा कर किरपा आप मनावणिया माया मोहे एहो जग सुत्ता।

बहुत पसारा नाम निरंजन अति अगम अपारा गुरमुख हो ऐसोई पाई आपी बख्श मलावणिया मेरा ठाकुर सच दृढ़ाई गुर प्रसादी सच चित लाई सचो सच वरतै सबनी थाई सच्चे सच समावणिया वे परवाह सच मेरा प्यारा किल विख अवगुण काटन हारा प्रेम प्रीत सदा त्याई पै भाए भगत दृढ़ा बनिया तेरी भगत सच्ची जे

कमुआ गुरमुख हुए सो एको जाने एको सेव सुख पावणिया जी जंत सब शरण तुम्हारी आपे धर देख है

राज महला तीजा अमृत बाणी गुर की मीठी गुरमुख विरलय किने चख डीठी अंतर प्रगास महारस पीवे दर सच्चे।

निर्मल बाणी शब्द बखाण है, सच्चे सेव सदा सुख पायन, नौ निद नाम मन वसावणिया, सुथान सुहाया जो हर मन पाया, सत संगत बह हर गुण गाया, अन दिन हर सलाह है साचा, निर्मल नाद बजावणिया, मन मुख खोटी रास खोटा पासारा, कूड़ कमावण दुख लागे पारा, परमे भूले फिरन दिन राती, मर जन्म है जन्म गवावणिया, सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, पूरे गुर कै शब्द आधारा, नानक नाम मिले वडियाई, दुख सुख सम कर जानणिया, माज महला तीजा, तेरिया खाणी तेरिया बाणी, बिन नावै सब परम पलाणी, गुर सेवा।

है अपना मुक्ति का दर पावनिया किलिख काटै क्रोध नवारी गुर का शब्द रखै उर तारी।

विद माया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके चौथे पद की सार ना पावणिया आपे रंगे रंग चढ़ाई से जल राते गुर शब्द रंगाई हर रंग चढ़िया अत अपारा हर रस रस गुण गावणिया गुरमुख रिद सिद सच संयम सोई गुरमुख ज्ञान नाम मुक्त होई।

गुरमुख जात पत सब आपी, नानक गुरमुख नाम त्याई, नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा, उत्पत पर लो शब्दे होवे, शब्दे ही फिर ओ पत होवे। गुरमुख वरत है सब आपे सच्चा, गुरमुख अपाए समावणिया। हौ वारी जियो वारी, गुरपूरा मन वसावणिया। गुर ते शांत भगत करे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया। रहाउ गुरमुख धरती गुरमुख पाणी, गुरमुख पवन बै संतर।

मूड़ा बाहर पाली मनमुख अंधे फिर है बेताली जिथे वत होवे तिथों कोई ना पावे मनमुख परम भलावणिया।

पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, बिन भागा गुर पाई है नाही, शब्द है मेल मलावणिया, गुरमुख अलिप्त रह संसारी, गुर कै तकिया नाम अधारी, गुरमुख जोर करे क्या तिसनो, आपे खप दुख पावणिया, मनमुख अंधे सुध ना काई, आत्म घाती है जगत कसाई, निंदा कर कर बहु भार उठावे, बिन मजूरी भार पहुंचावणिया, इहो जग वाड़ी मेरा प्रभ माली, सदा संभाले को नाही खाली, जेही वासना पाए ते ही वरतै, वासु वास जनावणिया, मनमुख रोगी है संसारा, सुखदाता विसरिया अघम अपारा, दुखिए नित फिर है बिललांदी, बिन गुर शांत ना।

किस बाज्य हूँ सच्चे मैं होर न कोई, जिस लाई लय सो निर्मल होई। नानक नाम वसै घट अंतर, जिस देवै सो पावणिया। माज महला तीजा, अमृत नाम मन वसाई। हम मैं मेरा सब दुख गवाई।

खोटी परम पलावणिया क्यों कर वेखा क्यों सालाही गुर प्रसादी शब्द सलाही तेरे पाने विच अमृत वसै तू पाणे अमृत पी आवणिया अमृत शब्द अमृत हर बाणी सतगुर सेवै हृदय समाणी नानक अमृत नाम सदा सुख दाता पी अमृत सब भुख लह जावणिया माज महला तीजा अमृत वरसै सहज सुपाई गुरमुख विरला कोई जन पाई अमृत पी सदा तृप्तासी कर कृपा तृष्णा बुझावे।

नदर करे ता हर गुण गावे, नदरी सच समावणिया। सबना उपर नदर प्रभ तेरी, किसै थोड़ी किसै है कनेरी। तुझते बाहर किस ना होवे, गुरमुख सोजी पावणिया। गुरमुख तत है बीचारा,

अंतर मन मोह है। अमृत मन तन बाणी रत्ता अमृत सहज सुनावणिया मनमुख भूला दूजे भाए खुआए नाम ना लेवे मरे बिख खाए अन्दिन सदा विष्टा महवासा बिन सेवा जन्म गुआवणिया अमृत पीवे जिसनों आप।

सच राती सच सुन आख बखानिया मनसा मार सच समाणी इन मन दीती सब आवन जानी सतगुर सेवे सदा मन निश्चल निज घर वासा पावणिया गुर कै शब्द हृदय दिखाया माया मोह शब्द जलाया सचो सचा वेख सलाही गुर शब्दी सच पावणिया जो सच राते तिन सची लिव लागी हर नाम संभाल है से वड भागी सच्चा शब्द आप मलाई सत संगत सच गुण गावणिया लेखा पढ़िया जे लेखे विच होवे ओह अगम अगोचर शब्द सुध होवे अन दिन सच शब्द सलाही होर कोई ना कीमत पावणिया पढ़ पढ़ था के शांत ना आई तृष्णा जाले सुध ना काई बिख विहाज है बिख मोह प्यासी कूड़ बोल बिख खावणिया गुर प्रसादी एको जाना दूजा मार मन सच समाणा नानक एको नाम वरतै मन अंतर गुर प्रसादी पावणिया माज महला तीजा वर्ण रूप वरतह सब तेरे मर मर जमह फिर पवह कनेरे तू एको निश्चल अगम अपारा गुरमति बूझ बुझावणिया हौ वारी जियो वारी राम नाम मन वसावणिया किस रूप ना रेख्या वर्ण ना कोई गुरमति आप

सच सलाही सब घट अंतर सचो सच सुहावनिया सच सलाही सदा हजूरे गुर कै शब्द रहया पर पूरे गुर पर साधी सच नदरी आवे सच्चे ही सुख पावनिया सच मन अंदर रहया समाए सदा सच निश्चल आवे ना जाए सच्चे लागे सो मन निर्मल गुरमती सच समावनिया सच सलाही अवर न कोई जित सेवै सदा सुख होई नानक नाम रते विचारी सचो सच कमावनिया माज महला तीजा निर्मल शब्द निर्मल है बाणी निर्मल जोत सब माहि समाणी निर्मल बाणी हर सालाही जप हर निर्मल मैल गवावनिया हों वारी जीओ वारी सुखदाता मन वसावनिया हर निर्मल गुर शब्द सलाही शब्दो सुन तिसा मटावनिया रहाओ निर्मल नाम वसिया मन आई मन तन निर्मल माया मोह गुआई निर्मल गुण गावै नित साचे के निर्मल नाद बजावनिया निर्मल अमृत गुर ते पाया विचों आप मोआ तिथे मोह ना माया निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल निर्मल बाणी मन वसावनिया जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवै हौ मैं मैल गुर शब्दे धोवै निर्मल वाजै अनहद धुन बाणी दर सच्चै सोभा पावनिया निर्मल ते सब निर्मल होवै निर्मल मनुआ हर शब्द परोवै निर्मल नाम लगे बड़ भागी निर्मल नाम सुहावनिया सो निर्मल।

माया मोह इस मनहन चाई अंतर कपट दुख पावनिया गुरमुख भगत जा आप कराई तन मन राता सहज सुपाई वाणी वज्जे शब्द बजाई गुरमुख भगत थाई।

किसै मलाई, गुर शब्द मिलहै से विछड़ह नाही। सहजे सच समावणिया, तुझते बाहर कछु ना होए, तू कर कर वेखहै जानहै सोई।

बनाई। सतगुर सेव सदा सुहागण, सच उपदेश सुमावणिया। शब्द वसारन तिन्ना थौर ना ठाउ, ब्रह्म भूले जो सुन्ये कर काउ। हलत पलत तिन्नी दोहें गवाई, दुखे दुख विहामणिया। लिखदियां लिखदियां कागद मस खोई, दूजे पाए सुख पाए ना कोई। कूड़ लिख है तै कूड़ कमावे, जल जावे कूड़ चित लावणिया। गुरमुख सचो सच लिख है विचार, से जन सच्चे पाव।

माज महला तीजा आत्म राम परगास गुर ते होवे हों मैं मैल लागी गुर शब्दी खोवे मन निर्मल अन दिन भगती राता भगत करे हर पावणिया हों वारी जियो वारी आप भगत करन अवरा भगत करावणिया इन्ना भगत जना को सद नमस्कार कीजै जो अन दिन हर गुण गावणिया रहाओ आपे करता कारण कराई जित पावै तित कारै लाई पूरै भाग गुर सेवा होवै गुर सेवा ते सुख पावणिया।

बहु कर्म कमावे मुक्त न पाई, देशांतर भवे दूजे भाई खुआई। बिरथा जन्म गवाया कपटी, बिन शब्द है दुख पावनिया। तावत राखे ठाक रहाई, गुर प्रसादी परम पद पाई। सतगुरे आपे मेल मलाई, मिल प्रीतम सुख पावनिया। एक कूड़ लागे कूड़े फल पाई, दूजे भाई बिरथा जन्म गवाई। आप डुबे सगले कुल डुबे, कूड़ बोल बिख खावनिया। इस तन मह मन को गुरमुख देखै, भाई भगत जा हौ मैं सुखै। सिद्ध साधक मोल धारी रहे लिवलाई, तिन पी तन मह मन ना दिखावनिया। आप कराए करता सोई, होर के करे कीता क्या होई। नानक जिस नाम देवै सो लेवै, नामो मन वसावनिया। माज महला तीजा, इस गुफा मह अखुट भंडारा। इस विच वसै हर अलख अपारा, आपे गुपत प्रगट है आपे। गुर शब्दी आप मियावनिया, हों वारी जियो वारी। अमृत नाम मन वसावनिया, अमृत नाम महारस मीठा। गुरमती अमृत पियावनिया, रहाओ। हौ मैं मार बजर कपाट खुलाया, नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया। बिन शब्द नाम ना पाई कोई, गुर कृपा मन वसावनिया। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। ज्योति ज्योत मिली मन मा

चार दुख पाए मन मुखे अंधे सूझै नाही फिर घेरे आए गुरमुख वत पावणिया गुर प्रसादी सच्चा हर पाए मन तन वेखै हउमै मैल जाए बैस सुखान सद हर गुण गावे।

भेदे गुरमुख वण जह के नानक जिस नदर करे सो पाए कर कृपा मन वसावणिया माज महला तीजा हर आपे मेले सेव कराए गुर कै शब्द।

रतियों मासा तोल कढावणिया पेयड़ै फिर चेते नाही दूजै मुठी रोवै ताही खरी क्वालियो कुरूप कलखणी सुपने फिर नहीं पावणिया पेयड़ै फिर मन वसाया पूरे गुर हदूर दिखाया कामण फिर राख्या कंठ लाई शब्दे फिर रावै सेज सुहावणिया।

पढ़ बुझ मन वसावणिया, गुरमुख पढ़ हर नाम सलाह है, दर सच्चह सोभा पावणिया, रहाउ अलक अपेयो हर रहया समाई, उपाय न किती पाया जाई, कृपा करी ता सतगुर भेटै, नदरी मेल मनावणिया, दूजै पाए पड़ै नहीं बूजै, त्रेविद माया कारण लूजै, त्रेविद बंधन टूटै गुर शब्दी, गुर शब्दी मुक्त करावणिया, एहो मन चंचल वस न आवै, दुबदा लागै दह दिस धावै, बिख का कीड़ा बिख मैं राता, बिख ही माही पचावणिया, हौ हौ करे तै आप जनाई, बहु कर्म करै किस थाए ना पाई, तुझते बाहर किसु ना होवै, बख्शे शब्द सुहावणिया, उपजै पचै हर बूजै नाही, अन दिन दूजै पाए फराही, मन मुख जन्म गया है बिरथा, अंत गया पछतावणिया, फिर परदेश शिंगार बनाई, मनमुख आंधे ऐसे कर्म कमाई।

कै शब्द पुछाता अन दिन भगत करे दिन राती सहजे ही सुख पावनिया सब मैं वरतै इको सोई गुरमुख विरला बूझै कोई नानक नाम रते जन सोहै कर किरपा आप मलावनिया माज महला तीजा मनमुख पढ़े पंडित कहावह दूजै पाए महा दुख पावह बिख्या माते।

सेवा ते हर मन वसिया हर रस सहज पी आवणिया रहाउ वेद पढ़ै हर रस नहीं आया वाद वखाणै मोहे माया अज्ञान मत्ती सदा अंधियारा गुरमुख बूझ हर गावणिया अकथो कथियै शब्द सुहावै गुरमती मन सचो पावै सचो सच रवै दिन राती इहो मन सच रंगावणिया जो सच रत्ते तिन सचो भावै आपे दे ना पछो तावै गुर कै शब्द सदा सच जाता मिल सच्चे सुख पावणिया कूड़क सत तिन्ना मैल ना लागै गुर प्रसादी अन दिन जागै निर्मल नाम वसै कट भीतर ज्योति ज्योत मलावणिया त्रै गुण पढ़ै हर तत ना जाणै मूलों भुले गुर शब्द ना पछाणै मोह व्यापी किस सूझै नाही गुर शब्दी हर पावणिया वेद पकारै त्रिविध माया

हर रस चख साध पावणिया, हर रस चख है से जन निर्मल, निर्मल नाम त्यावणिया रहाउ। सो निकर्मी जो शब्द बिचारी, अंतर तत् ज्ञान।

हर सर सागर निर्मल सोई, संत चुगह नित गुरमुख होई, इशनान करह सदा दिन राती, हों मैं मैल चुकावनिया, निर्मल हंसा प्रेम प्यार, हर सर वसै हों मैं मार, एहन सप्रीतो शब्द साचै, हर सर वासा पावनिया, मन मुख सदा बग मैला, हों मैं मल लाई, इशनान करै पर मैल ना जाई, जीवत मरै गुर शब्द बीचारै, हों मैं मैल चुकावनिया, रतन पदार्थ करते पाया, पूरा सतगुर शब्द सुनाया, गुर प्रसाद मिटिया अंधियारा, घट चानने आप पछाननिया, आप अपाए तै आपे वेखै, सतगुर सेवै सो जन लेखै, नानक नाम वसै घट अंतर, गुर किरपा ते पावनिया, माज महला तीजा, माया मोह जगत सवाया, त्रै गुण दिसह मोहे माया।

जलाई सो हर सिउ चित लाई हर दर महली शोभा पावणिया रहाउ देवी देवा मूल है माया सिमरत शास्त जिन उपाया काम क्रोध पसरिया संसारी आए जाए दुख पावणिया तिस विच ज्ञान रतन एक पाया गुर प्रसादी मन वसाया जात सत संयम सच कमावै गुरपूरै नाम त्यावणिया पे अड़ै तन परम फुलाणी दूजै लागी फिर पछोताणी हलत पलत दोवै गवाई सुपनै सुख ना पावणिया पे अड़ै तन कंत संभाले गुर प्रसादी वेखै नाले फिर कै सहज रह रंग राती शब्द शिंगार बनावणिया सफल जन्म जिन्ना सतगुर पाया दूजा भाओ गुर शब्द जलाया एको रव रहिया घट अंतर मिल सत संगत हर गुण गावणिया सतगुर ना सेवे सो काहे आया त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया मनमुख नाम चेतना आवै बिन नावै बहु दुख पावणिया जिन शिष्ट साजी सोई जाने आपे मिलै शब्द पछाणे नानक नाम मिलया तिन जन को जिन तुर मस्तक लेख लखावणिया माज महला चौथा आदि पुरख अपरंपरिया।

पूरे गुर कै शब्द ते आईऐ शब्द सेव सुख पावणिया रसना गुणवंती गुण गावै नाम सलाहे सच्चे पावै गुरमुख सदा रहै रंग राती मिल सच्चे सोभा पावणिया मनमुख कर्म करे अहंकारी जुए जन्म सब बाजी हारी अंतर लोभ महागुबारा फिर आवन जावणिया आपे करता दे वडियाई जिनको आप लिखत तुर पाई नानक नाम मिले पौ भंजन गुर शब्दी सुख पावणिया माज महला पंजवां कर पहला अंतर अलख न जाई लखिया नाम रतन लै गुजा रखिया अगम अगोचर।

सत्य है तारी वडभागी दर्शन पावने रहाउ साधक सिद्ध जिसै कौ फिर दे ब्रह्मे इंद्र त्यान हिरदे कोट ते तीसा खुजह ता को गुरमेल हिरदय गावणिया आठ पहर तुद जापे पवना धरती सेवक पायक चरना खाणी बाणी सर्ब निवासी सबना कह मन पावणिया साचा साहिब गुरमुख जापै पूरे गुर कै शब्द संजापै जिन पिया से त्रिपता से सच्चे सच अगावणिया तिस कर सहजा सुई सुहेला अणद बनोद करे सद केला सो तलवंता सो वड साहा।

जित तावत रहता, कौन अपदेश जित दुख सुख सम सहता, कौन सोचाल जित पार ब्रह्म त्याई, किन विद कीर्तन गाए जियो। गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी गुरमुख बक्ता, तन गिरहि उदासी गुरमुख, गुरमुख कीमत पाए जियो। हउमै बाधा गुरमुख छूटा, गुरमुख आवन जावन टूटा, गुरमुख कर्म गुरमुख नेह कर्मा, गुरमुख करे सो सुपाए जियो। गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया मनमुख विछरे, गुरमुख बिद प्रगटाए जियो। गुरमुख अखर जित तावत रहता, गुरमुख अपदेश दुख सुख सम सहता, गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याई, गुरमुख कीर्तन गाए जियो। सगली बणत बणाई आपे, आपे करे कराए थापे, इकस ते होयो आनंता, नानक एकस माहे समाए जियो। माज महला पंजवा, प्रभ अबनासी ता क्या काड़ा, हर भगवंता ता जन खरा सुखाला।

मन तन पावणिया तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला तुम संग लवै ना लावणिया रहाव तेरा कीता जिस लागै मीठा घट घट पार ब्रह्म तिन जन दीठा थान थनंतर तू है इको एक वरतावणिया सगल मनोरथ तू देवनहारा भगती पाए परे पंडारा दया तार राखे तुद से पूरे कर्म समावणिया अंधकूप ते कंडे चाड़े कर किरपा दास नदर निहाले गुण गावे है पूर्ण अबनासी कह सुन तोट ना आवणिया एथे उथे तू है रखवाला मात गर्भ में है तुम ही पाला माया अग्न ना पोहै तिनको रंग रते गुण गावणिया क्या गुण तेरे आख संभाली मन तन अंतर तुद नदर निहाली तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी तुद बिन अवर ना जाननिया जिसको तू प्रभ पया सहाई तिस तत्ती वाओ न लगै काई तू साहेब सरन सुखदाता सत संगत जप प्रगटावणिया तू ऊच अथाह अपार अमोला तू साचा साहेब दास तेरा गोला तू मीरा साची ठकुराई नानक बल बल जावणिया माज महला पंजवा कर दूजा नित नित दयो संभाली है मूल ना मनहु विसारी है रहाव संतां संगत पाई है जित जम कह पंथ ना जाई है।

पाईऐ तत्ती वाओ ना लग गई जिन मन बुठायाए दियो से सुंदर सोहणे साध संग जिन बहणे हर धन जिनी संजिया से

लाख कमलावती उपजह नाही दाम। हर लाह न मिलिए साजन है कत पाइय विश्राम। जित घर हर कंत न प्रगटई पाठ नगर से ग्राम। सरब सिंगार तंबोल रस सन दे सब खाम।

जन्म जना जल तलमई अल पूरिया रविया विच बना सो प्रभ चेतना आवई कितड़ा दुख गणा जिन्नी रावया सो प्रभु तिन्ना भाग मना हर दर्शन कौ मन लोचदा नानक प्यास मना चेत मलाई सो प्रभु तिसकै पाए लगा वैसाख तीरन क्यों वाडियां जिन्ना प्रेम बशोह हर साजन पुरख वसार कै लगी माया तोह पुत्र कलत्तर ना संग तना हर अवनासी ओह पलच पलच सगली मुई झूठे तंदे मोह इक सहर के नाम बिन अगे लई है खोहे दयो वसार विगुचना प्रभ बिन अवर ना कोई।

जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस दुइये भाइव गुचिए गल पई सो जम की फास जेहा बीजै सो लुणै मथे जो लिखियास रैण विहानी पछताणी उठ चली गई निरास जिनको साधु भेटिए सो दरगहा हुए खलास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन हुए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास असार सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास साहन सरसी कामणी चरण कमल स्यो प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ावया दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वाण तेन प्रभ संग मौलिया समरत पुरख अपार हर मिलने नो मन लोचदा कर्म मिलावन हार जिन्नी सखिए प्रभ पाया हों तिन कै सद बलिहार नानक हर जी मया कर शब्द सवार नहार सावन तिना सुहागनी जिन राम नाम उरहार भादोए परम पलानिया दूजे लगा हेत लख शिंगार बनाया कारज नाही केत जित दिन देह बिनससी तित वेलै कहसन प्रेत पकड़ चलायन।

परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग खिन मह कौड़े हुए गए जितड़े माया भोग विच ना कोई कर सके किस ठहरो वह रोज कीता किशु ना हो गई लिखिया तुर संजोग बड़भागी मेरा प्रभ मिले ता उतर है सब बियोग नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच कत्तक होवे साध संग दिन सह सबे सोच मंगर माहे सुहंदियां हर पिर संग बैठड़ियां इनकी शोभा क्या गणी जे साहिब में लड़िया तन मन मौलिया राम सिंह संग साध सही लड़िया साध जना ते बाहरी से रहन अके लड़िया तिन दुख ना कबहू उतरे से जम के बस पड़िया जिन्नी राव्या प्रभ अपना से दिसन नित खड़िया रतन जवे हर लाल हर।

नानक बांछे धूड़ तेन प्रभ सरणी दर पड़िया मंगर प्रभ आराधना बहुड़ ना जन्मड़िया पोख तुखार ना व्यापई कंठ मिलिया हरना मन भिद्या चरनार बिंद दर्शन लगड़ा सा ओट गोविंद गोपाल राई सेवा स्वामी ला बिख्या पोहे ना सकई।

लाख बेरिया हर सज्जन अगम अगाह शरण पई नारायण नानक दर पैया पोख सुहंदा सर्व सुख जिस बख्शे वे परवाह माग मज्जन संग साधुआ तूड़ी कर इशनान हर का नाम।

आप त्याग सरनी पवा मुख बोली मिठड़े वैण जन्म जन्म का विछड़िया हर मेलो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख ना वसन पैण हर फिर बिन चैन ना पाई खोज दिठे सब गैन आप कमाणे विछड़ी दोष ना काहू देन कर कृपा।

बेनंतिया हर सुरजन देखा नैन जी की बिरथा सुह सुनी हर समर्थ पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना का आधार ससुरै पेय तिस कंत की वड्डा जिस परवार ऊंचा अगम अगाध बोध इस अंत न पारावार सेवा सा तिस भाव सी संतां की होए शार दीना नाथ दयाल देव पतत उदारण हार आद जुगादी रखदा सच नाम करतार कीमत कोई ना जाने को नाही तो लनहार मन तन अंतर वस रहे नानक नहीं सुमार दिन रहन जे प्रभ को सेव दे तिन कै सद बलिहार संत आराधन सद सदा सबना का बखशिंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दिती नजिंद गुर शब्दी आराधिय जपिय निर्मल मंत कीमत कहन न जाइय परमेश्वर बेअंत जिस मन वसै नारायणु सो कहिय भगवंत जी की लोचा पूरी है मिले स्वामी कंत नानक जीवै जप हरी दोख सबे ही हंत दिन रैन जिस ना विसरै सो हरिया होवै जंत सर्ब कला प्रभ पूर्णो मन निमाणी थां हर ऊट गई मन अंदरी जप जप जीवा नाम कर कृपा प्रभ अपनी जन धूड़ी संग समाओ ज्यों तू रख है त्यों रहा तेरा दिता पैना खाओ उदम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए ना सुजई किथे कूकण जाओ अज्ञान बनासन तम हरन ऊचे अगम अमाओ मन विछड़िया हर मेलिया नानक एहो सुआव सर्व कल्याणा तित दिन हर परसी गुर के पाँव वार माज की तथा

प्यार लगा थन दुध दूजे माए बाप की सुध तीजे भैया भाभी बेब चौथे प्यार अपनी खेड पंजवे खान पीण की तात छिवे कामना पुछे जात सतवें सांझ किया घरवास अठवें क्रोध।

का सिह जासनी मूल ना जाने आप बाल टंडोलिम ढूंढम डिठ मैं नानक जग तूएं का धवल हार पौड़ी तू करता पुरख अगम है आप शिष्ट अपाती रंग परंग अपारजना बहो बहो विध भांति तू जान है जिन अपाई है सब खेल तमाती एक आव है एक जाहे उठ बिन नावे मर जाती गुरमुख रंग चलूलिया रंग हर रंग राती सो सेव हो सत निरंजनो हर पुरख बधाती तू आपे आप सुजान है वड पुरख वडाती जो मन चित तुद त्याई दे मेरे सच्चिया बल बल हो तिन जाती।

आई जिन रच रचिया तिसह ना जाने अंधा अंध कमाई जा भजै तां ठीक कर होए घाड़त घड़ी ना जाई नानक गुर बिन नाही पत पत बिन पार ना पाई महला दूजा दिन दे थाम हूं दिता चंगा मन मुखे

कमावे सो चहो कुंडी जानिए। जो धर्म कमावे तिस धर्म नाऊ होवे, पाप कमाणे पापी जानिए। तू आपे खेल करहे सब करती, क्या दूजा आख बखानी है। जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति विच तू बोले, बिन ज्योति कोई किस करे हो दिखा सियाणी है। नानक गुरमुख नदरी आया, हर इको सुगड़ सुजानी है। पौड़ी तुदे आपे जगत अपाए कै, तुदे आपे तंदे लाया। मोह ठगौली पाए कै, तुदे आपो हो जगत खुआया। जिसना अंदर अग्न है, नह तिपतै भुखा त्याया। सहसा एहो संसार है, मर जम्मै आया जाया। बिन सतगुर मोह ना टुटई, सब थके कर्म कमाया। गुरमति नाम त्याई है, सुख रजा जा तुद पाया। कुल उधारे अपना धन जने दी माया। सोभा सुरत सुहावनी जिन हर सेती चित लाया। सलोक महला दूजा अखी बाजो वेखना, विन कन्ना सुनना। पैरा बाजो चलना, विन हत्था करना। जीबे बाजो बोलना।

सोग बजोग अपाए खपाया मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया सतगुर हाथन बेड़ झगड़ चुकाया करता करे सोहोग ना चलै चलाया सलोक महला पहला कूड़ बोल मुरदार खाई अवरी नो समझ आवन जाई मुठा आप महाए साथ है नानक ऐसा आगू जापे महला चौथा जिसदे अंदर सच है सो सच्चा नाम मुख सच अलाई ओहो हर मार्ग आप चलदा होर नानू हर मार्ग पाई जे अगे तीर्थ होए ता मल लह छप्पड़ नातै सगवी मल लाई तीर्थ पूरा सतगुरु जो अन दिन हर हर नाम त्याई ओहो आप छुट्टा कुटंब सियो दे हर हर नाम सब सृष्ट छडाई जन नानक तिस बलिहार ने जो आप जपै अवरा नाम जपाई पौड़ी एक कंद मूल चुन खाहे वन खंड वासा एक भगवान वेस कर फिर है जोगी सन्यासा अंदर तृष्णा बहुत साधन भोजन की आसा बिरथा जन्म गवाई ना गिरही ना उदासा जम काल सिरहो ना उतरै त्रे विद मनसा गुरमति काल ना आवै नेड़ै जा होवै दासन दासा सच्चा शब्द सच मन घर ही माहे उदासा नानक सतगुर सेवन अपना से आसा ते निरासा सलोक महला पहला जे रत लगै कपड़ै जामा होए पलीत जो रत पीवै मानसा तिन क्यों निर्मल चीत नानक नाओ खुदाई का दिल हछै मुख।

जिस लाभ लोभ अहंकारा नाव पढ़िया नाव बुझिया गुरमति विचारा गुरमति नाम धन खटिया भगती परे भंडारा निर्मल नाम मन्निया गर सच्चै सच्यारा।

तिस भाव सी, नानक रखै लाज महला पहला, हक पराया नानका उस सुअर उस गाए, गुर पीर हा माता भरी जा मुरदार न खाए, गली पिस्त ना जाइए छुट्टे सच कमाए, मारन पाहे हराम मैं होए हलाल न जाए, नानक गली कूड़ी कूड़ो पल्ले पाए, महला पहला पंज निवाजा वक्त पंज पंजा पंजे नाम, पहला सच हलाल दुई तीजा खैर खुदाई, चौथी नीयत रास मन पंजवी सिफत सनाई, करनी कलमा आख कै ता मुसलमान सदाई, नानक जेते कूड़ियार कूड़े कूड़ी पाई, पौड़ी एक रत्न पदार्थ वणज दी एक कच्चै दे वापारा, सतगुर तुठे पाईयन अंदर रतन भंडारा, बिन गुर किने ना लद्या अंधे भौंक मोए कूड़ियारा, मनमुख दूजै पच मोए ना बूझ विचारा, एक सबाजो दूजा को नहीं किस आगे करह पुकारा, एक निरतन सदा भौंक दे एक ना भरे तुजारा, विण नावे होर धन नाही होर बिख्या सब छारा, नानक आप कराए करे आप हुक्म सवारन हारा, सलोक महला पहला मुसलमान कहावन मुश्किल जा हुए ता मुसलमान कहावे, अवल औल दीन कर मिठा।

रब की रजाई मन्नी सिरी उपर करता मन्नी आप गवावे तो नानक सर्व जिया मेहरमत होए ता मुसलमान कहावे।

काम कामनी मोह तजै ता अंजन माही निरंजन पावे तज मान अभमान प्रीत सुत दारा तज प्यास आस राम निवलावे नानक साचा मन वसै साच शब्द हर नाम समावे पौड़ी राजे रैयत सिकदार कोई ना रहसियो हट पटन बाजार हुक्मी तहसियो पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने दर्भ भरे भंडार रीते एक खाने ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे बाग मिलख घरवार किते से अपने तंबू पलंग निवार सराय के लालती नानक सच दातार सनाखत कुदरती सलोक महला पहला नदियां हो वह तीनवा सोम हो वह दुध कीयो सगली धरती सक्कर हो वह खुशी करे नित जीयो।

महला पहला पार अठारह मेवा हुए गरुड़ा हुए सुआऊ चांद सूर्य दोए फिर दे रखी है निश्चल होए थाऊ पी तू है सालाहना आखण लह ना चाऊ महला पहला जे देह दुख लाई है पाप ग्रह दोहरा रात पीने राजे सिरे ऊपर रखी है।

मेरबद बादशाह अफजू खुदाई, एक तू ही एक तू ही महला पहला, ना देव दानवा नरा ना सिद्ध साधका तरा, अस्त एक जिगर कोई एक तुई एक तुई महला पहला, ना दादे देहांदे आदमी ना सपत जेर जिमी, अस्त एक जिगर कोई एक तुई महला पहला, ना सूर सस मंडलो ना सपत दीप नह जलो, अन पौन फिर ना कोई एक तुई महला पहला, ना रिजक दस्त आकसे हमारा एक आस वसे, अस्त एक जिगर कोई एक तुई महला पहला, परंदे ना ग्रहा जर दरखत आब आस कर, देहांद सुई एक तुई महला पहला, नानक ललार लिखिया।

सिख कहावह। जां तुध भावै तां होवै राजे, रस कस बहुत कमावह। जां तुध भावै तेग भगावह, सिर मुंडी कट जावह। जां तुध भावै जाहे दसंतर, सुन गल्लां घर आवह। जां तुध भावै नाहिर चावह, तुध पाणी तू भावह। नानक एक कह बेनंती, होर सगले कूड़ कमावह। महला पहला, जां तू वड्डा सब वड्याईया, चंगा चंगा होई। जां तू सच्चा तां सब को सच्चा, कूड़ा कोई ना कोई। आखण वेखण बोलण चलण, जीवन मरना तात। हुक्म साज हुक्मै विच रखै, नानक सच्चा आप पौड़ी। सतगुर सेवन संग परम चुकाई है, सतगुर आखै कार सो कार कमाई है। सतगुर होए दयाल ता नाम त्याई है, लाहा भगत सो सार गुरमुख पाई है। मनमुख कूड़ गुबार कूड़ कमाई है, सच्चे दै दर जाए सच चवाई है। सच्चा अंदर महर सच बुलाई है, नानक सच सदा सचियार सच समाई है। श्लोक महला पहला, कल काती राजे का साई, धर्म पंख कर उडरिया। कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसै नाही कह चढ़िया। हौ भाल विकुन्नी होई, अंधेरै राहो ना कोई। विच हौ मैं कर दुख रोई, कहो नानक किन बिद गत होई। महला तीजा, कल कीरत प्रगट चानन संसार, गुरमुख कोई उतरै पार। जिसनो नदर करे तिस देवै, नानक गुरमुख रतन सो लेवै। पौड़ी, भगतां तै संसारियां, जोड़ कदे ना आया। करता आप अभुल है, ना भुलै किसै दा भुलाया।

बोल बोल बेख खाया चलन सार ना जाननी काम क्रोध विस वधाया भगत करन हर चाकरी जिन्नी अन दिन नाम त्याया दासन दास होए कै जिन्नी विचों आप गवाया ओना खसमै कै दर मुख उजले सच्चै शब्द सुहाया।

वखतै उपर लड़ मोए दूजै बहुते राह मन किया मती खिंडिया बहुत पए असगाह गोते खाहे ना निकलह तीजै मुही ग्राह भुख तिखा दोए पौंकिया खादा हुए स्वाह पी खाने स्यों दोस्ती।

मुठी तंदै चोर महल ना पाईए। इन्हें चित कठोर सेव गवाईए। जित घट सच ना पाई सो भन कढ़ाईए। क्यों कर पूरे वट तोल तुलाईए। कोई ना आखै घट हों मैं जाईए। लईन खरे परख दर भी नाईए। सौदा इक तहट पूरे गुर पाईए। सलोक महला दूजा अठी पैरी अठ खंड नावा खंड शरीर तिस विच नौ निद नाम एक पाल है गुणी गहीर कर्म।

गुण गाहक एक वन भुखियां भुख ना उतरै गली भुख ना जाए नानक भुखा ता रजै जा गुण कह गुणी समाए पौड़ी बिन सच्चे सब कूड़ कूड़ कमाई है बिन सच्चे कूड़ियार बन चलाई है बिन सच्चे तन शार शार रलाई है बिन सच्चे सब भुख जे पैंजै खाई है।

ठगियो ठग आइए जाइए तन मह तृष्णा यग शब्द बुझाइए सलोक महला पहला नानक गुर संतोख रुख धर्म फुल फल ज्ञान रस रसिया हरिया सदा पक्के कर्म ध्यान।

प्यार मन वसाइए मोहतना चसा विलम भरिए पाइए गुर प्रसादी बुज सच समाइए सलोक महला पहला तुम्मी तुम्मा विस आकत तूरा निम फल मन मुख वसह तिस जिस तू चेतना आवही नानक कहिए किस हंडन कर्मा बाहरी महला पहला मत पंखे रू किरत साथ कब उत्तम कब नीच कब चंदन कब अक डाल कब उच्ची परीत नानक हुक्म चलाई है।

आपण है देखू चाया पे लाए हुक्म पया तुर खसम का अति हूं टका खाए गुरमुख स्यों मनमुख अड़े डुबे हक न्याय दुहां सिरियां आपे खसम वेखे कर व्यपाय नानक एवै जानिए सब किस तिसहर जाय महला दूजा नानक।

साधना तृप्तिया सायर परेत सुख नानक सच्चे नाम की केती पुछा पुछ महला दूजा निह पलंग तस जन्मस जावत ब्रह्मना बिंदते सागरं संसारस गुर

टाडी वसिया, सच्चा खसम कलाण कमल विगसिया, खसम पूरा पाए मनो रहस्या, दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरसिया, सच्चा सतगुरु सेवन सच्चा मार्ग दसिया, सच्चा शब्द विचार काल बदौसिया, ढाडी कथे अकथ शब्द सवारिया, नानक गुण गहरास

इत के होम जग सद पूजा पै कार्य सो है गुरु समुंद नदी सब सिक्ची नाते जित वड्याई नानक जे सिर खुते नावन नाही ता सत चट्टे सिर शाई महला दूजा अग्नि पाला की करे सूरज के ही रात चंद अनेरा की करे पौन पानी क्या जात धरती चीजी के करे जिस विच सब किछ होए नानक ता पत जानी है जा पत रखे सोए पौड़ी।

लह परांत हुआ जिस दात पौड़ी हौ ढाडी वेकार कार लाया रात जह कह वार तुरो फुरमाया ढाडी सच्चे महल खसम बुलाया सच्ची सिफत सालाहा कपड़ा पाया सच्चा अमृत नाम पूजन आया गुरमती खादा राज तिन सुख पाया ढाडी करे पसाऊ शब्द बजाया नानक सच सलाहे पूरा पाया शुद्ध राग गौड़ी ग्वारी महला पहला चौपदे दुपदे

ढूपै तरै जिन किश किया सो किश करै हुक्मे आवै हुक्मे जाए आगे पाछै हुक्म समाए हंस हेत आसा समान।

कोई कोई सब को तेरा तू सबना का सोई जाके जी जंत धन माल नानक आखन बिखम बीचार गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर इहो वसेख कहना है किस कहन ना जाए तौ कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ शर्म सुरत दोए ससुर भये करनी कामन कर मन लय साहा संजोग व्याह वियोग सच संतत कहो नानक जोग गौड़ी।

तत तीर्थ जाही, रत्न पदार्थ काट ही माही, पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाण, पीतर होंदी वस्त ना जाने। हौ ना मुआ मेरी मुई बलाई, ओ ना मुआ जो रहे आसमाई, कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नदर ना आया। गौड़ी महला पहला दखनी, सुन सुन बूझे मन नाऊ, ताँ कै सद बलिहारे जाऊं।

गुरमुख मुख तो बंद ना पाए, शब्द विचार छुटे हर नाई, तरवर पंखी बहो निसबास, सुख दुखिया मन मोह विनाश, सांझ बिहाग तक आगास, दह दिस तावह कर्म लिखियास, नाम संजोगी गोइन थाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट, बिन बखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट, साध मिले पूरब संजोग, सच रहस्य पूरे हर लोग, मन तन दे ले सहज सुभा।

मुंडे पड़वाओ जेवा इंद्री एक सवाओ दिष्ट वकारी नाही पहु पाओ आप मारे ता पाए नाओ शब्द मरे फिर मरन ना होए बिन मुए क्यों पूरा होए परपंच व्याप रहया मन दो।

मन मानिए अमृत रस पीजे रहाउ, जन्म जीत मरण मन मानिया, आप मुआ मन मन ते जानिया, नजर पई कार करते जानिया, जत सत तीरथ मज्जन नाम।

गुरबचनी सत शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वडियाई, नानक रहना भगत सरनाई, गौड़ी महला पहला, जिन अकथ कहाया अपयो पी आया, अन पै बिसरे नाम समाया, क्या डरिए डर डर है समाना, पूरे गुर कै शब्द पछाना रहाओ, जिस नर राम हृदय हर रास, सहज सुभाए मिले साबास, जाहे सवार सांझ बयाल, इत उत मन मुख बांधे काल, अहनस राम हृदय से पूरे, नानक राम मिले ब्रह्म दूरे, गौड़ी महला पहला, जन्म मरे त्रै गुण हितकार, चारे वेद कथ है आकार, तीन अवस्था कह बखियान, तुरियावस्था सतगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा तरना, बहुड़ जन्म ना हुए है मरना रहाउ, चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत सासत पंडित मुख सोई, बिन गुर अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया, जाके हृदय बसया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई, हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद, जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा माहि निराश बुझाया, दीना नाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता, गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रह सुखाली, बाजी एहु संसारु, लाभ लोभ मुच कूड़ कमावे, बहुत उठावे पारू, तू काया मैं रुड़दी देखी, ज्यों तारू परिशारु, सुन सुन सिख हमारी, सो कृत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहुड़ न आवे वारी रहाउ, हौ तुदे आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी, निंदा चिंदा करह पराई, झूठी लाए तिबारी, वेल पराई जो है जियड़े, करह चोरी बुरियारी, हंस चलिया तू पिछे रहिए, छुट्टड़।

होगत सह का पाना रहाउ। साहू हमारा ठाकुर पारा हम तिसके बनजारी। जियो पिंड सब रास तिसह की मारे आपे जी वाले। गौड़ी चेती महला पहला अवर पंच हम एक जना। क्यों राखो कर बार मना मार है लूट है नीत नीत। किस आगे करी पुकार जना।

तना अमृत केल करे नित कामण अवर लुटेन सो पंच जना ताहे मड़ोली लूटिया देहरा सा तन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया भाग गए से पंच जना कामण लोड़े सोयना रूपा मित्र लोड़ेन सो खादाता नानक पाप।

है। लब लोभ की ताविसता जपस निरंजन रचस मना, काहे बोल है जोगी कपट कना रहाउ, काया कमली हंस एयाणा, मेरी मेरी करत बिहानीता, प्रणवत नानक नांगी दाजै, फिर पाछै पछतानीता, गौड़ी चेती महला पहला, औखद मंत्र मूल मन एकै, जे कर दृढ़ चित की जैरे, जन्म जन्म के पाप कर्म के, काटन हारा ली जैरे, मन एको साहिब पाई रे, तेरे तीन गुणा संसार समाव है, लखना लखना जाई रे रहाओ, सक्कर खंड माया तन मीठी, हम तो पांड उचाई रे, रात अनेरी सूजस नाही, लाज टूकस मूसा पाई रे, मन मुख कर है तेता दुख लागे।

गौड़ी चेती महला पहला कत की माई बाप कत केरा किदू थाम हो हम आई अगन बिंब जल पीतर।

केते पशु अपाए, केते नाग कुली मह आई, केते पंख उड़ाई, हट पटन बिज मंदर पन्ने, कर चोरी कर आवे, अगों देखै पिछों देखै, तुझते कहां छुपावे, तट तीरथ हम नव खंड देखे, हट पटन बाजारा, लैके तकड़ी टोलन लागा, घट ही मह वणजारा, जीता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे, दया करहु किस मेहर पावहु, डुबदे पत्थर तारी जियड़ा।

राम का मूड़े फिर पाश्य पछताहे रे रहाउ अनता तन तरनी तरे अनत ना चाहे आ जाए अनत को चाहन जो गए से आए अनत गवाए आपन लिया जे मिले ता सब को पागठ हो।

गौरी बैरागण महला पहला हरनी हुआ बन बसा कंद मूल चुन खाऊं गुर प्रसादी मेरा सहो मिले वार वार हों जाऊं जियो मैं बनजार नराम की।

सुपाई मेरा सहु मिले दर्शन रूप अपार मछली हुआ जल बसा जी जंत सब सार उरवार पार मेरा सहु वसे हौ मिलोंगी बाहां पसार नागन हुआ तर वसा शब्द वसे पहु जाय नानक सदा सुहागनी जिन ज्योति ज्योत समाए गौड़ी पूर्वी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखिए करते का हुए विचार तित कर गाव हो सोहिला शिवर हो सिरजनहार तुम गाव हो मेरे नरपहु का सोहिला हौ वारी जाऊं जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ नित नित जियड़े संभालियन देखे गा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कवन समार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सज्जन आसी सड़िया ज्यो होवे साहिब स्यो मेल कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिय नानक से दे आवन राग गौड़ी गवार री महला तीजा चौपदी।

शब्द पछाण सतगुर कह पहे ब्रह्म पहु जाई पैरा चै सच रंग समाई रहाउ गुर मिले हर मन वसै सुपाई मेरा प्रभ भारा कीमत नहीं पाई।

आवै जो पांडा होए ऊंदे पांडे टिके ना कोई गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच पांडा जिस शब्द प्यास गौरी गुवारी महला तीजा।

साची वाणी शब्द विचार गावत रहे जे सतगुर पावे मन तन राता नाम सुहावे रहाउ एक गाव है एक भगत करे नाम ना पावे बिन असने सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना पिर राखिया सदा उरतार भगत करह मूर्ख आप जनाव है नच नच टप है बहुत दुख पाव है नचे टपे भगत न होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वशल भगत कराए सोए सच्ची भगत विचों आप खोए मेरा प्रभ साचा सब बिद जाने नानक बख्शे नाम पछाणे गौड़ी गुआरी महला तीजा मन मारे तात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोई मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनों बख्शे दे वडियाई गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाओ गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन में मत मैगल मिकदारा गुर अंकस मार जीवालन हारा मन असाद साधे जन कोए अचार चरे ता निर्मल होए गुरमुख एहो मन लया सवार हौ मैं विचों तजे वकार जो तुर राखियन मेल मलाए कदे ना विचण है शब्द समाए अपनी कला आपे ही जाने नानक गुरमुख नाम पछाणे गौड़ी गुआरी महला तीजा हौ मैं विच सब जग बौराना दूजे पाए परम पुलाना बहु चिंता चितवे आप ना पछाना धंधा करतिया आन दिन वेहाना हिरदय राम रमहु मेरे भाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाउ गुरमुख हिरदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हौ मैं मारे गुर शब्द पछाता कृपा करे प्रभ कर्म बधाता से जन सच्चे जो गुर शब्द मलाए

साई, गुरमुख भगत हर नाम समाई, आपे दात करे दातार, पूरे सतगुर स्यों लगे प्यार, नानक नाम रते तिन को जयकार, गौड़ी ग्वारी महला तीजा।

सब कोई, गुर शब्द समावे बूझे हर सोई, सुन सुन वेखे शब्द मलाए, बड़ी वड़ियाई गुर सेवा ते पाए, नानक नाम रते हर नाम समाए, गौड़ी गवारी महला तीजा, मनमुख सूता माया मोहे प्यार, गुरमुख जागे गुण

ते बूझै जन कोई रहाओ। असंत अनारी कदे ना बूझै, कथनी करे तै माया नाल लूझै। अंध अज्ञानी कदे ना सीजै, इस जुग में राम नाम निस्तारा। बिरला को पाई गुर शब्द विचारा, आप तरै सगले कुल उधारा। इस काल युग में

नाम जपो हो पवजल उतरो हो पार रहाओ परमे आवे परमे जाए एहो जग जन्मया दूजे पाए मन मुख ना चेतै आवे जाए आप भुला के प्रभ आप भुलाया एहो जियो वडाणी चाकरी लाया महा दुख खटे बिरथा जन्म गवाया कृपा कर सतगुरु मलाए एको नाम चेते विचो परम चकाए नानक नाम जपे नाओ नौ निद पाए गौड़ी गुआर दी महला तीजा जिन्ना गुरमुख त्याया।

गुरमत विरला बूझै कोई, नानक नाम समावै सोई। गौड़ी गवार री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई। पूरा जनकार कमावै कोई, अखोट नाम तन हर तोट ना होई। ऐथे सदा सुख डर सोभा होई, ए मन मेरे परम ना कीजै। गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ, सतगुर सेव है से महापुरख संसारे। आप उदरे कुल सगल निस्तारे, हर का नाम रख है उर तारे। नाम रखते पौजल उतरह पारे, सतगुर सेव है सदा मन दासा। हम मैं मार कमल पर गासा, अनहद वाजै निज करवासा। नाम रखते कर माहे उदासा, सतगुर सेव है इनकी सच्ची बाणी। जुग जुग भगती आख बखाणी, अन दिन जप है हर सारंग पाणी। नानक नाम रते निह केवल निर्वाणी। गौड़ी गुआर री महला तीजा, सतगुर मिलै वडभाग संयोग। हिरदय नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए। जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा। गुर कृपा ते किने विरले चख दीठा, कर्म कांड बहु करह आचार। बिन नावै त्रिग त्रिग अहंकार, बंधन बांधियो माया पास। जन नानक छूटै गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण। जैसी धरती ऊपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्ये पानी नाही। जैसे धरती मध्ये पानी परगासिया, बिन पगा बरसत फराही। बाबा तू ऐसे परम चुकाही, जो किछ करत है सोई कोई है रे। तैसे जाए समाही रहाओ, स्त्री पुरख होए कह क्या हुए कर्म कमाही। नाना रूप सदा है तेरे, तुझ ही माही समाही। इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही। जा का कार्य सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही। तेरा शब्द तू है आपे परम कहाही। नानक तत तत स्यों मिलिया, पुनरप जन्म नाया ही। गौड़ी बैरागण महला तीजा, सब जग काले वस है बांदा दूजै पाई। हम मैं कर्म कमावंदी, मनमुख मिले सजाए। मेरे मन गुर चरणी चित लाए, गुरमुख नाम निदान लै दरगाह लै छडाए रहाओ। लख चौरासी भरम दे मन हठिया वै जाए, गुर का शब्द ना चीन्यो फिर जो नी पाए। गुरमुख आप पछाणिया, हर नाम वसिया मन आए। अन दिन भगती रत्या, हर नामे सुख समाए। मन शब्द मरे प्रतीत होए, हम मैं तजे विकार। जन नानक कर्मी पाईन, हर नामा भगत भंडार। गौड़ी बैरागण महला तीजा, पेयड़ै दिन चार है। हर हर लिख पाया शोभावंती नार है। गुरमुख गुण गाया पेव कड़ै गुण संभलै, सोहरे वास पाया गुरमुख सहज समाणिया। हर हर मन पाया ससुरह पेयै पिर वसै, कहो कित बिद पाईऐ। आप निरंजन अलख है, आपे मेलाइय रहाओ। आपे ही प्रभ देह मत, हर नाम ते आईऐ। वडभागी सतगुर मिलै, मुख अमृत पाईऐ। हम मैं दुबदा बिर सजाए, सहजे सुख समाईए। सब आपे आप वर्तदा, आपे नाए लाईए। मनमुख गर्ब ना पायो, अज्ञान ज्ञानी। सतगुर सेवा ना करह फिर पछताणी। गर्भ जूनी वास पाए दे, गर्भे गल जानी।
मेरे करते एवं पावदा मनमुख परमाणी मेरे हर प्रभ लेख लखाया तुर मस्तक पूरा हर हर नाम त्याया भेटिया गुरसूरा मेरा पिता माता हर नाम है हर बंद पबीरा हर हर बख्श मलाए प्रभ जन नानक कीरा गौड़ी बैरागण महला तीजा सतगुर ते ज्ञान पाया हर तत् बीचारा मत मलीन प्रगट पई जप नाम मरारा शिव सकत मटाईया चूका अंधियारा तुर मस्तक जिन को लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पाईया संत जन हो जिस देख हों जीवा हर बिन चसा ना जीवती गुर मेले हो हर रस पीवा रहाओ हों हर गुण गावा नित हर सुनी हर हर गत कीनी हर रस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी तन तन गुर सत पुरख है जिन भगत हर दीनी जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी गुणदाता हर राय है हम अवगण यारे पापी पाथर डूब दे गुरमत हर तारी तू गुणदाता निर्मला हम अवगण यारी हर शरणागत राख लेहो मूढ़ मुग्ध निस्तारी सहज आनंद सदा गुरमती हर हर मन त्याया सज्जन हर प्रभ पाया कर सोहिला गाया हर दया तार प्रभ बेनती हर हर चेताया जन नानक मंगे धूड़ तिन जिन सतगुर पाया गौड़ी गुआर री महला चौथा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंडित शास्त्र सिमरत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूर्ख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर भज मन मेरे तर भौजल तू तारी रहाओ सन्यासी बेपूत लाए दे सवारी पर त्रय त्याग करी ब्रह्मचारी मैं मूर्ख हर आस तुम्हारी।

कथा है हर की, पाज मिल साधु संगत जन की, तर पौ जल कथ कथा सुन हर की, गोविंद सत संगत मिलाई, हर रस रसना राम गुण गाए रहाउ, जो जन प्याव है हर हर नामा, तिन दासन दास करहु हम रामा, जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुनावे, सो जन हमरे मन चित पावे, जन पग रेन वड भागी पावे, संत जना सिउ प्रीत बन आई, जिनको लिखत लिखिया तुर पाई, ते जन नानक नाम समाई, गौड़ी ग्वारी महला चौथा, माता प्रीत करे पुत खाए, मीने प्रीत पई जल नाए, सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए, ए हर जन हर मेलो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाहे हमारे।

जहां हर जस गावे सारिंग प्रीत बसह जल तारा नरपत प्रीत माया देख पसारा हर जन प्रीत जपे निरंकारा नर प्राणी प्रीत माया धन खाते गुरसिख प्रीत गुर मिले गलाटे जन नानक प्रीत साध पग चाटे गौड़ी गुआरी महला चौथा भीखक प्रीत भीख प्रभ पाए भूखे प्रीत होवे अन खाए गुरसिख प्रीत गुर मिल आघाए हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी कर कृपा लोच पूर हमारी रहाओ चकवी प्रीत सूरज मुख लागे मिले प्यारी सब दुख त्यागे गुरसिख प्रीत गुरु मुख लागे बछरे प्रीत खीर मुख खाए हृदय बिगसै देखै माए गुरसिख प्रीत गुरु मुख लाए होर सब प्रीत माया मोह काचा बिन सजाए पूरा कच पाचा जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा गौड़ी गुआर री महला चौथा सतगुर सेवा सफल है बनी जित मिल हर नाम त्याया हर तनी जिन हर जपया तिन पीछे छूटी कनी गुरसिख हर बोलो हो मेरे भाई हर बोलत सब पाप लह जाई रहाओ जब गुर मिलया तब मन वास आया तावत पंच रहे हर त्याया अन दिन नगरी हर गुण गाया सतगुर पग धूर जिन्ना मुख लाई तिन कूड़ त्यागे हर लिब लाई ते हर दरगाह मुख उजल पाई गुर सेवा आप हर पावे कृष्ण बल भद्र गुर पग लग त्यावे नानक गुरमुख हर आप तरावे गौड़ी गुआर री महला चौथा हर आपे जोगी डंडा तारी हर आपे रव रहया बनवारी हर आपे तप तापै लाए तारी ऐसा मेरा राम रहया भरपूर निकट वसै नाही हर दूर रहाओ हर आपे शब्द सुरत तुन आपे हर आपे वेखै विगसै आपे हर आप जपाए आपे हर जापे हर आपे सारिंग अमृत धारा हर अमृत आप पी आवनहारा।

पणंजह रंग स्यों जे आप दयाल हुए देह हम बन जारे राम के हर वणज करावे दे रासरे रहाओ लाहा हर भगत तन खटिया हर सच्चे साहा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आया होर वणज करह वापारिये अनंत तरंगी दुख माया वे जे है बणज हर लाया फल तेहा तिन पाया हर हर वणज सो जन करे

जननी गर्भ पालती सुत की कर आसा वड्डा हुए तन खात दे कर भोग बलासा क्यों हर जन प्रीत हर राखदा दे आप हथासा मेरे राम मैं मूर्ख हर राख मेरे गुसैया जन की उपमा तुझह वडैया रहा मंदर कर आनंद हर हर जस मन पावे सब रस मीठे मुख लगह जां हर गुण गावे हर जन परवार सधार है इक्की ही कुली सब जगत छडावे जो किश किया सो हर किया हर की वडियाई हर जी तेरे तू वरतदा हर पूज कराई हर भगत भंडार लहाईंदा आपे वरताई लाला हाट विहाजिया क्या तिस चतुराई जे राज बहाले ता हर गुलाम कासी को हर नाम कढाई जन नानक हर का दास है हर की वडियाई गौड़ी गुआर भी।

सौदागरी सौदागर धावे धन खट आसा करे माया मोह वधावे त्यों हर जन हर हर बोलता हर बोल सुख पावे बिक संचय हटवानिया बह हाथ कमाए मोह झूठ पसारा झूठ का झूठे लपटाए त्यों हर जन हर तन संचया हर खर्च लै जाए इह माया मोह कटंब है।

गौड़ी बैरागण महला चौथा नित दिन सरात लालच करी पर मैं परमाया वेगार फिरे वेगारिया सिर पार उठाया जो गुर की जन सेवा करी सो कर कै काम हर लाया मेरे राम तोड़ बंधन माया कर कै काम लाए नित हर गुण गावे हर नाम समाए रहाउ नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजी अर्थ सब माया कै बंदे कै दान ले कै नरपत मर जाया तन तन सेवा सफल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया नित सौदा सूद की कै बहु भांत कर माया कह ताई जा लाहा दे ता सुख मने तू टै मर जाई जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर

उठा हमरे मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दर्स तुम्हारा जिन प्रीत लाई सो जानता हमरे मन चित हर बहुत प्यारा हौ कुर्बानी गुरे अपनी जिन बिछड़िया मेलिया मेरा सिरजनहार।

कर रहाऊ। हमरे अवगुण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गणत ना आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लह हर पावे। हम अपराधी राखे गुर संगति, अपदेश दियो हर नाम छडावे। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोल है तब विस्म हो जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुर राख लिए छडाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंधप मेरा सखा सखाए। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जान हो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले तूके सब सोग संतापे। गौड़ी बैरागण महला चौथा, कंचन नारी मह जियो लुभत है। मोह मीठा माया, कर मंदर घोड़े खुशी, मन अन रस लाया।

कपड़ पहनन दिया रास अन्न को गाणी जिन दिए सो चेतना आवई पशु हों कर जानी सब कीता तेरा वरतदा तू अंतर जामी हम जंत विचारे क्या करह सब खेल तुम स्वामी जन नानक हाट विहाजिया हर गुलम गलामी गौड़ी बैरागण महला चौथा ज्यों जननी सुत जन पालती राखह नदर मजार अंतर बाहर मुख देह ग्रास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारक हर प्रभ के है यानी तन तन गुरु गुर सतगुर पांदा जिन हर उपदेश दे किए सियाणी रहाओ जैसी गगन परंती उड़ती कपरे बागे वाली ओह राखै चीत पीछे बिच बचरे नित हृदय सार संभाली त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की गुर सिख रखै जी नाली जैसे काती तीस बतीस है विच राखै रसना मास रात केरी कोई जानो मास काती कै किस हाथ है सब वसगत है हर केरी त्यों संत जना की नर निंदा करह हर राखै पैज जन केरी भाई मत कोई जानो किसी कै किस हाथ है सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप सब हर कै वस है कोई लाग न सकै बिन हर का लाया ऐसा हर नाम मन चित नित त्यागहु जन नानक जो अंति अवसर लए छडाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लहिए मेरा सतगुर प्यारा कित बिद मिले हौ खिन खिन करी नमस्कार मेरा गुर पूरा क्यों मिले रहाओ कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा इच पुन्नी जन केरिया ले सतगुर धूरा हर भगत दरड़ावे हर भगत सुने तिस सतगुर मिलिए टोटा मूल ना आवई हर लाभ नित दृढ़िए जिस को हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उधरै हर गुण गावाही महला चौथा गौड़ी पूर्वी हर दयाल दया प्रभ कीनी मेरा मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग भया अत गूड़ा हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभ की हों गोली जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ करहो विवेक संत जन पाई खोज हृदय देख टंडोली हर हर रूप सब ज्योत सबाई हर निकट वसै हर कोली हर हर निकट वसै सब जग कह अपरंपर पुरख अतोली हर हर प्रगट कियो गुर पूरै सिर वेचियो गुर पै मोली हर जी अंतर बाहर तुम सरनाग तुम वड पुरख वडोली जन नानक अन दिन हर गुण गावै मिल सतगुर गुर वे चोली गौड़ी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी जगदीश्वर पुरख बधाते जित मार्ग तुम प्रेर हो स्वामी तित मार्ग हम जाते राम मेरा मन हर से तीराते सत संगत मिल राम रस पाया हर राम मैं नाम समाते रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते तिनके पाप दोख सब बिनसे जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सर नाते दुर्मत मैल गई सब तिनकी जो राम नाम रंग राते राम तुम आपे आप आप प्रभ ठाकुर तुम जेवड़ अवर ना दाते
जन नानक नाम लए ता जीवै हर जपिए हर किरपा ते गौड़ी पूर्वी महला चौथा करहो किरपा जग जी मन दाते मेरा मन हर से तीराचे सतगुर बचन दियो अत निर्मल जप हर हर हर मन माचे राम मेरा मन तन बेद लियो हर साचे जेहे काल कै मुख जगत सब ग्रसिया गुर सतगुर कै बचन हर हम बाचे रहाउ जिनको प्रीत नाही हर सेती ते साकत मूड नर काचे तिनको जन्म मरण अत भारी विच विस्ता मर मर पाचे तुम दयाल सरन प्रतपालक मोको दीजै दान हर हम जाचे हर के दास दास हम कीजै मन निरत करे कर नाचे आपे साहा वड्डे प्रभ स्वामी हम बन जा रे है ताचे मेरा मन तन जियो रास सब तेरी जन नानक के साहा प्रभ साचे गौड़ी पूर्वे महला चौथा तुम दयाल सर्व दुख भंजन एक बिनो सुनो दे कानी जिस ते तुम हर जाने स्वामी सो सतगुर मेल मेरा प्राणी राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर मानी हम मूड मुगद अशुद्ध मत होते गुर सतगुर कै बचन हर हम जाने रहाउ जितने रस अनरस हम देखे सब तितने फीक फीकाने हर का नाम अमृत रस चाखिया मिल सतगुर मीठ रस गाने जिनको गुर सतगुर नहीं पीटिया ते साकत मूड देवानी तिनके कर्महीन तुर पाए देख दीपक मोहे पचाने जिनको तुम दया कर मेलो ते हर हर सेव लगाने जन नानक हर हर हर जप प्रगटे मत गुरमत नाम समानी।

हा हर मन हसीए, हर हर आप दया कर देवे, ताय अमृत हर रस चखिए, मेरे मन नाम बिना जो दूजे लागे, ते साकत नर जम कुटिए, ते साकत चोर जिन्ना नाम वसारिया, मन तिनकै निकट ना पिटिए, मेरे मन सेवो अलख निरंजन नरहर, जित सेवियै लेखा छुटिया, जन नानक हर प्रभ पूरे किए, खिन मासा तोल ना कटिया, गौड़ी पूर्वे महला चौथा, हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरे, मेरा जियो पिंड सब तेरी, दया करहो हर दर्श दिखावहो, मेरे मन तन लोच कनेरी, राम मेरे मन तन लोच मिलन हर केरी, गुर कृपाल कृपा किंचत गुर कीनी, हर मिलिया आए प्रभ मेरी रहाओ, जो हमरे मन चित है स्वामी, साबिद तुम हर जानो मेरी, अन दिन नाम जप

अन दिन अनद पया बड भागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश्वर करते सब वसगत है हर केरी जन नानक शरणागत आए हर राखो पैज जन केरी गौड़ी पूर्वी महला चौथा इहो मनुआ खिन ना टिकै बहु रंगी दह दह दिस चल चल हांडी गुरपुरा पाया वड भागी हर मंत्र दिया मन ठाढे राम हम सतगुर लाले कांडे रहाउ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु साढ़े पार उपकार पुन बहु किया बहु दुत्तर तार पराढ़े जिनको प्रीत हृदय हर नाही तिन कूरे गाडन गाडी ज्यो पानी कागद बिन सुजात है त्यों मन मुख गर्भ गलाडी हम जानिया कशु ना जान है आगे ज्यो हर राख है त्यों ठाढ़ी हम पूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक पुतरे कांडी गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम करोद नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडाई पूर्व लिखित लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाई कर साधु अंजलि पुन वड्डाई कर डंडोत पुन वड्डाई रहाउ साकत हर रस साधना जानिया तिन अंतर हम मैं कंडाई ज्यों ज्यों चल है चुभै दुख पावे जम काल सह सिर डंडाई हर जन हर हर नाम समाणी दुख जन्म मरण भव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डाही जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडाई गौड़ी पूर्वी महला चौथा इस गढ़ में हर राम राय है किस साधना पावे तीठा हर दीन दयाल अनुग्रह किया।

हर यज्ञ में अगोचर पार ब्रह्म है, मिल सतगुर लाग बसीठा, जिन गुर बचन सुखा नेहियर है, तिन आगह आन परीठा, मन मुख हियरा अत कठोर है, तिन अंतर कार करीठा, बिसियर कौ बहु दूध पी आई है, बिक निकसै फोल फलीठा, हर प्रभ्यान मलाव गुर साधु, कस गरड़ो शब्द मुख लीठा, जन नानक गुर के लाले गोले, लग संगत करुआ मीठा।

मस्तक पाग सुभागी राम गुरमत हर लिव लागी रहाउ। कट कट रमैया रमत राम राय गुर शब्द गुरु लिव लागी। हो मन तन देवो काट गुरु कहो मेरा भ्रम पहो गुर बचनी भागी। अंधियार है दीप ज्ञान जलाए गुर ज्ञान गुरु लिव लागी। अज्ञान अंधेरा बिनस बनासेउ कर वस्त लही मन जागी। साकत बदक माया तारी तिन जम जो हन लागी। हुन सतगुर आगै सीस ना बेचिया हुए आवह जाहे अभागी। हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकुर हम शरण प्रभु हर मांगी। जन नानक की लाज पात गुरु है सिर बेचे हो सतगुर आगी। गौड़ी पूर्वी महला चौथा हम अहंकारी अहंकार अज्ञान मत गुर मिले आप गवाया। हम मैं रोग गया सुख पाया तन तन गुरु हर राया। राम गुर कै बचन हर पाया रहाउ मेरा ही अरे प्रीत राम राय की। गुर मार्ग पंथ बताया मेरा जियो पिंड सब सतगुर आगै। जिन विछड़िया हर गल लाया मेरा अंतर प्रीत लगी देखन को गुर हृदय नाल दिखाया। सहज आनंद भया मन मोरै गुर आगै आप बिचाया। हम अपराध पाप बहु कीने कर दुष्टि चोर चुराया। अब नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर पाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजै शब्द अनाहद गुरमत मनुआ गावे। वड भागी गुर दर्शन पाया तन तन गुरु लिव लावे। गुरमुख हर लिव लावे रहाउ हमरा ठाकुर सतगुर पूरा। मन गुर की कार कमावे हम मल मल तू वह पाव गुरु के जो हर हर कथा सुनावे। हृदय गुरमत राम रसायन जिहवा हर गुण गावे। मन रसक रसक हर रस आगामी फिर बहोर न भूख लगावे। कोई करे उपाव अनेक बहुतेरी बिन कृपा नाम ना पावे। जन नानक को हर कृपा तारी मत गुरमत नाम दृढ़ावे। रा गौड़ी माज महला चौथा गुरमुख जिंदू जप नाम करम्मा। मत माता मत जियो नाम मुख रामा। संतोख पिता कर गुरपुरख अजन्मा। वड भागी मिल रामा गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो। गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो। वड भागी मिल सुगड़ सुजानी जियो। मेरा मन तन हर रंग पिन्ना आवह संत हो मिल नाम जपाहा। विच संगत नाम सदा ले लाहा जियो। कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो। मिल पूर्व लिखियड़े तुर कर्मा सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो। मन मोर कुह कियड़ा शब्द मुख पाया हर अमृत बुठड़ा मिलिया हर राया जियो। जन नानक प्रेम रतन्ना गौड़ी माज महला चौथा आओ सखी गुण कामण करी हा जियो। मिल संत जना रंग मान रलिया जियो। गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो। हर तुठै टुल टुल मिलिया जियो।

जियो। हर हर नाम प्रगासिया मेरे गोविंदा, सब दालत दुख लह जाही जियो। हर पद उत्तम पाया मेरे गोविंदा, वडभागी नाम समाही जियो। नैनी मेरे प्यारिया नैनी मेरे गोविंदा, किनै हर प्रभ डिठड़ा नैनी जियो। मेरा मन पन बहुत बैरा गया मेरे गोविंदा, हर बाजू धन कुम लैनी जियो। संत

हर आपे सब कट भोग दा मेरे गोविंदा आपे रसिया भोगी जियो हर सुजान ना भुलई मेरे गोविंदा आपे सतगुर जोगी जियो आपे जगते उपाए दा मेरे गोविंदा हर आप खेलै बहुरंगी जियो एक ना भोग पगाए दा मेरे गोविंदा एक नगन फिर है ना।

हर कथा मंगह हर चंगी जीओ हर आपे भगत कराएंदा मेरे गोविंदा हर भगता लोच मन पूरी जीओ आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा राव रहया नहीं दूरी जीओ हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा हर आप रहया परपूरी जीओ हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा हर वेखै आप हदूरी जीओ हर अंतर वाजा पौन है मेरे गोविंदा हर आप बजाए त्यों वाजे जीओ हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा गुर शब्दी हर प्रभ गाजे जीओ आपे सरन पुआएंदा मेरे गोविंदा हर भगत जना राख लाजे जीओ वडभागी मिल संगति मेरे गोविंदा जन नानक नाम सिद्ध का जय जीओ गौड़ी माज महला चौथा मैं हर नामै हर बिरहो लगाई जीओ मेरा हर प्रभ मित मिलै सुख पाई जीओ हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जीओ मेरा नाम सखा हर पाई जीओ गुण गावो संत जीओ मेरे हर प्रभ केरे जीओ जप गुरमुख नाम जीओ भाग वडेरे जीओ हर हर नाम जीओ प्राण हर मेरे जीओ फिर बहुड़ ना भवजल फेरे जीओ क्यों हर प्रभ वेखा मेरा मन तन चाओ जीओ हर मेलो संत जीओ मन लगा पाओ जीओ गुर शब्दी पाईए हर प्रीत मराओ जीओ वड भागी जप नाओ जीओ मेरा मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जीओ हर मेलो संत जीओ गोविंद प्रभ पासा जीओ सतगुर मत नाम सदा प्रगासा जीओ जन नानक पूरियड़ी मन आसा जीओ गौड़ी माज महला चौथा मेरा बिरही नाम मिलै ता जीवा जीओ मन अंदर अमृत गुरमत हर लीमा जीओ मन हर रंग रतड़ा हर रस

संत हर सुगड़ सुजान जियो हौ नाम बिटहु कुर्बान जियो हौ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो हर दसहु संतो जी हर खोज पवाई जियो सतगुरु।

पंजवां राग गौड़ी गुआरी चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद इन बेद कुशल होत मेरे भाई।

सुसने पेखारी एक कुशल मोको सतगुरु बताया हर जो किश करे सो हर किया भगता पाया जन नानक कहो मैं मार समाया इन बिद कुशल होत मेरे भाई इउ पाईए हर राम सहाय रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारी महला पंजवा क्यों भ्रमिए भ्रम किसका होई जा जल थल महियल रविया सोई गुरमुख उबरे मनमुख पत खोई जिस राखै आप राम दयारा तिस नहीं दूजा को पहुंचन हारा रहाओ सब मह वरतै एक अनंता ता तू सुख सो होए अचिंता ओहो सब किस जान जो वरतंता मनमुख मोए दिन दूजी प्यासा बहु जोनी पवह तुर किरत लिखियासा जैसा बीजह तैसा खासा देख दर्श मन पया विगासा सब नदनी आया ब्रह्म परगासा जन नानक की हर पूर्ण आसा गौड़ी ग्वार री महला पंजवा कई जन्म पय कीत पतंगा कई जन्म गजमीन कुरंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल एह दे संजरिया रहाओ कई जन्म सैल गिर करिया कई जन्म गर्भ हिर खरिया कई जन्म साख कर उपाया लख चौरासी जोन प्रमाया साध संग भयो जन्म प्रापत कर सेवा पज हर हर गुरमत त्याग मान झूठ अभमान जीवत मरह दरगाह परवान जो किश होआ सो तुझ ते होग अवर ना दूजा करने जोग ता मिलिए जा लह मलाई कहो नानक हर हर गुण गाय गौड़ी ग्वारी महला पंजवा कर्म भूम मह बोह नाम पूर्ण होए तुम्हारा काम फल पावह मिटै जम त्रास नित गावह हर हर गुण जास।

पावह मान उगत सियाणप सगली त्याग संत जना की चरणी लाग सर्ब जी है जा कै हाथ कदे न विछड़े सब कै साथ अपाव छोड़ गहो तिसकी ओट निमक माही होवे तेरी छोट सदा निकट कर तिसनो जान प्रभ की आज्ञा सत करमान गुर कै बचन मटाव हो आप हर हर नाम नानक जप जाप गौड़ी गुआर री महला पंजवा गुर का बचन सदा अबनासी गुर कै बचन कट्टी जम फासी गुर का बचन जी कै संग गुर कै बचन रचै राम कै रंग जो गुर दिया सुमन कै काम संत का किया सत करमान रहाओ गुर का बचन अटल अशेद गुर कै बचन कटे भ्रम भेद गुर का बचन कतहु ना जाय गुर कै बचन हर के गुण गाय गुर का बचन जी कै साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ गुर कै बचन नरक ना पवै गुर कै बचन रसना अमृत रवै गुर का बचन प्रकट संसार गुर कै बचन ना आवै हार जिस जन होए आप कृपाल नानक सतगुर सदा दयाल गौड़ी गुआर री महला पंजवा जिन कीता माटी ते रतन गर्भ मह राखिया जिन कर जतन जिन दीनी सोभा वडियाई तिस प्रभ को आठ पहर त्याई रमैया रेन साध जन पावो गुर मिले अपना खसम त्याव रहाओ जिन कीता मूड ते बक्ता जिन कीता बे सुरत ते सुरता जिस प्रसाद नवै निद पाई सो प्रभ मन ते बिसरत नाही।

सास ग्रासा जिस प्रसाद माया सिलक काटी गुर प्रसाद अमृत बिख खाटी कहो नानक इसते किश नाही राखन हारे कौ सलाही गौड़ी गुआरी महला पंजवां तिसकी शरण नाही पौ सोग उसते बाहर कछु ना होग तजी सियाणप बल बुद्ध बिकार दास अपने की राखनहार जप मन मेरे राम राम रंग राम।

तन मन शीतल पहे जन्म जन्म के किल विख गए सर्व निदान पेखे मन माए अब ढूंढन काहे को जाए प्रभ अपने जब पहे दयाल पूर्ण होए सेवक काल।

उठाए। पूर्ण पूर रहे हो सब जाए, गुर पूरै सब परम चकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा, अगले मोए से पाछे परे, जो उबरे से बांध लाख खरे।

चतुर सियाना करने हार ना बुझै बिगाना अपनी गत मित आपे जाने क्या को कहे क्या आख बखाने जित जित लाव है तित तित लगना अपना भला सब काहू मंगना सब किस तेरा तू करने हार अंत नाही किस पारावार दास अपने कहो दीजै दान कबहू न बिसरे नानक नाम गौड़ी गुआर री महला पंजवा अनक जतन नहीं होत छुटारा बहुत सियाण पया गल पहारा हर की सेवा निर्मल हेत प्रभ की दरगाह सुबा सीत मन मेरे गहो हर नाम।

दीपक दीपाहे अग्न सीत का लाहस दुख नाम जपत मन होवत सुख उतर जाए तेरे मन की प्यास पूर्ण होए सगली आस डोले नाही तुमरा चीत अमृत नाम जप गुरमुख मीत नाम औखद सोई जन पावे कर कृपा जिस आप दिवावे हर हर नाम जा कै हृदय वसै दुख दर्द तेह नानक नसै गौड़ी गुआर री महला पंजवां बहुत दर्ब कर मन ना आघन्ना अनक रूप देख नह पतियाना पुत्र कलत्तर उर्ज्यो जान मेरी ओह बिन सह ओए पस मैं ढेरी बिन हर भजन।

रहाउ। हस पवन हस्त असवारी, जोआ चंदन सेज सुंदर नारी। नट नाटक आखारे गाया, तामह मन संतोख न पाया। तखत सभा मंडन दोलीचे, सगल मेवे सुंदर बागीचे। अखेर बिरत राजन की लीला, मन ना सुहिला पर पंच हीला। कर कृपा संतन सच कहया, सर्व सुख इहो आनंद लहया। साध संग हर कीर्तन गाइए, कहो नानक वड भागी पाइए। जा कै हर तन सोई सुहेला, प्रभ कृपा ते साध संग मेला। रहाउ दूजा गौड़ी गुआरवी महला पंजवां।

संसार। जो हलाहल सो पीवै बौरा, अमृत नाम जानै कर कौरा। साध संग कै नाही नेर, लख चौरासी भ्रमता फेर। एकै जाल फहाए पंखी, रस रस भोग करहै बहुरंगी। कहो नानक जिस पये कृपाल, गुरपूरै ताके काटे जाल। गौड़ी गुआररी महला पंजवा, तौ किरपा ते मार्ग पाईऐ। प्रभ किरपा ते नाम ते आईऐ, प्रभ किरपा ते बंधन छुटै।

राम गुण गाओ, निमक निमक हर हर हर त्याओ, आन न सुनिए कतु जाइए, साध संगत बड़ पागी पाइए, आठ पहर जिहवे आराध, पार ब्रह्म ठाकुर आगाद, इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसनी अमोली, बनस्पत मौली फल फूल पेडे, एह रस राती बहुर ना छोड़े, आन ना रस कस लवै ना लाई, कहो नानक गुर पए है सहाई, गौड़ी गुआरी महला पंजवां, मन मंदर तन साजी बार, इस ही मत ही बस्त अपार, इस ही पीतर सुनियत साह, कवन बापारी जाका उहां वसाह, नाम रतन को व्यवहारी, अमृत भोजन करे आहारी, रहाओ मन तन अर्पी सेव करी जय, कमन सो जुगत जित कर पीजै, पाए लगो तज मेरा तेरे, कमन सो जन जो सौदा जोरे, महल साहा का किन बिद पावे, कमन सो बिद जित पीतर बुलावे, तू वड साह जाके कोट बन जारे, कमन सो दाता ले संचारे, खोजत खोजत निज कर पाया, अमोल रतन साच दिखलाया, कर कृपा जब मेले साह, कहो नानक गुर कै विसार, गौड़ी महला पंजवां गवारी, रैन दिनस रह इक रंगा, प्रभ को जान सद ही संगा, ठाकुर नाम कियो उनवर्तन, तृप्त अगावन हर कै दर्शन, हर संग राते मन तन हरे, गुर पूरे की सरनी परे, रहाओ चरण कमल आत्म आधार, एक निहार है आज्ञाकार, एको वनज एको व्यवहारी, अवर न जान है बिन निरंकारी, हरख सोग दोहू ते मुक्ते, सदा अलिपत जोग अर जुगते, दिस है सब मह सब ते रहते, पार ब्रह्म का उए ध्यान धरते, संतन की महिमा कमन बखानो, अगाध बोध किस मित नहीं जानो, पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय, तूर संतन की नानक दी जय, गौड़ी गुआरी महला पंजवां, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम तुम संग हीत, तू मेरी पत तू है मेरा गहना, तुझ बिन निमख ना जाई रहना।

रंग रसा तू मन है आधार, तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया, मन तने अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया, सतगुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है, गौड़ी गुआरी महला पंजवां, व्यापत हरक सोग विस्थार, व्यापत सुरग नर के अवतार, व्यापत धन निर धन पेख सोभा, मूल ब्यादि व्याप सलोभा, माया व्यापत बहु परकारी, संत जीव है प्रभ ओट तुम्हारी, रहाउ व्यापत हम बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्तर संग राता, व्यापत हस्त कोड़े अर बस्ता, व्यापत रूप जोबन मदमस्ता, व्यापत भूम रंक अर रंगा, व्यापत गीत नाद सुन संगा, व्यापत सेज महल शिंगार, पंच दूत व्यापत अंधियार, व्यापत कर्म करे हों फासा, व्यापत गिरस्त व्यापत उदासा, चार व्यवहार व्यापत ए जात, सब किस व्यापत बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राय, ता को कहां व्यापै माय, कहो नानक जिन तूर संत पाई, ता कै निकट न आवै माई, गौड़ी गुआर री महला पंजवां।

मन सोया माया बिस्माद। इस ग्रह में कोई जागत रह, साबत वस्त ओह अपनी लह रहाओ। सगल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर ना जाती। मुसनहार पंच बटवारी, सुने नगर परे ठगहारी। उन तेरा कह बाप ना माई, उन तेरा कह मीत ना पाई। दर्ब स्याणप ना हुए रहते, साध संग ओए दुष्ट वस होते।

जागै जिस प्रभ कृपाल एह पूंजी साबत धन माल रहाओ दूजा गौड़ी गुआररी महला पंजवा जाके वस खान सुल्तान जाके वस है सगल जहान जाका किया सब किश होए तिसते बाहर ना ही कोई कहो बेनंती अपने सतगुर पाए काज तुम्हारे देन बाहे रहाओ सब ते ऊंच जाका दरबार सगल भगत जाका नाम आधार सर्ब व्यापत पूर्ण तनी जाकी शोभा कट कट बनी जिस सिमरत दुख डेरा टह जिस सिमरत जम किशु ना कह जिस सिमरत होत सूके हरे जिस सिमरत डूबत पाहन तरे संत सभा कहो सदा जयकार हर हर नाम जन प्राण आधार कहो नानक मेरी सुनी अरदास संत प्रसाद मोको नाम निवास गौड़ी गुआरी महला पंजवा सतगुर दर्शन अगन निवारी सतगुर भेट तह मैं मारी सतगुर संग नाही मन डोले अमृत बाणी गुरमुख बोले सब जग साचा जा सत महराती शीतल शांत गुरते प्रभ जाते रहाओ संत प्रसाद जपै हर नाऊ संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ संत प्रसाद सगल दुख मिटे संत प्रसाद बंधन ते छुटे संत कृपा ते मिटे मोह परम साध रेण मजन सब धर्म साध कृपाल दयाल गोविंद साधा मह ए हमरी जिंद किरपा निध किरपाल त्यावो साध संगता बैठन पावो मोहे निर्गुण कौ प्रभ कीनी दया साध संग नानक नाम लया गौड़ी गुआरी महला पंजवा साध संग जपियो भगवंत केवल नाम दियो गुरमंत ताज अभमान पये निर्वैर आठ पैर पूजो गुर पैर अब मत बिनसी दुष्ट बेगानी जब ते सुनिया हर जस कानी।

पार ब्रह्म स्यों लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपुर मेटिया अम्यारा नानक का प्रभ अपर अपारा गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा जिस मन वसै तरै जन सोए जा कै कर्म प्राप्त होए दुख रोग कछ पौ न व्यापै अमृत नाम हृदय हर जापै पार ब्रह्म परमेश्वर क्या यह।

जामी सुख निदान हर अलख स्वामी जी जंत तेरी सरनाई नानक नाम मिले बड़ियाई गौड़ी गुआरी महला पंजवा जी जुगत जा कह है हाथ सो सिमरहो अनाथ को नाथ प्रब चित आए सब दुख जाए पै सब बिन सह हर कह नाए बिन हर पव काहे का मन है हर बिसरत काहे सुख जान है रहाओ जिन तारे बहु तरन आगास जाकी ज्योत जी परगास जाकी बख्शना में तय कोए सिमर सिमर प्रभ निरपव होए आठ पैर सिमर हो प्रभ नाम अनक तीरथ मज्जन इशनाम।

पुरख जपै भगवान आठ पहर हर हर गुण गाऊं कहो नानक कहो तिस बल जाऊं राग गौड़ी ग्वारी महला पंजवा चौपदे दोपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो परायो सोई अपना जो तज छोड़न तिस सियो मन रचना कहो गसाई मिली ऐ के जो बिबरजत तिस सियो ने रहाओ झूठ बात सा सच कर जाती सत होवन मन लगे ना राती बावे मार्ग टेढ़ा चलना सीधा छोड़ अपूठा बुनना दोहा सनिया का कसम प्रभ सोई जिस मेले नानक सो मुक्ता होई गौड़ी ग्वार भी महला पंजवा कल युग मह मिल आए संयोग जिचर आ गया तिचर भोग है भोग जलै न पाइय राम स्नेही किरत संयोग सती उठ होई रहाओ देखा देखी मन हठ जल जाइए प्रिय संग न पावे बहु जोन पवाइए सील संयम प्रिय आग्या माने तिस नारी को दुख ना जमाने कहो नानक जिन प्रियो परमेश्वर कर जानिया धन सती दरगाह परवानिया गौड़ी ग्वारी महला पंजवा हम तनवंत भागठ सच

ना मूल परे पंडार अखूट अतोल खाव है खर्च है रल मिल पाई टूट ना आवे वध दो जाई।

काम रहाव, खात पीत खेलत हस्त बिस्थार, कवन अर्थ मृतक शिंगार, जो ना सुने जस परमानंदा, पास पंखी त्रिगद जोन ते मंदा, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया, केवल नाम रिद माहि समाया। गौड़ी महला पंजवा, काकी माई काको बाप, नाम तारीख झूठे सब साक, काहे को मूर्ख पखलाया, मिल संजोग हुक्म तू आ।

हर कै मार्ग पतत पनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करण हार सद वसै हदूरा कहो नानक मेरा सतगुर पूरा गौड़ी महला पंजवा संत की तूर मिटे अग कोट संत प्रसाद जन्म मरण ते छोट संत का दर्श पूर्ण इशनान संत कृपा ते जपिए नाम रहाव संत कै संग मिटिया अहंकार दृष्ट आवे सबे कंकार संत सो प्रसन्न आए वस पंचा अमृत नाम हृदय लै संचा कहो नानक जा का पूरा कर्म तिस भेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा हर गुण जपत कमल पर गासै हर सिमरत त्रास सब नासै सामत पूरी जित हर गुण गावे बड़े भाग साधु संग पावे रहाव साध संग पाईए निदनामा साध संग पूर्ण सब कामा

पूरे जब कृपा करी, पंत नानक मेरी पूरी परी, गौड़ी महला पंजवां, अनक रसा खाई जैसी ढोर है।

साध संग मिल पजह गोपाला गौड़ी महला पंजवा काल कलेश गुर शब्द निवारी आवन जान रही सुख सारी तै बिन से निरपो हर त्याया साध संग हर के गुण गाया।

गुर मूरत स्यो लाए ध्यान, नीहा ऊहा पावे मान। सगल त्याग गुर सरनी आया, मिटे अंदेसे नानक सुख पाया। गौड़ी महला पंजवा, जिस सिमरत दुख सब जाए। नाम रतन वसै मन आए, जप मन मेरे गोविंद की बाणी। साधु जन राम रसन बखाणी, रहाओ इकस बिन नाही दूजा कोए। जां की दृष्ट सदा सुख होए, साजन मीत सखा कर एक। हर हर अखर मन मह लेख, रव रहिया सरबत स्वामी। गुण गावे नानक अंतर जामी, गौड़ी महला पंजवा। पै मह रचियो सब संसारा, तिस भउ नाही जिस नाम आधारा।

जाना, इन सुख पाया जो प्रभ पाना, अगन सागर महाव्यापै माया, ते शीतल जिन सतगुर पाया।

नाऊ, तुमरी कृपा ते दरगाह थाऊ, तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोए, तुमरी कृपा ते सदा सुख होए रहाओ, तुम मन बसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा ते ब्रह्म पौ भागे, पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सच रास, गौड़ी महला पंजवा, तन बिना जैसे थोथर तुखा, नाम विहून सुने से मुखा, हर हर नाम जपो नित प्राणी, नाम विहून त्रिग देह बिगानी रहाओ, नाम बिना नाही मुख भाग, परत विहून

तू है मेरा स्वामी, सब किस सुमते तू अंतर जामी, पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट, तेरी शरण उदर है जन कोट, रहाव जेते जी तेते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सुख कनेरे, जो किस वरतै सब तेरा पाणा, हुक्म बूझै सो सच समान, कर कृपा दीजै प्रवदान, नानक सिमरै नाम निदान, गौड़ी महला पंजवां, ताका दर्श पाईऐ वडभागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाकै हर वसिया मन माही, ताको दुख सुपने पी नाही रहाओ, सर्व निदान राखे जन माहे, ताकै संग किल विख दुख जाए, जन की महिमा कथी न जाए, पार ब्रह्म जन रहया समाए, कर कृपा प्रभ बिनो सनीजै, दास की धूर नानक को दीजै, गौड़ी महला पंजवां, हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण बसै मन आए, भज मन मेरे एको नाम, जी तेरे कै आवै काम रहाओ, रैन दिनस गुण गाओ अनंता, गुरपूरे का निर्मल मंता, छोड़ अपाव एक टेक राख, महापदार्थ अमृत रस चाख, विक्रम सागर तेई जन तरे, नानक जाको नदर करे, गौड़ी महला पंजवां, हृदय चरण कमल प्रभ तारे, पूरे सतगुर मिल निस्तारे, गोविंद गुण गाव हो मेरे भाई, मिन साधु हर नाम त्याई रहाओ, दलभ देह होई परवान, सतगुर ते पाया नाम निशान, हर सिमरत पूरन पद पाया, साध संग पै परम मटाया, जत कत देखो तत रहया समाए, नानक दास हर की सरनाए, गौड़ी महला पंजवां, गुर जी के दर्शन कौ बल जाओ, जप जप जीवा सत गुर नाओ, पार ब्रह्म पूर्ण गुरदेव, कर कृपा लागो तेरी सेव रहाओ, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन धन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होए परवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत धूर पाईऐ वडभागी, नानक गुर भेटत हर सिउं लिव लागी, गौड़ी महला पंजवां, करै दुख कर्म दिखावै होर, राम की दरगाह बांधा चोर, राम रमै सोई रामाणा, जल थल महियल एक समाणा रहाउ, अंतर बिख मुख अमृत सुनावै, जमपुर बाता चोटा खावै, अनक पड़दे मह कमावै विकार, खिन मह प्रगट होए संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक तिस किरपाल बिदाता, गौड़ी महला पंजवा, राम रंग कदे उतर न जाए, गुरपूरा जिस दे बुझाए, हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूर्ण पुरख बधाता रहाउ, संत संग बैस गुण गाए, ताका रंग न उतरै जाए, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया, गुर रंगे से पये निहाल, कहो नानक गुर पये है दयाल, गौड़ी महला पंजवां, सिमरत स्वामी किल विख नासे, सुख सहज आनंद निवासे, राम जना को राम परोसा, नाम जपत सब मिटियो अंदेसा रहाओ, साध संग कस पौ ना परांती, गुण गोपाल गाय है दिन राती, कर कृपा प्रभ बंदन छोट, चरण कमल की दीनी ओट, कहो नानक मन पई परतीत, निर्मल जस पीवह जननीत, गौड़ी महला पंजवां, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द प्रमता का भागा, हर धन को व्यापारी पूरा,

जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिट है कलेश चरण कमल मन मह प्रवेश उच्चरो हो राम नाम लख बारी अमृत रस पीव हो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध कै संग किल विख सब धोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजै साध रवाला गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पैने खाए तिस स्यों आलस क्यों बने माए खसम बिसार आन कम लागह कौडी बदले रतन त्याग रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोभा दास सलाम करत कत सुभा अमृत रस खावह खान पान जिन दिए तिसै ना जानह स्वान कहो नानक हम लून हरामी बख्श ले हो प्रभ अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मन माहे ध्यान सगल तीरथ मज्जन इशनान हर दिन हर सिमरन मेरे भाई कोट जन्म की मन लह जाई रहाओ हर की कथा रित माहे बसाई मन बाशत सगले फल पाई जीवन मरण जन्म परवान जहां कैरदै वसै भगवान कहो नानक सेई जन पूरे जिन्ना प्राप्त साधु तूरे गौड़ी महला पंजवा खांदा पैंदा मुकर पाए तिसनो जो है दूत धर्म राय तिस स्यों बेमुख जिन जियो पिंड दीना कोट जन्म परमह बहु जूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किस करे सगल विपरीत जियो प्राण जिन मन तन तारिया सोई ठाकुर मनहु बिसारिया बदे विकार लिखे बहु कागर नानक उधर कृपा सुख सागर पार ब्रह्म तेरी सरनाए बंधन काट तरै हर नाए रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा अपने लोभ को कीनो मीत सगल मनोरथ मुकत पद दीत ऐसा मीत करहु सब कोई जाते बिरथा कोई ना होए रहाओ अपने सुआए हृदय लै तारिया दुख दर्द रोग सगल बदारिया रसना गीदी बोलत राम पूर्ण होए सगले काम अनक बार नानक बलिहारा सफल दर्शन गोविंद हमारा गौड़ी महला पंजवा कोट बिगन हिरे खिन माहे हर हर कथा साध संग सुनाहे पीवत राम रस अमृत गुण जास जप हर चरण मिटी खुद तास रहाओ सर्व कल्याण सुख सहज निदान जा कर दे वसह भगवान।

कहो नानक अटल एह धर्म गौड़ी महला पंजवां कर कृपा भेटे गुरसोई तित बल रोग न व्यापै कोई राम रमन तरन पै सागर सरल सूर फारे जमकागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम एह आसर पूर्ण पै काम जप तप संयम पूरी वडियाई गुर कृपाल हर पै सहाय मान मोह खोए गुर भरम पेख नानक पसरे पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवां बिखै राज ते अंधला भारी दुख लागै राम नाम चितारी तेरे दास को तुही वडियाई माया मगन नरक लै जाई रहाऊ।

हर को नाम, बिचर संसार पूर्ण सब काम। वडभागी हर कीर्तन गाइए, पार ब्रह्म तू देहे ता पाइए रहाउ। हर के चरण हृदय उरतार, भव सागर चढ़ उतरह पार। साधु संग करहो सब कोई, सदा कल्याण फिर दुख ना होए। प्रेम भगत भज गुणी निदान, नानक दरगाह पाइए मान। गौड़ी महला पंजवा, जल थल महियल पूर्ण हर मीत। ब्रह्म बिन से गाए गुण नीत, उठत सोवत हर संग पहरुआ। जां कै सिमरन जम नहीं डरुआ रहाउ। चरण कमल प्रभ हृदय निवास, सगल दुख

किल विख खोए, सिमरह साधु करह आनंद, मन तन रबिया परमानंद, जिसह प्राप्त हर चरण निदान, नानक दास तिसह कुर्बान, गौड़ी महला पंजवां।

संत संग जप केवल नाम, कर्म तर्म नियम ब्रत पूजा, पार ब्रह्म बिन जान ना दूजा, ता की पूर्ण होई काल, जां की प्रीत अपने प्रभ नाल, सो वैष्णो है अपर अपार, कहो नानक जिन तजे बिकार, गौड़ी महला पंजवां, जीवत छाड़ जाहे देवानी।

दहाउ बिखैठ गौरी जिन जिन खाई ताकी तृष्णा कबहू न जाई दारण दुख दुत्तर संसार राम नाम बिन कैसे उतर सपार साध संग मिल दोए कुल साध राम नाम नानक आराद गौड़ी महला पंजवां गरीबा उपर जे खिंजै दाड़ी पार ब्रह्म सा अग्न मह साड़ी पूरा न्याऊ करे करतार अपने दास को रखनहार रहाउ आद जगाद प्रगट प्रताप निंदक मुआ उपज वध ताप तिन मारिया जे रखे न कोई आगे पाचे मंदी सोए अपने दास राखे कंठ लाए शरण नानक हर नाम त्याए गौड़ी महला पंजवा महजर झूठा की तुने आप पापी को लागा संताप जिसह सहाई गोविंद मेरा तिसको जम नहीं आवे नेरा रहाओ साची दरगाह बोले कूड़ सिर हाथ पछोड़े अंधा मूड़ रोग व्यापे कर दे पाप अदली होए बैठा प्रभ आप अपन कमाए आपे बांधे दर्ब गया सब जी कै साथे नानक शरण परे दरबार राखी पैज मेरे करतार गौड़ी महला पंजवां जन की धूर मन मीठ खटानी पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी रहाओ अहम बुद्ध मन पूर थिधाई साध तूर कर सुध मन जाई अनक जला जे धोवै देही मैल न उतरै सुध न तेही सतगुर भेट्यो सदा कृपाल हर सिमर सिमर काटिया पव काल मुकत भुगत जुगत हर नाओ प्रेम भगत नानक गुण गाओ गौड़ी महला पंजवां।

पार ब्रह्म गुण अगम विचार, साधु संगम है निस्तार, निर्मल गुण गावहु नित नीत, गई ब्याद उबरे जनमीत। मन बच क्रम प्रब अपना त्याय, नानक दास तेरी सरनाई, गौड़ी महला पंजवा, नेत्र प्रगास किया गुरुदेव, परम गए पूर्ण भई सेव, रहाउ सीतला ते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी, नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै, गौड़ी महला पंजवा, तन ओह मस्तक तन तेरे नेत, तन ओए भगत जिन तुम संग हेत, नाम बिना कैसे सुख लहिए, रसना राम नाम जस कहिए, रहाउ किन ऊपर जाइए कुर्बान, नानक जिन जपया निर्वाण, गौड़ी महला पंजवा, तू है मसलत तू है नाल, तू है राख है सार संभाल, ऐसा राम दीन दुनी सहाय, दास की पैज रखे मेरे भाई, रहाउ आगे आप इहो थान वस जाके, आठ पैर मन हर कौ जाप।

प्राणी। कहो नानक जिस कृपा तार है, हिरदा शुद्ध ब्रह्म विचार है। गौड़ी महला पंजवां, थिर कर बैसो हर जन प्यारी।

बादशाह सहा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निरपो होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, सरन परे प्रभ अंतर जामी, नानके ओट पकरी प्रभ स्वामी, गौड़ी महला पंजवा, हर संग राते पाहे ना जले, हर संग राते माया नहीं चले, हर संग राते नहीं डूबे जला, हर संग राते सुफल फला, सब पै मिटह तुम्हारे नाई, पेटत संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर संग राते मिटे सब चिंता, हर सिंह सो रचै जिस साध का मंता, हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूर्ण आस, हर संग राते दुख न लागै, हर संग राता अन्न दिन जागै, हर संग राता सहज कर वसै, हर संग राते ब्रह्म पौ नसै, हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए, कहो नानक तिन कहो बल जाई, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही, गौड़ी महला पंजवा, उदम करत सीतल मन पहे, मार्ग चलत सगल दुख गए, नाम जपत मन पहे आनंद, रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल घर आए, पेटत साध संग गई बलाए रहाओ, नेत्र पनीत पेखत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस, गोबंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया, जन की कीनी आप सहाय, सुख पाया लग दासह पाए, आप गया ताया पह पहे, कृपा निदान की सरनी पए, जो चाहत सोई जब पाया, तब ढूंढन कहां को जाया, अस्थिर पए बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन, गौड़ी महला पंजवा, कोट मजन कीनो इशनान, लाख अरब खरब दीनो दान, जा मन बस्यो हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल, पाप मिट है साधु सरन दयाल रहाव, बहुत उर्द तप साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम रसन अरादे, सिमरत शास्त्र वेद बखाने, जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ सिहु मन माने, अगाध बोध हर अग्नि अपारे, नाम जपत नाम हृदय बिचारे, नानक कहो प्रभ कृपा तारे, गौड़ी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुर हृदय बसाया, गुरु गोबिंद पार ब्रह्म पूरा, किसह अराध मेरा मन तीरा रहाओ, अन दिन जपो गुरु गुर नाम, ताते सिद्ध पहे सगल काम, दर्शन देख सीतल मन पहे, जन्म जन्म के किल बिख गए, कहो नानक कहां पै पाई, अपने सेवक की आप पैज रखाई, गौड़ी महला पंजवा, अपने सेवक को आप सहाई, नित प्रतपारे बाप जैसे माई, प्रभ की शरण उबरे सब कोए, कर्ण करावन पूर्ण सच सोए रहाव, अब मन बसया करने हारा, पै बिन से आत्म सुख सारा, कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के किल बिखलाते, कहन न जाए प्रभ की वडियाई, नानक दास सदा सरनाई, राग गौड़ी चेती महला पंजवा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम को बल पूरन पाई, ताते बिरता ना व्यापै काई रहाओ, जो जो चितवै दास हर माई, सो सो करता आप कराई, निंदक की प्रभ पत गुआई, नानक हर गुण निरपो गाई, गौड़ी महला पंजवा, भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर,
गर्त परत गह लिहो अंगुरिया रहाओ श्रवण सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटत पिंगुरिया दीना नाथ अनाथ करना में साजन मीत पिता महतरिया चरण कमल हृदय गह नानक पै सागर संत पार उतरिया राग गौड़ी बैरागण महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दई गुसाई मीतला तू संग हमारे बास जियो रहाओ तुझ बिन करी ना जीवना त्रिग रहना संसार जी प्राण सुख दातिया निमक निमक बलिहार जी हस्त अलंबन देहो प्रभ गर्त हो उदर गोपाल मोहे निर्गुण मत थोरिया तू सद ही दीन दयाल क्या सुख तेरे सम्मला कमन विधि विचार सरल समाई दास हित ऊचे अगम अपार सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम महारस माहे सो प्रसन्न भय केसवा सेजन हर गुण गाहे मात पिता सुत बंध पो तू मेरे प्राण आधार साध संग नानक भजै बिख तरिया संसार गौड़ी बैरागण रोहोए के संत के घर महला पंजवां।

हाल। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिरले काहू एक लिव लागी। जिन हर पाया से वड भागी, ब्रह्मादिक सनकादिक चाहै। जोगी जति सिद्ध हर आहै, जिस है प्रापत सो हर गुण गाहै। ताकि शरण जिन बिसरत नाही, बड़ भागी हर संत मलाही।

जगत नाम आधारी राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई रहाओ रूपहीन बुद्ध बलहीनी मोहे परदेसन दूर ते आई नाहिन दर्ब ना जोबन माती मोहे अनाथ की करो समाई खोजत खोजत पई बैरागन प्रभ दर्शन कहो हौ फिरत तसाई दीन दयाल कृपाल प्रभ नान साध संग मेरी जनन बुझाई गौड़ी महला पंजवा प्रभ मिल बे कौ प्रीत मन लागी पाई लगो मोहे करो बेनती को संत मिले बड़ भागी रहाओ मन अर्पो तन राखो आगे मन की मत मोहे सगल त्यागी जो प्रभ की हर कथा सुनावे अन दिन फिरो तिस पिछे विरागी पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे पेट्यो पुरख रसक बैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौड़ी महला पंजवा।

कृष्णा रस पंकज अत तीखियन मोह की फास काटन हार जगत गुरु गोविंद चरण कमल ताके करहु निवास कर कृपा गोविंद प्रभ प्रीतम दीना नाथ सुनहु अरदास कर गै लेहु नानक के स्वामी जियो पिंड सब तुमरी रास गौड़ी महला पंजवा हर पीखन को सिमरत मन मेरा आस प्यासी चितवो दिन रैनी है कोई संत मलावे नेरा रहाउ सेवा करूं दास दासन की अनक पांत तिस करूं निहुरा तुला तार तुले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा संत प्रसाद गाए गुण सागर जन्म जन्म को जात बोहोरा आनंद सुख भेटत हर नानक जन्म किरतार्थ सफल सवेरा राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किन बिद मिला गुसाई मेरे राम राय कोई ऐसा संत सहज सुखदाता मुहे मार्ग दे बताई रहा अंतर अलख न जाई लखिया विच पड़दा हूं मैं पाई माया मोहे सबो जग सोया एहो परम कहो क्यों जाई एका संगत इकत ग्रह बस्ते मिल बात ना करते पाई एक बस्त बिन पंच दोहेले ओह बस्त अगोचर ठाई जिसका ग्रहो तिन दिया ताला कुंजी गुर संपाई अनक अपाव करे नहीं पावे बिन सतगुर सरनाई जिनके बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत लिवलाई

सहज भया भ्रम खिन मह नाठा मिल ज्योति ज्योत समाई रहा दूजा गौड़ी महला पंजवा ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बीठले सतगुर मुझे बतायो रहा जत कत देखो तत तत तुम ही मोहे एहो विश्वास हुए आयो कह पह करो अरदास बेनती जो सुन तो है रघुरायो लहयो सहसा बंधन गुर तोरे ता सदा सहज सुख पायो होना सा सोई फुन होसी सुख दुख कहां दिखायो खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा गुर परदा खोल दिखायो नौ निध नाम निधान इक ठाई तौ बाहर कैठ जायो एक कनक अनक पांत साजी बहु प्रकार रचायो कहो नानक परम गुरु खोई है इव तत्तै तत् मलायो गौड़ी महला पंजवा औद कटै दिन सरै नारी।

बसन सुहेला एह संसार विकार सहसी मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसह जगाए की आए हर रस अकथ कथा तिन जानी जा को आए सुई विहाजो हर गुर ते मन है बसेरा निज कर महल पावहु सुख सहजे बहुर ना हुए गो फेरा अंतर जामी पुरख बधाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास इही सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे गौड़ी महला पंजवां राख पिता प्रभ मेरे मोहि निर्गुण सब गुण तेरे रहाओ पंच बखादी एक गरीबा राख हो राखन हारी खेद करह और बहुत संताव है आयु शरण तुहारी कर कर हारियो अनक बहु भांति छोड़ है कतहु नाही एक बात सुन ताकि ओटा साध संग मिट जाही कर कृपा संत मिले मोहे तिन ते धीरज पाया संती मंत दियो मोहे निरपो गुर का शब्द कमाया जीत लए ओए महा बिखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन भया परगासा पाया पद निर्वाणी गौड़ी महला पंजवा ओ अबनासी राया निरपो संग तुम्हारे बस्ते

नांग सदासी फेर फिरयो अरकाल ग्रसुआ पेख पेख रे कसुंब की लीला राच माच तिन्हू लो हसुआ सीजत डोर दिन से अर रैनी जी को काज ना कीनो कशुआ करत करत एव ही बिरधानो हार्यो उकते तन की नसुआ ज्यो मोहयो उन मोहनी बाला उसते कटै नाही रुच चसुआ जागे ऐसा मोहे गुरह दिखायो तौ सरल परयो तज गर्भसुआ मार्ग प्रभ को संत बतायो दृढ़ी नानक दास भगत हर जसुआ गौड़ी महला पंजवा तुझ बिन कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राण आधारा रहाओ अंतर की बेद तुम ही जानी तुम ही सज्जन सोहेले सर्व सुखा मैं तुझ ते पाए मेरे ठाकुर अगह अतोले बन ना साको तुमरे रंगा गुण निदान सुख दाते अगम अगोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुरते जाते प्रम पौ काट किए नेह केवल जब ते हूं मैं मारी जन्म मरण को चूको सहसा साध संगत दरसारी चरण पखार करूं गुर सेवा बार जाऊं लख बरिया जेहे प्रसाद एव पौ जल तरिया जन नानक प्रिय संग मिरिया गौड़ी महला पंजवा तुझ बिन कवन रीजा वै तो ही तेरो रूप सगल देख मोही रहाओ सुर्ग पयाल मृत भूमंडल सर्व सुमानो एक ओही सेव सेव करत सगल कर जो रह सर्व मया ठाकुर तेरी दोही पतत पावन ठाकुर नाम तुमरा सुखदा

अनक जन्म बहु जोनी भ्रमिया बहुर बहुर दुख पाया तुमरी कृपा ते मनुख दे पाई है देहो दर्श हर राया सोई हुआ जो तिस पाणा अवर ना किन्ही कीता तुमरे पाणे परम मोहे मोहया जागत नाही सूता बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारी कृपा निद दयाला राख ले हो पिता प्रभ मेरे अनाथ है कर प्रतपाला जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन साध संगत कह पाछे कर कृपा तूर देहो संतन की सुख नानक एहो बांछे गौड़ी महला पंजवा हौ ता कह बलिहारी जा कह केवल नाम आधारी रहाओ महिमा ता की कीतक गनिए जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज आनंद तिना संग हुन समसारे अवर ना दाते जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण परै सो तरिया।

प्रभु कृपाला राज जोबन अवद जो दीसै सब किस जोग मह घाटिया नाम निधान सद नव तन निर्मल एहो नानक हर तन खाटिया गौड़ी महला पंजवां जोग जुगत सुने आयो गुरते मोको सतगुर शब्द बुझायो रहाओ नौ खंड पृथ्वी इस तन मह रव्या निमख निमख नमस्कारा दीखिया गुर की मुंदरा कानी दृढ़े हो एक निरंकारा पांच चेले मिल पए एकत्रा एक सकै वस किए दस बैरागन आज्ञाकारी तब निर्मल जोगी थिए परम जराए चराई बेपुता पंथ एक कर पेखिया सहज सूख सो कीनी भुगता जो ठाकुर मस्तक लेखिया जह पौ नाही तहां आसन बांधे हो सिंघी अनहत बानी तत बीचार डंडा कर राखे हो जुगत नाम मन पानी ऐसा जोगी वडभागी भेटै माया के बंधन काटै सेवा पूज करो तिस मूर्त की नानक तिस पग चाटै गौड़ी महला पंजवा अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याए ले मीता हर औखद जाको गुरदिया ताके निर्मल चीता रहाओ अंधकार मिट्यो ते तन ते गुर शब्द दीपक परगासा प्रभु की जाली ताकी काटी जाको साध संगत विश्वासा तारी ले पवजल तारू बिखड़ा बोहित साधु संगा पूर्ण होई मन की आसा गुर भेट्यो हर रंगा नाम खजाना भगती पाया मन तन तृप्त अगाए नानक हर जियो तां को देवै जां को हुक्म मनाए गौड़ी महला पंजवां दया मया कर प्राण पत मोरी मोहे अनाथ सरन प्रभ तोरी अंध कूप मह हाथ दे राखो पशु सियानप उकत ना मोरी रहाओ कर्म करावन सब किश तुम ही तुम समरथ नाही अनहोरी तुमरी गात्मित तुम ही जानी से सेवक जिन भाग मथोरी अपने सेवक संग तुम प्रभराती पोत पोत भगतन संग जोरी प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहै जैसे दृष्ट ओह चंद चकोरी राम संत मह भेद किश नाही एक जन कई मह लाख करोरी जा कहिय प्रगट प्रभ होआ आनदिन कीर्तन रसन रमोरी तुम समरत अपार अति ऊचे सुखदाते प्रभ प्राण अधोरी नानक को प्रभ की जय कृपा उन संतन कै संग संगोरी गौड़ी महला पंजवा तुम हर से तीराते संत हो नबाहे लेहो मोको पुरख बधाते ओड़ पहचाव हुदाते रहाओ तुमरा मर्म तुमा ही जानिया तुम पूर्ण पुरख बधाते राखो सरन अनाथ दीन को करहो हमारी गाते तरन सागर बोहित चरण तुम्हारे तुम जानो अपनी भांति कर कृपा जिस राखो संगे ते पार पुराते ईत ऊत प्रभ तुम समरथा सब किस तुमरे हाथे ऐसा निदान देहो मोह को हर जन चले हमारे साथे निर्गुण यारे को गुण की जय हर नाम मेरा मन जापे संत प्रसाद नानक हर पेटे मन तन शीतल त्रापे गौड़ी महला पंजवा सहज समायो देव मोह को सतगुर भये दयाल देव रहाओ काट जेवरी कियो दासरु संतन टहलायो एक नाम को थियो पुजारी मोह को अचरज गुरह दिखायो पयो प्रगास सर्ब उजियारा गुर ज्ञान मनह प्रगटायो अमृत नाम पियो मन तृप्तया अनपह ठहरायो
मान आग्या सर्व सुख पाए दुखा ठाऊ गवायो जो सो प्रसन्न पये प्रभ ठाकुर सब आनंद रूप दिखायो ना किस आवत ना किस जावत सब खेल कियो हर रायो कहो नानक अगम अगम है ठाकुर भगत टेक हर नायो गौड़ी महला पंजवा पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मन ता की ओट गही जैरे जिन तारे ब्रह्मांड खंड हर ताको नाम जपी जैरे रहाओ मन की मत त्याग हो हर जन हुक्म बूझ सुख पाई रे जो प्रभ करे सोई पल मानो।

राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर कबहू ना मनहु बिसारी इहां उहां सर्ब सुख दाता सगल कटा प्रित पारी रहाउ महाकष्ट काटे खिन पीतर रसना नाम चितारी शीतल शांत सुख हर सरणी जलती अग्न निवारी गर्भ कुंड नरक ते राखे पव जल पारी उतारी चरण कमल अराधत मन में जम की त्रास बदारी पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारी गुण गावत त्यावत सुख सागर जुए जन्म ना हारी काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारी कर कृपा अपनो नाम दीजै नानक सद बलिहारी राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख नाही रे हर भगत बिना जीत जन्म एह रतन अमोलक साध संगत जप एक खिना रहाव सुत संपत बंता बनोद छोड़ गए बहुलोग भोग हैवर गैवर राज रंग त्याग चल्यो है मूड नंग चोआ चंदन देह फूलिया सो तन धर संग रूलिया मोहे मोहया जाने दूर है कहो नानक सदा हजूर है गौड़ी महला पंजवा मन धर तरबे हर नाम नु सागर लहर संसार संसार गुर बोहित पार ग्राम नु रहाओ कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उजियारिया बिख बिख्या पसरी अत घनी उबरे जप जप हर गुनी मतवारो माया सोया गुर भेटत भ्रम पौ खोया कहो नानक एक त्याया घट घट नदरी आया गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारू तुही एक सेवा थारी गुरह टेक रहाओ अनक जुगत नहीं पाया गुर चाकर ले आया मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दल साध्या बख्शीस वजहो मिल एक नाम सुख सहज आनंद विश्राम प्रभ के चाकर से भले नानक तिन मुख उजले गौड़ी महला पंजवा जियरे ओला नाम का अवर जे करन कराम नु तिन मह पहो है जाम का रहाओ अवर जतन नहीं पाई है वड्डे भाग हर त्याई है लाख हिकमती जानी है आगे तिल नहीं मानी है हम बुद्ध कर्म कमावने ग्रह बालू नीर बहावने प्रभ कृपाल कृपा करे नाम नानक साधु संग मिले गौड़ी महला पंजवा बार ने बलिहार ने लख बरिया नामो हो नाम साहिब को प्राण अधरिया रहाओ कर्ण करावन तुही एक जी जंत की तुही टेक राज जोगन प्रभ तू तली तू निर्गुण तू सरगुणी इहा उहा तुम रखे गुर कृपा ते को लखे अंतर जामी प्रभ सुजान नानक तकिया तुही तान गौड़ी महला पंजवा हर हर हर आराधी है संत संग हर मन वसै परम मोह पहो साधी है रहाओ वेद प्राण सिमरत पने सब ऊच बराजत जन सुने सगल अस्थान पै पीत चीन राम सेवक पै रहत कीन लख चौरासी जोन फिर है गोविंद लोक नहीं जन्म मरह बल बुद्ध स्यान पहो मैं रही हर साध सरन नानक गही गौड़ी महला पंजवा मन राम नाम गुण गाइय नीत नीत हर सेविय सास सास हर त्याय रहाओ संत संग हर मन वसै दुख दर्द अनेरा भ्रम नसै संत प्रसाद हर जापी है सो जन दुख ना व्यापी है

उबरिया माया अगनते नानक को प्रव मया कर मेरा मन तन वासै नाम हर गौड़ी महला पंजवा रसना जपिए एक नाम इहा सुख आनंद घना आगे जी कै संग काम रहाओ कटिए तेरा अंगरोग तू गुर प्रसाद कर राज जोग हर रस जिन जन चाखिया ता की तृष्णा लाथिया हर विश्राम निद पाया सो बहुर न कत ही ताया हर हर नाम जा को गुरदिया नानक ता का पहो गया गौड़ी महला पंजवा जा को बिसरे राम नाम ताहू को पीर साध संगत मिल हर रवह से गुणी गहीर रहाव जा को गुरमुख हृदय बुद्ध ता कै कर तल नव निद सिद्ध जो जान है हर प्रभ धनी किस नाही ता कै कमी करन हार पछानिया सर्ब सुख रंग माणिया हर धन जा कै ग्रह वसै कहो नानक तिन संग दुख नसै गौड़ी महला पंजवा गर्भ बड़ो मूल इतनो रहन नहीं गहो कितनो रहाओ बेबरजत बेद संतना वाहू स्यों रे हितनो हार जुआर जुआ बिदे इंद्री वस लै जितनो हरन भरन संपूर्णा चरण कमल रंग रितनो नानक उदरे साध संग कृपा निद मैं जितनो गौड़ी महला पंजवा मोहे दासरो ठाकर को धान प्रभ का खाना रहाओ ऐसो है रे खसम हमारा खिन मह साज सवार नहारा काम करी जे ठाकुर पावा गीत चरित प्रभ के गुण गावा सरन परयो ठाकुर वजीरा तिना देख मेरा मन धीरा एक टेक एको आधारा जन नानक हर की लागा कारा गौड़ी महला पंजवा है कोई ऐसा हूं मैं तो रह इस मीठी ते एहो मन हो रह रहाओ अज्ञानी मनुख भया जो नाही सो लोरै रैण अंधारी कारिया कमन जुगत जित भोरै भ्रम तो हारिया अनक विधि कर टोरै कहो नानक कृपा पही साध संगत निद मोरै गौड़ी महला पंजवा चिंता मन करना मई रहाओ दीन दयाला पार ब्रह्म जाकै सिमरन सुख भय अकाल पुरख अगाध बोध सुनत जसो कोट अग खय कृपा निद प्रभ मया धार नानक हर हर नाम लय गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन सरन प्रभु सुख पाए जान दिन बिसरै प्राण सुख दाता सो दिन जात अजाय रहाओ एक रैन के पहुन तुम आए बहु जुग आस बंधाए ग्रह मंदर संपै जो दिसै ज्यों तरवर की छाए तन मेरा संपै सब मेरी बाग मिलक सब जाए देवनहारा बिसरियो ठाकुर खिन मह होत पराए पहरे बागा कर इशनाना चोआ चंदन लाए निरपहो निरंकार नहीं चीनिया ज्यों हस्ती नवाए ज्यों होए कृपाल ता सतगुर मेले सब सुख हर के नाए मुक्त भया बंधन गुर खोले जन नानक हर गुण गाए गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए रत्न जन्म सफल गुर किया दर्शन को बल हरिए रहाओ जेते सास ग्रास मन लेता तेते ही गुण गाइए जो हुए दयाल सतगुरे अपना ता एह मत बुद्ध पाइए मेरे मन नाम लए जम बंद ते छूटे है सर्व सुखा सुख पाइए सेव स्वामी सतगुर दाता मन बंचत फल आइए नाम इष्ट मीत सुत करता मन संग तुहारे चाले कर सेवा सतगुरे अपने की
गुर ते पाईऐ पल गुर कृपाल कृपा प्रभ धारी बिनसे सर्ब अंदेसा नानक सुख पाया हर कीर्तन मिट्यो सगल कलेशा राग गौड़ी महला पंजवां।

करो रे मन ना हो रे पर ही को लुजी हे सुंदर नारी अनक प्रकारी परिग्रह बेकारी बुरा भला नहीं सुजी हे अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निद नहीं गाया मन बिखै ही मह लुजी हे जा को रे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया तरे नानक सो जन दर हर सिजी हे गौड़ी महला पंजवां सबहू को रस हर हो रहाओ काहू जोग काहू भोग काहू ज्ञान काहू ध्यान काहू हो दंड धर हो।

हर कीर्तन हुए उदार, राग गौड़ी माला महल्ला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पायो बाल बुद्ध सुखरे, हरख सोग मान मृत दुख सुख, चित समसर गुर मिले रहाओ, जो लो हो किस

केते बंद परे जो साधु कर मस्तक धरियो तब हम मुक्त भए जो लो मेरो मेरो कर तो तौ लो बिख घेरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए जो लो पोट उठाई चलियो तौ लो दान भरे पोट डार गुरु पूरा मिलिया तौ नानक निर्भय गौड़ी माला महला पंजवा भावन त्यागियो री त्यागियो मैं गुर मिल त्यागियो सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोबिंद आग्यो रहाओ मान अभमान दो समाने मस्तक डार गुर पाग्यो संपत हरकना आपत दुखा रंग ठाकुर लाग्यो बास बासरी एक स्वामी उद्यान दृष्टाग्यो निरपौ पए संत भ्रम डार।